ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सारेगामा कारवा मिनी भक्ति।

0: कार्तिक, अब हमने चोर को पकड़ लिया।
1: चलो
2: चलो
1: चलो भागो जल्दी।
0: गाना बनना।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

कीजिए हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बात है भाई, गाने ऐसे कि गाते ही आपकी रूह जो है वो तृप्त हो जाए। वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में आपका, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.3 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो आज थर्सडे मॉर्निंग शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान वापस आ चुके हैं। न सिर्फ आ गए बल्कि मौसम बड़ा गजब का हो रहा है भाई साहब। मौसम एंजॉय करिए जरा, एक मिनट अपना सिर निकाल करके ऊपर जरा देखिए तो कितना खूबसूरत मौसम है।

0: हाँ जी, तो फाइनली ये दिल दीवाना, दिल भाई दिल, इतनी बार दिल हो गया कि दिल धड़कने लगा। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग जॉक अर्चनान आपके गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो आइए अब सीधे चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और जानते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और आज का थॉट ऑफ द डे आपसे क्या कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज का जिस तरह खूबसूरत सा ये समा है, ये मौसम है, ऐसा लगता है कि हर उठकर देखने महसूस करने वाला शख्स इसका दीवाना है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Aaj Ya Khan.

हाँ जी, तो भाई क्या कहता आज का थॉट ऑफ द डे? बहुत जरूरी है ये जानना कि क्या कहता है आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट कहता है कि ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में। क्या? ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, वफादार हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही प्यारी सी ये बात कही है आज के इस थॉट ऑफ द डे ने, बड़ी ही सटीक बात कही है। थॉट कहता है कि ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में। अगर दुनिया ही जैसा आप हर शख्स को ट्रीट करने लग गया कि सब एक जैसे, सब एक जैसे, तो कहाँ मिल पाएगा। इसीलिए आगे ये थॉट कहता है कि वफादार हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। सो जो वफादार होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो दुनिया की भीड़ से अलग होते हैं, वो कुछ अलग बात करते हैं। वो बात नहीं करते जो सब करते हैं, वो अपने ही तरह की अपनी बात करते हैं। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो बड़ा ही खूबसूरत कहा है और इसके मायने बहुत प्यारे अपने, है ना। कितना ज़्यादा अलग है ये बात कि कितना हम किसी को कैसे भी जज कर लेते हैं। जब कुछ होता है तो हम कहते हैं अरे सब ऐसे ही हैं। क्या सब सच में ऐसा होता है? क्या सच में हम भी सभी जैसे होते हैं? हमारे अंदर भी कुछ अलग होता है? हमारे ख्याल से ये सारे प्रश्न हमेशा सोचने वाले बन जाते हैं, और जब आप सोचते हैं, जब आप समझते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हर कोई एक जैसा नहीं हो जाता है, ऑफकोर्स। और स्पेशली वो जो दुनिया से अलग बातें करते हैं, भीड़ से अलग रहते हैं, उनके में अगर आप देखेंगे तो यही फ़र्क नज़र आएगा कि वो दुनिया से अलग है। इसीलिए कहता है कि वफादार हमेशा तन्हा होते हैं। सो जो वफादार होंगे वो भीड़ के जैसे नहीं होंगे, वो तन्हा होंगे। और ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। अब ज़रा सोचिए कितना कूल कूल वाला मौसम है, और उतना ही कूल आज का थॉट ऑफ द डे है। क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही गई है और ये बड़ी ही अच्छी बात है। अब आपको कैसी लगी ये बात, आप ज़रा जहन में सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं बूस्ट करने वाला ये खूबसूरत सा सॉन्ग, चूँकि आज मौसम बड़ा रोमांटिक सा है तो सॉन्ग्स भी फिर वैसे ही होने चाहिए। Stay tuned only on Radio Gyanasthali 89.6 FM.

0: हाय, ये नादानी है। और एक बार वापस इसी नादानी में हम आपके पास में आ गए हैं, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन, जहां शुरुआत होती है गोंडा की। गुड मॉर्निंग गोंडा से। सुबह आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा है आपने और क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कहना है आपका। अब आप सोचेंगे इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना ज़्यादा हम सोचते ही क्यों है। चलिए फिलहाल मैसेजेस देखते हैं क्या आया है और क्या रिएक्शन है आज के थॉट ऑफ द डे का। फिलहाल आपने ट्यून किया है 89.6 एफएम को फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। स्टे ट्यून्ड।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अकान।

हाँ जी, तो भाई क्या कुछ लिखा है प्रीति जी ने, लिखा है बहराइच से, सर जी वेरी वेरी लवली मॉर्निंग, ऑसम मौसम। मुझे लगता है बहराइच में भी ऐसा हो रहा है, तभी आपने लिखा है, राइट? एंड यस ऑफ कोर्स, अगर हम यहाँ भी देखें गोंडा में भी, तो जैसे आज मॉर्निंग में आग खुली है, बने का भाई यही मौसम तो चाहिए होता है जून में। बहुत लाजवाब मौसम, बहुत बढ़िया। और सुनने में आया है कि बारिश वारिश हुई थी कल रात, है पता नहीं, हम तो सो गए थे। खैर, जो जगे होंगे और जो स्क्रॉल कर रहे होंगे, उन्होंने ज़रूर इसको देखा होगा। सुबह जब हुई तो भाई इतनी बदली वाली सुबह किसको नहीं पसंद आएगी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत मज़ा आया। और साथ ही साथ आपने अभी थॉट को सुनने के बाद लिखा है, 100% ट्रुथफुल थॉट, सच्चे वफादार मिलते ही कहाँ हैं, अगर मिलते भी हैं तो 100 में से एक, वो भी किस्मत से। जी हाँ, वफादार जो है वो कहीं अलग होते हैं तन्हा, जैसा कि आज का थॉट कहता है कि न ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, वफादार हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, जो वफादार होते हैं वो तन्हा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया से अलग उनकी राय होती है। अब सबने कहा कि भाई झूठी और ऐसी दुनिया है, तो लाभ हम भी करें, ऐसे करने वाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो अपने ही अकॉर्डिंगली चीज़ों को करते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं, जो अपनी राय देखते हैं, ना कि बल्क राय देखते हैं, वो अलग हो जाते हैं और उनकी पर्सनैलिटी अलग ही दिखती है। क्योंकि वो दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए ऐसा जो कुछ भी करते हैं उनके लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होता है, और इसीलिए ये अलग ही पाए जाते हैं। सो आप कौन सी प्रजाति के हैं भाई साहब? आप तन्हा रहने वाली प्रजाति के हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। फिलहाल आज का थॉट आपको पसंद आया, एंड मुझे भी बहुत ही ज़्यादा हिट किया आज के थॉट ने। आइंदा कभी कोई अलग मिला तो उसको और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट की निगाह से हम देखने वाले हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। फिलहाल आपका क्या है आप ज़रूर बताइए। और इस समय बनारस में आप, ओहो क्या बात है भाई, प्रीति जी बनारस घूम रही हैं, और ऐसा मौसम भाई साहब बनारस में मज़ा ही आ जाएगा, सच बता रहे। पता होता तो पहले से हम भी पहुँचे हुए होते हैं।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: जी, सो भाई अब चलिए बताते हैं आपको कि आखिर क्या है हमारे सिटी अपडेट में आज की, क्योंकि वक्त हो गया है आपको बताने का कि भाई गोंडा में क्या कुछ चल रहा है आपके मॉर्निंग शो में सिटी अपडेट्स।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई सिटी अपडेट की तरफ चलते हैं और आपको बता दें कि भाई 23 जून को समस्याएं सुनेंगी मंडल आयुक्त। जी हाँ, देवी पाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल 23 जून को गोंडा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान जन सुनवाई करेंगी, निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगी। एक ग्राम पंचायत में संध्या संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बेनिफिशरीज हैं यानी लाभार्थी हैं उनसे सीधा बातचीत करेंगी। सो कार्यक्रम के हिसाब से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जन सुनवाई होगी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याएं सुनेंगी। दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक निर्माणाधीन परियोजनाओं का जो स्थलीय निरीक्षण है वो करा जाएगा। शाम 5 बजे से 7 बजे तक ग्राम पंचायत में संध्या संवाद कार्यक्रम भी होगा। इसके अलावा आपको हम बता दें, अगली जो अपडेट आ रही है वो बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर के आ रही है। बरसात के मौसम में सरयू नदी में जो संभावित बाढ़ है इसको देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सो उप जिला अधिकारी नेहा मिश्रा ने एल्गिन चरसड़ी तटबंध और बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित ग्राम नकहरा के निरीक्षण के बाद कई सारे विभागों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इन्होंने बताया कि एल्गिन चरसड़ी तटबंध के टूटने के बाद बने नए बांध को अंदर नखरा गांव के 8 मजरे आ गए हैं जो बाढ़ के दौरान प्रभावित हो जाते हैं। उन्होंने एसडीएम को एक लेटर लिखकर इस साल भी एसडीआरएफ की तैनाती करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही बीडीओ, सीडीपीओ, पशुपालन विभाग और सीएचसी अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वो बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की ड्यूटी को लगाएंगे। इसके अलावा बिजली कटौती को लेकर के भी है और बिजली को लेकर लगातार लोगों की प्रॉब्लम सभी बनी हुई है और इसी के चलते कहीं ना कहीं फ़िलहाल अभी लगातार लोगों की जो लेटर्स हैं, शिकायत हैं, वो पहुंचती जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 26,74,000 मतदाता चुनेंगे अपने गांव की सरकार। जी हाँ, सो फिलहाल पंचायत की मतदाता सूची जो है वो आ गई है और

कैडेट्स को जो है वो आधुनिक टेक्निक से जोड़ते हुए ड्रोन संचालन की प्रशिक्षण दिया गया। कर्नल सुनील कपूर ने बताया कि भाई भारतीय सेना में ड्रोन की जो भूमिका है तेजी से बढ़ी है, इसलिए एनसीसी में भी इसे अनिवार्य किया गया है। शिविर में पहली बार जो है कैडेटों को ड्रोन उड़ाने की प्रक्रिया सिखाई जा रही है। इस मौके पर जो विधि विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से रश्मि सिंह ने कैडेट्स को पॉक्सो एक्ट और उससे रिलेटेड जो प्राविधान है उसकी जानकारी दी। इसके अलावा रस्साकशी का जो प्रतियोगिता है उसका भी आयोजन किया गया। इसके अलावा ब्लॉक सभागार में कल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन्स बांटे गए। ब्लॉक प्रमुख ने 30 कार्यकर्ताओं को मोबाइल जो है वो सौंपे। साथ ही साथ ब्लॉक के सेक्टर से 5-5 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और बेलसर में 185 केंद्र जो है वो संचालित हैं, बाकी सुपरवाइजर्स के ज़रिए मोबाइल उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल ये अपडेट्स थी जो कि गोंडा से थी और आपके लिए थी। आई होप कि ये आप तक पहुंच गई है। एंड अब जो है वो हम चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि 75 बिजली उपभोक्ताओं पर FIR दर्ज हुई है। इसी गर्मी के दौरान बढ़ते विद्युत भार और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है और देवीपाटन जोन में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जनपद में जो विभागीय और विजिलेंस टीम है इनकी संयुक्त जांच की, जिसमें 75 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की जो मुकदमा है वो दर्ज कराया गया। विभाग के हिसाब से 9 और 10 जून को उच्च लाइन हानि वाले जो विद्युत उपकेंद्र है उससे जुड़े क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। जाँच के दौरान कई कंज्यूमर्स मीटर को बाईपास करके सीधे बिजली का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। कुछ जगह पर एयर कंडीशनर, इंडक्शन चूल्हे और बाकी विद्युत उपकरण पोल जैसे अवैध केबल जोड़ करके संचालित किए जा रहे थे। गोंडा शहर के बड़गांव क्षेत्र 5 और आवास विकास कॉलोनियों में 2 मामलों का खुलासा हुआ। अम्बेडकर चौराहे उपकेंद्र क्षेत्र के कुतुब नगर और जानकी नगर में भी 3 जो कंज्यूमर्स है बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। खरगूपुर, करनैलगंज, मनकापुर, नवाबगंज क्षेत्र में 5-5 मामले सामने आए। गोंडा जिले में 26 FIR दर्ज की गई। बहराइच में 25, बलरामपुर में 17, श्रावस्ती में 7 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। मुख्य अभियंता ने बताया कि बिजली चोरी की सूचना के लिए विभाग ने नियंत्रण कक्ष के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाया है 8004916771 और 8004916772 जो है वो जारी किए हैं। ये रही अपडेट जो कि गोंडा से थी और आप तक पहुंचा दी गई। आई होप कि ये अपडेट ज़रूर आपके काम की रही होगी। फिलहाल अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट क्या है? सॉन्ग की, भाई साहब। आतिफ असलम की आवाज़ का ये ज़बरदस्त सॉन्ग आपको मॉर्निंग वाले शो में और भी ज़्यादा फ्रेशनेस वाली फील देने आ रहा है। आइए इस गाने को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं अपना गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग जॉक हर्ष अदनान।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

सभी उमूड। हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

तरकीब से याद आया यार कि आखिर हम लोगों को किस तरह से हम जज करते हैं, यानी हम कहते हैं कोई पढ़ा लिखा है तो कोई हम कहते हैं कि कोई कैसा है कोई कैसा है, इन सभी के बीच में कुछ ऐसा मुझे नज़र आया जो मुझे आप तक पहुंचाना है। और ये जो है बहुत अलग बात है। अलग बात क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसे जो अजम्पशंस हमारे होते हैं उससे काफ़ी अलग कुछ मैंने सुना, तो मुझे लगा ये आप तक ले आना चाहिए। भाई एक ऐसे शख्स हैं जिनको फ़िलहाल ऑक्सीजन बाबा के नाम से जाना जाता है। अभी ऑक्सीजन बाबा क्या ऑक्सीजन देते हैं, और अगर देते हैं तो कैसे देते हैं और किसको देते हैं, ये सब कुछ बताने वाले। लेकिन उससे पहले आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं, फिर बताते हैं ऑक्सीजन बाबा की कहानी आपकी आप तक। और ये कहानी जो है मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अलग लगने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड।

0: सो भाई छोड़ दो आंचल ना छोड़ दो ज़माना, मैं बताता हूँ क्या छोड़ देना आपको। बहुत ज़्यादा चीज़ों का अजम्पशन छोड़ देना, जो हम लोगों को पहले ही जज कर लेते हैं कि भाई ये तो पढ़ा लिखा है, ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। एंड हम ऑफ कोर्स बाद में हरकतें देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी डिग्री होती है, लेकिन इंसान को तमीज़ नहीं होती कई बार। और ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि भाई जिनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, वो उनके पास इतना सलीका, इतनी इंसानियत, इतना बड़ा दिल है। अक्सर आपने भी महसूस किया होगा। ऐसी एक बात हम बताने वाले ऑक्सीजन बाबा की, आखिर हैं कौन ही ऑक्सीजन बाबा।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

दरअसल हम बात करें बनारस के ऑक्सीजन बाबा की, 500 लीटर जो है वो टंकी हमेशा उनके पास में नजर आ जाती है। कौन सी टंकी? अरे पानी की टंकी। इसको ले करके ये रोज सड़कों पर निकलते हैं और 12 सालों से इसी तरह पेड़ पौधों की सेवा कर रहे हैं। सो गांव भदोही है और जगह है बनारस। जी हाँ, 52 साल के गोपाल पेशे से तो कुम्हार हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाकर वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं। और इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच में ये प्रकृति से प्यार करना बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। सो अपनी कमाई, अपना वक्त और अपनी मेहनत, सब कुछ वे इन्हीं पौधों पर खर्च कर देते हैं। शुरुआत तब हुई जब इन्होंने सड़क किनारे लगे पौधों को पानी के बिना सूखते हुए देखा। इन्हें लगा कि पौधे तो लगा देते हैं लोग, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। और यहीं से इन्होंने तय कर लिया कि ये पेड़ लगाने से ज़्यादा उन्हें बचाने का काम करने वाले हैं। पहले इन्होंने बाल्टियों से पानी ढोया, फिर एक ट्रॉली ली और आज गोपाल जी जो है रोज़ उसी दान की हुई 500 लीटर की टंकी ले करके पौधों को सींचने निकलते हैं। पानी कभी कभी सरकारी नल तो कभी कुएं से भर लेते हैं। और उनकी इस सेवा का कई लोगों ने मजाक भी कई बार उड़ाया, बहुत हंसी उड़ाई। कई बार उन्हें पागल भी कहा गया तो कई बार पानी भरने से भी रोक दिया गया। लेकिन भाई गोपाल जी हर अगली सुबह फिर लौटे वापस उसी जोश, उसी उत्साह और उसी टंकी के साथ और उन्हीं पौधों के पास। सो उनकी बनाई हुई ट्रॉली जो है अब उनका साथ देने में कमज़ोर पड़ने लगी है। अब वो पानी ढोने के लिए एक टोटो लेना चाहते हैं ताकि बनारस का कोई पौधा मुरझाए नहीं। सो जब बिना साधन के एक छोटा साधारण सा कुम्हार प्रकृति के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो क्या हम मिल करके ऑक्सीजन बाबा को एक इस तरह से हेल्प नहीं कर सकते क्या, है ना? सच में। सो चलिए एक अच्छा काम करने वालों का साथ देते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत सारी मदद पहुंचाते हैं। सो हज़ारों पेड़ों की ज़िंदगी बचा चुके हैं। और ऑक्सीजन बाबा, अगर उनके पर्सनल नंबर की हम बात करें तो उनका नंबर है 72 75 54 61 11, 72 75 54 61 11। ये ऑक्सीजन बाबा का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, जिनसे कॉन्टैक्ट करके उनको हेल्प भी किया जा सकता है। और वो फ़िलहाल जो यहाँ हम लोकल भाषा में जिसको सग्गड़ बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं पैडल से चलाने वाला जो रिक्शा होता है, वो अब कमज़ोर पड़ने लगा है क्योंकि इतनी बड़ी भारी टंकी रहती है, जाहिर है। और अगर अब एक ई रिक्शा उनको मिल जाए तो ख़ुद कहते हैं कि हम फिर बनारस का कोई भी पेड़ सूखने ना दें। सो इस तरह से जो लोग भी उनकी हेल्प करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और फिलहाल इस कहानी को सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद आपको क्या ख्याल आता है ये आप ज़रूर बता सकते हैं। आई होप कि ये बात जो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से शॉर्ट से म्यूज़िकल ब्रेक का। आइए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं इस रोमांटिक से वेदर में।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: हाँ जी, तो भाई जिस चीज़ का इंतज़ार था फिलहाल वो इंतज़ार ख़त्म होने को है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मैच की, एक ऐसे टूर्नामेंट की जिसका इंतज़ार पूरा का पूरा वर्ल्ड करता है। सो डू यू थिंक कि क्या हो सकता है, कौन सा फुटबॉल मैच हो सकता है? ओ, फुटबॉल मैच हो सकता है, यस बिल्कुल सही बात है। सो आज से फुटबॉल के सरताज की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। क्या है पूरी अपडेट्स, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, तो भाई अब हम बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप की, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि सारे ही देशों में बहुत ज़्यादा जिसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। पिछले 7 बार से 32 टीमों के बीच में लगने वाली ट्रॉफी की होड़ पहली बार 48 टीमों के बीच अब दिखेगी। सो पहली बार विश्व कप की मेज़बानी एक दो नहीं बल्कि 3 देश, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से कर रहे हैं, जिनके 16 स्टेडियम्स में 39 दिन के दौरान करीब 104 मैचेस खेले जाने हैं। इसके बाद फुटबॉल के नए सरताज का नाम सामने आएगा। फुटबॉल की सबसे बड़ी ये जंग जो है इसलिए भी ख़ास है क्योंकि मौजूदा वक्त में सबसे बड़े फुटबॉल स्टार अर्जेंटीना के लियोनल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी विश्व कप हो सकता है। दोनों ही दिग्गज विश्व कप में रिकॉर्ड बनाने के मुहाने पर आके खड़े हुए हैं। ऐसे में सभी फुटबॉल जो प्रशंसक हैं उनकी निगाह उन पर होगी। सो विश्व कप में खेल रही टीमों का जो विश्लेषण है उनको कड़ी में, इसकी शुरुआत पहले से ग्रुप आई, जे, के और एल के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। सो ग्रुप आई में कौन है? फ्रांस, सेनेगल, इराक और नार्वे। जी हाँ, सो फ्रांस फीफा रैंक 1 है। कोच दिदियर डेस्चैम्पस की टीम स्टार काइबन बाम्बे और सबसे मजबूत टीम माना जा रहा है। नॉर्वे जो कि फीफा रैंक 31 पर है, कोच स्टेल सोलबाल्कन की टीम के बाद एरलांग हालांद हैं। क्वालिफाइंग में औसतन 5 गोल पर मैच करने वाली टीम को छुपारिस्तम माना जा रहा है। इराक की बात करें तो इसकी फीफा में रैंक 57 है। कोच ग्राहम आर्नोल्ड की टीम का स्टार आमिना हुसैन है। सबसे बड़ी ताकत है कि इनके पास हारने को कुछ नहीं है। सेनेगल फीफा रैंक 14 पे है। कोचे पेप थियू की टीम के स्टार सदियों माने जाते हैं, आक्रामक, तेज़ और टीम की ताकत हैं। इसके अलावा ग्रुप के की बात करें तो पुर्तगाल, डीआर कांगो, उज्बेकिस्तान, कोलंबिया है। पुर्तगाल जो कि फीफा रैंक 5 पर है, कोच रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा स्टार है जो अकेले दम पर टीम के प्रदर्शन को बदल सकता है। डीआर कांगो फीफा रैंक 45 है। कोच सेबेस्टियन डेस्ब्रे की टीम के स्टार योवान विस्सा हैं। टीम की ताकत मानसिक मजबूती है। उज्बेकिस्तान की रैंक बताएं तो 50 है। कोच फेबियो कैनावरो की टीम के स्टार अब्दुल कोदिर खुसानोवा हैं। टीम रक्षण बेहद मजबूत है और ये गोल करने में कमज़ोर पड़ती है। कोलंबिया है, फीफा में रैंक इसकी 13 है। कोच नेस्टर लोरेंजो की टीम के स्टार लुइस डियाज हैं, लेकिन टीम के अच्छा प्रदर्शन की स्थिरता नहीं है। इसके अलावा ग्रुप जे है, ग्रुप एल है। इसमें जे की बात करें तो अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन हैं। ग्रुप एल की बात करें तो इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा है। सो इस तरह से इतनी सारी टीमें हैं और फीफा वर्ल्ड कप का इंतज़ार अब हो रहा है क्योंकि घड़ियां हो गई है ख़त्म। अब फीफा वर्ल्ड कप एक बार वापस से गूंजने वाला है। सो ऑफ कोर्स आई होप कि भाई आपको भी हो सकता है फीफा का इंतज़ार हो। अगर आप स्पोर्ट मैचेस देखते हैं तो आप जाहिर है भाई इसके दीवाने होंगे ही होंगे। सो चलिए अब आपको एक बार फीफा वर्ल्ड कप का पुराना गाना सुनाते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, एंड आप एक बार वापस से फीफा की जो है वाइब महसूस करने वाले हैं इस सॉन्ग के बाद।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तो हर कोई करता रहता है, और बहुत सारे शोज भी हमारे गुंडा एफएम के हैं जो जिसमें बात होती है, लेकिन लड़कों के बारे में थोड़ा कमी बात हो पाती है ना, हमेशा से अंडर रेटेड रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, कुछ तो सीक्रेट है भाई अपन लोगों में। फिलहाल कुछ सवाल है जो मुझे लगता है कि अब लड़कों से करना ही चाहिए, क्योंकि डियर लड़कों शादी से पहले ये ज़रूर सोचना होगा कि एक बातचीत जो अक्सर नहीं होती लेकिन अब चुकी होनी चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके साथ शायद वक्त आ गया है कि हम खुद से कुछ कठिन सवाल करें। सो वो सवाल आखिर क्या हैं, कौन से कठिन सवाल अब हमको खुद लड़कों को खुद से करने चाहिए।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

शादी की बात होती है तो बस यही सुनना पड़ता है, लड़का कमाने लगा है अब शादी करो, उम्र हो गई है अब घर बसाओ, माँ को बहू चाहिए, पर ये कोई नहीं पूछता है कि क्या तुम तैयार हो। सिर्फ फिनेंशियली नहीं, सिर्फ एक बात नहीं बल्कि इंसान के तौर पर भी क्या तुम तैयार हो, क्या तुमने अपनी भावनाओं को समझा है। मर्द को रोना नहीं चाहिए, ये लाइन कितनी सारी जो है आपको पता नहीं, लेकिन कितनी सारी शादियां ये लाइन तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि अपनी फीलिंग्स को दबाना स्ट्रेंथ नहीं है, वो एक बोझ है जो आपका पार्टनर अकेले उठाता है, और एक मजबूत रिश्ते के लिए पहले एक इमोशनली अवेयर इंसान बनना ही पड़ता है। सो घर का काम सिर्फ मदद नहीं होता, पहली बात, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, बच्चों का ख्याल रखना, घर की जिम्मेदारियां निभाना, ये सिर्फ एक काम नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ये जिम्मेदारियां निभाते हैं तो आप मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बराबरी वाले रिश्ते की नींव को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि शादी में जिम्मेदारियां बांटी जाती है, एहसान नहीं किए जाते, राइट? इसके अलावा क्या आपकी पार्टनर पियर है या प्रॉपर्टी? सो भाई, उसका करियर या दोस्ती उसकी च्वाइसेस हैं, ये थ्रेट नहीं है, बल्कि अच्छी शादी में दोनों लोग अपनी पूरी जिंदगी लेकर आते हैं, एक दूसरे की जिंदगी को छोटा नहीं करते, कंट्रोल करने और केयर करने जैसी चीज नहीं लगती, पर फील भी एक जैसा नहीं होता है। जी हाँ, सो क्या आपने वो बातें की हैं जो मैटर करती है, बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, दोनों के काम की इज्जत कैसी होगी, पैसों का मैनेजमेंट कैसा होगा, इन लॉस के साथ बाउंड्रीज क्या होंगी, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ वो कैसे होगा। सो रोमांस एक रिश्ता शुरू करता है जब क्लैरिटी उसे रखती है। सो जो इज्जत घर की महिलाओं को देते हैं, बाहर क्यों नहीं? माँ बहन बेटी के लिए आपकी जो नज़र है, वही नज़र बाकी फीमेल्स के लिए भी होनी ही चाहिए। सो एक हेल्दी मैरिज में कंसिस्टेंसी चाहिए, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। सो क्या आप झगड़े के बिना, चिल्लाए बिना, ब्लेम किए बिना हैंडल कर सकते हो? ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन आए जिसमें आपको चिल्लाना ना पड़े, आपको गुस्साना ना पड़े, और बिना किसी के ब्लेम किए आप हैंडल कर लो? सो हर कपल झगड़ता है, फ़र्क बस ये है कि कैसे। अगर आपका डिफ़ॉल्ट मूड है चुप हो जाना या दरवाज़ा बंद कर लेना, तो ये बात काट देना, तो ये एक स्किल नहीं है, एक गैप है जो वक्त के साथ बड़ा हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीखा जा सकता है, बस सीखने की अगर इच्छा होती है तो ज़रूरी हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात कि क्या तुम शादी कर रहे हो क्योंकि चाहते हो या फिर क्योंकि दबाव है? सोसाइटी का प्रेशर, परिवार की खुशी, उम्र का डर, ये सब रीजंस हैं, मोटिवेशन नहीं। सो शादी कोई अचीवमेंट नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी वाला फैसला है, और सबसे बेहतरीन रिश्ते वो होते हैं जो पूरे इंसान मिलकर बनाते हैं, तो अधूरे मिलकर नहीं। सबसे बड़ी बात कि शादी वो रिश्ता है जो पूरे दो इंसान मिलकर बन के होता है, दो अधूरे जो है इंसान है वो रिश्ते बनाते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। सो शादी की तैयारियां सिर्फ सेटलमेंट नहीं है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है कि इसकी तैयारी दोनों को एक दूसरे की ग्रोथ और सपोर्ट करते हैं, रोकते नहीं हैं, एंड जिसमें जिम्मेदारियां शेयर होती है, सिर्फ एक के कंधे पर नहीं लादी जाती, जिसमें दोनों की ज़रूरत, ख्वाहिश और आवाज़ बराबर मायने रखती है। सो ये सवाल आज बहुत बड़ा है हर उस शख्स के लिए जिसको कहा जा रहा है

कि भाई शादी कर लो, और जिसकी शादी अब हो भी चुकी है। सो क्या ख्याल है और क्या सोचते हैं आप इस बात को, ज़रा आप गौर करेंगे तो आपको शायद समझ में आ ही जाएगा, है ना। बहरहाल कुछ आप लोगों ने कंटेंट्स भी भेज दिए हैं, तो चलिए आपके कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले प्रीति जी बहराइच से, जो कि फ़िलहाल बनारस में है, लिखती हैं, ज़िंदगी और वफ़ादारी, बड़े ही किस्मत से मिलते हैं वफ़ादार साथी ज़िंदगी में। वफ़ादार वही होते हैं जो निभाते साथ सदा सुख दुख में। वैसे बड़ा ही कठिन और संघर्षमय होता है वफ़ादारी का सफ़र। चेहरे से पता नहीं चलता वफ़ादारी किसी की, जब तक सदव्यवहार ना हो किसी के साथ परिस्थिति अनुरूप। अधिकांशतः वफ़ादारी साबित करते करते स्वयं परेशान हो जाता है वफ़ादार, इसलिए कभी कभी बड़ा ही कठिन होता है वफ़ादारी के मार्ग पर चलना। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, क्या बात है, बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। आज के थॉट को सुना और उस पर आपने अपनी बातों को कहा, थैंक यू सो मच टू यू। और आइए अब चलते हैं अगली कुछ और कंटेंट्स की तरफ, और देखते हैं कि भाई इस बार क्या क्या है। सो सबसे पहले हम बता दें, कुंदन राज दत्ता उर्फ निश्चल जी लिखते हैं मोहब्बत के नाम से, ये टाइटल है उनकी तरफ से जो उन्होंने लिख भेजा है हमको। इसमें क्या लिखते हैं कि मोहब्बत के नाम से, अब दिल नहीं बहलता किसी शाम के साथ, रिश्ता भी टूट गया अपने ही अरमां के साथ। जो ख्वाब कभी पलकों पे सजाया करते थे वो बिखर गए वक्त की पहचान के साथ। हर मोड़ पर तेरी यादों का पहरा मिलता है, जैसे कोई दर्द चला हो मेरी जान के साथ। मुस्कुराने की कोशिश तो बहुत की हमने, पर गम भी चलता रहा मुस्कान के साथ। तेरे जाने के बाद ये हाल हुआ दिल का, जैसे सूख जाए दरिया किसी तूफान के साथ। अब ना कोई शिकायत है ना कोई गिला, सब कुछ बह गया आशिकों की उड़ान के साथ। कभी तेरी बातों में जन्नत दिखाई देती थी, अब तन्हाई मिलती है हर मकान के साथ। हमने चाहा था उम्र भर साथ तेरा, पर तू बदल गई मौसम की जुबां के साथ। कुछ जख्म ऐसे हैं जो दिखते नहीं, मगर रिश्ते हैं हर नई सुबह के साथ। रात भर चांद से बातें किया करते हैं, तेरा जिक्र आता है आसमान के साथ। लोग कहते हैं वक्त हर दर्द मिटा देता है, पर दर्द बढ़ता जाता है तेरे ध्यान के साथ। अब तो आईना भी सवाल करने लगा है, क्यों उदास रहते हो अपनी पहचान के साथ। दिल की किताब में आज भी तेरा नाम है, लिखा हुआ जैसे किसी फरमान के साथ। कभी लौट आओ तो देख लो हाल मेरा, मैं आज भी खड़ा हूँ उसी मकान के साथ। जिस राह से गुजर कर तुम गुजरा करते थे, वहीं बैठा हूँ अपनी थकी जान के साथ। मोहब्बत ने सिखाया है सब्र का मतलब, और जीना भी अधूरे अरमान के साथ। अब ना उम्मीद न मिलने की न शिकायत कोई, बस जिंदगी कट रही तेरे एहसान के साथ। जब भी कोई मोहब्बत की बात करता है दिल भर आता है बीते हुए सामान के साथ। ये कहानी शायद यहीं ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी मेरी आखिरी सांस के साथ। क्योंकि सच्चा इश्क कभी मरता नहीं दोस्तों, वो जिंदा रहता है इंसान के बाद भी नाम के साथ। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, थैंक यू सो मच। नरेंद्र छाऊ जी लिखते हैं कि दिल में रखता नहीं कोई जज्बात हूँ, बड़े छोटे में रखता नहीं कोई लिहाज हूँ। बातों से लगे किसी को ठेस कोई, दिल दुखाना भी समझता फिर पाप हूँ, क्या बात है। पुनीता सिंह जी ने लिखा है कि ऐ खुदा तू मुझे इतना सताया ना कर, देखे होठ हंसी होठों पे तू दर्द में इन आँखों को रुलाया ना कर। या तो ले मेरी सांस एक ही बार में, या तो मुझे रख उनकी यादों में इतना तड़पाया ना कर, क्या बात है, बहुत खूब। यामिनी चौहान जी ने लिखा है वो मेरी कहानी का ऐसा किरदार था जो कभी मेरा हुआ नहीं, मगर अजीब बात यह है कि उसके जाने के बाद भी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती रही। हर नए मोड़ पर उसका कोई निशान मिल जाता, हर खामोशी में उसका नाम सुनाई दे जाता। मैंने कई बार नया अध्याय लिखना चाहा, मगर हर पन्ने पर वही पहला एहसास उतर आता। मैंने उसे भुलाने की कोशिश तो बहुत की, मगर यादों के शहर में उसके रास्ते बंद ना हुए। वो मेरी ज़िंदगी में शायद मेहमान था जिसे मैंने अपना समझ लिया था, क्या बात है, बहुत खूब, थैंक यू सो मच टू यू। इसके अलावा कल आकाश जी का बर्थडे था, उनका रिएक्शन भी आ गया है।
और आपने लिखा भी है कि आज गुंजन दी का बर्थडे है, जन्मदिन है। अरे बहुत बहुत मुबारकबाद गुंजन जौहरी जी, आपने ही कई लोगों को जोड़ा है जिनका हमने नाम बताया, सबको जोड़ने वाले आप हैं। और आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद हम सभी लोगों की तरफ से। बहुत उम्दा आप लिखते हैं और बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं, सो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद लिखते हैं कि बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, गॉड ब्लेस यू, आप हैप्पी रहो ऑलवेज़ और मुस्कुराते रहो, आपकी लाइफ से सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए, जिस भी परेशानी से आप गुज़र रहे हो उन सबसे छुटकारा मिले आपको। साथ ही मुझे सुनने वाले सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आप सब जिंदा हो, आप सब खुलकर सांस ले रहे हो, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। शायद आपको कभी किसी ने नहीं कहा होगा, पर मैं आज कहता हूँ थैंक यू, थैंक यू ज़िंदा रहने के लिए, थैंक यू इस दुनिया को अपनी अच्छाइयों से, रोशनी से रोशन करने के लिए, थैंक यू सबके बारे में सोचने के लिए, सबकी केयर करने के लिए, थैंक यू अपने आंसू छिपाकर दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, थैंक यू अपने सपनों को ज़िंदा रखने के लिए, थैंक यू इस नफ़रत भरी दुनिया में भी इंसान बन इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए, और थैंक यू आप जो हो जैसे हो वैसे बने रहने के लिए। I send my virtual hugs to the whole universe. God bless you everyone. Once again, happy birthday. क्या बात है। So, आज गुंजन जौहरी जी का जन्मदिन है, लेकिन उनका मन थोड़ा उदास है और इस बार उन्होंने कुछ लिखा नहीं है और कहा है कि आज के लिए बस big thanks and smile. Thank you so much. और हम आपके बहुत सारे सुकून, बहुत सारे खुशियों की ज़रूर कामना करते हैं गुंजन जौहरी जी। एंड थैंक्स टू मिस्टर आकाश कि आपने बताया कि आज गुंजन जौहरी जी का बर्थडे है, बहुत खुशी की बात है। और हम चाहेंगे कि इस बर्थडे हम वो सारी दुआएं उन तक पहुंचाए जिनके लिए वो डिज़र्व करती हैं। थैंक यू सो मच। प्रीति जी ने भी विश कर दिया है, गुंजन जी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड धर्मेंद्र मोहन जी आपका भी स्वागत है आवास विकास से। आपने लिखा सर जी जो अभी बात बताई आपने सीधा दिल पर फीलिंग कर गई है, थैंक यू सो मच टू यू धर्मेंद्र जी। सभी की लेखनी औसम है, प्रीति जी ने बोला, थैंक यू सो मच। इम्तियाज़ मौजूद हैं, प्रीति शुक्ल जी थैंक यू। कमल नैन जी आरजेदान से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। इसके अलावा सॉन्ग्स पसंद आए हैं धर्मेंद्र जी को, इट्स कुमार आपका भी स्वागत करते हैं। और आशु मिश्र जी लखनऊ से अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू लिखा है, खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों में सपने होते हैं, चाहे जितने भी दूर रहे अपने तो अपने होते हैं, क्या बात है। सो थैंक्स टू एवरीवन एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे गुंजन जौहरी जी, आपको वापस से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड सबने बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, आज का शो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। और जाते जाते इस गाने को आप सुनते जाइए, फिलहाल हम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बने रहिए अपने गोंडा FM 89.6 FM पर, यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपनी आरजे समता आ गई हूँ गांव की गूंज की टीम के साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के माध्यम से आप सभी से एक बेहद खास बात और यात्रा साझा करने। आज हम सभी यानी मैं और गांव की पूरी टीम यानी गांव की गूंज की पूरी टीम आपको ले चलेंगी एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मानविंग लोंग की ओर। साथ ही आपके दिल यानी गोंडा के उस पन्ने को फिर से खोलेंगे जो कभी देश के सबसे गंदे शहर के रूप में दर्ज था, और फिर कैसे यहां के सभी लोगों ने आत्म मंथन और संकल्प से इसे यूपी का सबसे साफ टॉप 5 शहरों में बनाया।
12: हाँ समता, यही नहीं, आसपास के गांव जैसे कर्नलगंज, मनकापुर, नौबस्ता, बालपुर, कटरा, पड़री कृपाल, तिवारी पुरवा, पंडित पुरवा, केशवपुर पहाड़वा, इमिलिया आदि की जनता ने भी इस कार्य में भरपूर योगदान दिया है।
13: हाँ किरण दी और समता दी, सही कहा आपने, पर आज ये गीता दी कहाँ रह गईं? शायद पड़ोसन सरला और विमला को सफाई की हिदायत देने में रह गई होंगी। मैं देख कर आती हूँ, तब तक आप हम सबको एक गीत सुना दीजिए जिसके बोल हैं, शिव की धनुषिया को तोड़ दियो रे दशरथ के ललनवा।
11: हाँ भाई, अयोध्या की ओर चलते हैं और अवध की माटी से जुड़ते हैं, राम जी का और सीता जी का स्वयंवर याद करते हैं।
12: हाँ हाँ बिल्कुल, तो लो सुनो ये सॉन्ग।

0: अरे कहाँ रह गई गीता दीदी भाई?
1: अरे हम सरलवा और बिमला का समझावत रहे कि गंदगी जौन है कचरा पेटी में डारा करो, बस सब सुनते नहीं।
0: तो आपने उन्हें एशिया के सबसे अच्छे गांव मावली नोंग के बारे में क्यों नहीं बताया?
1: ये कौन सी जगह है? अरे तनिक बढ़िया से बताओ।
2: मावलिंग नोंग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, इसे भगवान का बगीचा भी कहते हैं।
3: पर समता दी, इस गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव क्यों कहते हैं?
2: क्योंकि जया, यहां एक भी तुम्हें कूड़ा देखने को नहीं मिलेगा। ये गांव मावलिंग नोंग हिमालय की अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है, साथ ही पर्यटकों के आकर्षक केंद्र भी बना है। ऐसा क्यों है ये किरण दी बताएंगी, पर बाकी बातें मैं बता देती हूँ। मावलिंग नोंग, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है, एक शांत और सुंदर स्थान है जिसका वातावरण किसी दिव्य उद्यान जैसा मनमोहक है। ये गांव और सपाटे के लिए आकर्षक तत्वों से अधिक प्रचलित है।
1: हाँ समता, अब हमहू का याद आवा, पिछले साल पड़ोस की जो मंजू है वो अपने पति के साथ वही गाँव में घूमे गयी रहा है। महुरिया गांव की जो मंजू देवी है एक प्रगतिशील किसान की पत्नी है। वे बतावत रही कि मावली नो मा सड़क पर एक को पत्ता ना पई हो, अतनी सफाई रहा था, सबके द्वार प्राकृतिक रूप वाले हैं, जानो कि नहीं, और जो लगाते सड़क मट्टी से लीप दी गई हो, बहुत सुंदर गांव होए।
0: हाँ गीता जी, मावली नोंग में आस्था के प्रतीक भव्य गिरजाघर से लेकर सादगी से भरी आरामदायक जीवन शैली को दर्शाने वाले घर तक हैं।
3: हाँ दीदी, मैंने भी पढ़ा है कि यहाँ प्रकृति का भरपूर आनंद मिलता है, जिसका उदाहरण है अद्भुत लिविंग रूट ब्रिज, जहाँ प्राचीन वृक्षों की जड़ों का उपयोग करके पीढ़ियों से निर्मित एक इंजीनियरिंग चमत्कार को सजीव रूप दिया गया है।
0: हाँ, मावल्या नाग का आकर्षण केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, ये सच्ची मेहमान नवाजी और एक सरल शांतिपूर्ण जीवन शैली अपनाने का अवसर प्रदान करता है। ये गांव उत्तरी पूर्वी भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक गांव है। पता है जया, डिस्कवर इंडिया पत्रिका द्वारा इसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांव होने का खिताब भी मिला है।
1: अरे ये सब तो ठीक है, अतना बतिया लिए हो, अब हम कहीं तो तनिक गौना ही हो जाए। ए किरण, कही दो बलमुआ से मोहे ले जाए, ये गाना हमें बहुत सुनने में नीक लागत है। तब तक हम सबका ये बताई दी कि एशिया के सबसे साफ सुंदर गांव मावली नोंग है।
4: अरे मोहे ले जाए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं गांव की गूंज, वो गूंज जो मिट्टी से उठती है, वो आवाज जो हमें हमारे जड़ों की याद दिलाती है। आज हमारी टीम एशिया के सबसे स्वच्छ गांव की ओर जाने को तैयार है। मेघालय की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव मानविंगलोंग। जया, अगले हफ्ते की टिकट करा दी है ना सबकी?
1: हाँ समता दी, वैसे भी दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, वहाँ के गिरिजाघरों की रौनक तो देखने लायक होगी। बस गीता दी और सरला दी का टिकट अभी वेटिंग में है।
2: अरे बढ़िया है, दोनों जनी अब ज्ञान न दे हैं, बहुत बोलत रही।
3: छोटकी नदिया जहर बोले राजा, अरे छोटी

0: हम तो भाई बहुत परेशान है। पूछो काहे? गोंडा और इके आसपास के गांवन का लेके बहुत गंदगी रहत है।
1: हाँ दी, मानविन लोग में सड़के कूड़े नहीं फूलों से सस्ती हैं। हर घर के बाहर डस्टबिन होता है, वो भी बांस का। यहाँ प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात, स्वच्छता संस्कार में है, मजबूरी में नहीं। यहाँ के बच्चे सबसे पहले क ख ग के साथ सीखते हैं साफ रखना, सहेजना और सम्मान करना।
2: मतलब स्वच्छता प्लस साक्षरता यानी मजबूत गांव। मालवी नोंग हमें सिखाता है कि स्वच्छता और साक्षरता साथ साथ चलती है। जब गांव पढ़ा लिखा होता है तो वो गंदगी को आदत नहीं समस्या समझता है। यही वजह है कि ये गांव छोटा है परंतु यहाँ की सोच बहुत बड़ी है।
3: अच्छा सुनो सुनो सुनो सभी लोग, अब लौटते हैं अपने गोंडा की ओर और अब जरा आंखें बंद करें और सोचें। क्या सोचें? गांव के बारे में। देखिए, शुकुलपुरवा की गलियां, नौबस्ता की सुबह, नवाबगंज के खेत, बालपुर कटरा बाजार की हलचल, मोहरिया पुरैना की मिट्टी की खुशबू, इसी तरह से रोहिणपुरवा, डेहरास, रामचेलापुर जिसे अब रामचेरापुर बुलाते हैं, भाई साहा, पांडेपुरवा, पंडितपुरवा, सिसई, खमरौनी, मधईपुर, मछली गांव, दुल्हिन दुल्हापुर, खुराहसा, वजीरगंज, तरबगंज आदि की हरियाली। अरे भाई, मेहनती लोग और संस्कार और अपनापन, ये सब तो हमारे इन सभी गांव में भी है। बस अगर कमी है तो व्यवस्थित स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी की।
0: अच्छा बत कहियो, बहुत जरूरी है, लेकिन तनिक कुछ गौनई हुई जाए तो उनका हर्ज है। चलो सोहर गा लिया जाए। बेटी मेरी सुकुमार जी।

0: सच कहें तो गांव और शहर अलग नहीं है, अंतर बस इतना है कि गांव में हरियाली ज्यादा है, हवा ज्यादा है, साफ है, रिश्ते ज्यादा सच्चे हैं, और शहर साफ सड़कों, कूड़ा प्रबंधन, जिम्मेदार नागरिकों की सीख गांव से ले ले, और गांव तकनीक शिक्षा योजनाओं की सीख शहर से ले ले, तो फर्क अपने आप मिट जाएगा।
1: तो ठीक है, युवा गांव की ओर लौटें, आज फिर इसकी जरूरत है। खेतों को सम्मान मिले, स्वच्छता को संस्कार बनाया जाए और साक्षरता को हथियार। शहर में रहकर गांव को मत भूलिए और गांव में रहकर खुद को पीछे मत समझो।
2: जिस गांव की गलियां साफ होती हैं, वहां सोच भी साफ होती है, और जहां सोच साफ होती है वहीं भविष्य उज्जवल होता है।
0: तो श्रोताओं, साथियों, आज की गांव की गूंज में हमने सीखा मानवीर लोंग से प्रेरणा, गोंडा से उम्मीद और अपने गांव का भविष्य। तो आइए अपने गांव और शहर को एक जैसा सुंदर, एक जैसा स्वच्छ और एक जैसा सशक्त बनाएं। मैं हूं आपकी अपनी आरजे समता, तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी स्वर कोकिला किरण पांडे यानी हमारी प्यारी किरण दी के साथ में, आपकी प्यारी गीता दीदी और समझदार जया के साथ, एक नई गांव की गूंज के नए एपिसोड के साथ।
3: पर समता दी, एक गीत सुनते चलें तो मजा आ जाए।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। साथियों, गांव की गूंज फिर एक सफर पर चलेगी अगली बार। जाते जाते मैं ये गीत सही

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

गुड आफ्टरनून एवरीवन. भाई वक्त हो चुका है 12, यानी आपका अपना शो आ चुका है ज्ञानस्त्री लाइव. और आज है भाई आफ्टरनून बॉलीवुड बुलेटिन. जी हाँ, आज है दिन थर्सडे को हम बात करते हैं बॉलीवुड की कुछ स्पेशल न्यूज़ की. और भाई ऐसी न्यूज़ जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है. भाई हम आज बात करते हैं आपके अपकमिंग मूवीज़ लवर के लिए जो है मूवीज़ कई सारी लेकर आते हैं, उनके रिव्यूज़ की बात करते हैं और साथ ही साथ बात करते हैं चटपटी बॉलीवुड गॉसिप की. क्योंकि भाई हम इंडियंस को मसाले में तड़के में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है. बिल्कुल ठीक इसी रिवाज को आगे बढ़ा के आज भी मैं लेकर आई हूँ कुछ बहुत सारी बेहतरीन न्यूज़. जी हाँ, बेहतरीन न्यूज़. लेकिन हम बात पहले करते हैं बारिश की. अब देखिए भाई, कल रात को तो मौसम ऐसा बदला कि भाई हम सभी का दिल खुश कर दिया. जी हाँ, बारिश हो रही है गोंडा में और गोंडा के आसपास वाले कई क्षेत्रों में भी. और वहाँ पे जैसे ये शांत हुआ है ना ये गर्मी का मौसम, वो तो भाई देखने वाला था. और रात में जब पटपटा के बारिश हुई है ना, दिल एकदम बाग बाग हो गया. भाई बारिश की तो हम बात करेंगे, लेकिन हम अब पहले बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ की. दोस्तों देखिए, शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिल्म से जिससे प्यार भी है, कंफ्यूजन भी है और धमाल भी है. वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की रोमांटिक कॉमेडी है जवानी तो इश्क होना है 5 जून को रिलीज हो चुकी है. डायरेक्शन है डेविड धवन का. मतलब हंसी और उल्टा फुल्टा कंफ्यूजन तो भाई पक्का है. लेकिन आज तक ने इस पे एक रिव्यू दिया है, वो कहा है उन्होंने कि झूठ और कन्फ्यूजन का तो ओवरलोड है लेकिन इसमें कॉमेडी कहीं ना कहीं गायब लग रही है. लेकिन यार वरुण धवन की एनर्जी, उनकी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठा रखा है. सब यही बोल रहे हैं कि भाई इस जो मूवी ये रिलीज़ हुई है, सबसे पहले तो इसका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि है जवानी तो इश्क होना ही. लेकिन भाई जो मिलेनियल्स हैं वो जानते होंगे कि भाई जवानी में इश्क होना एक बहुत ही गंदी सिचुएशन होती है ना. आप करियर पे फोकस कर पाते हैं ना प्यार पे, और घर वाले अलग से डंडा लेके खड़े होते हैं कि हाँ हाँ तुम इश्क करो ही. लेकिन ये मूवी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपको प्यार में पढ़ाएगी, लेकिन एनर्जी और कॉमेडी के साथ. जी हाँ, वरुण धवन हर जगह छा रहे हैं. और नतीजा ये निकला है कि भाई सिर्फ 2 दिनों में 14 करोड़ की कमाई हो गई. और ये तो बस शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या. तो भाई ये तो हमने बात की है जवानी तो इश्क होना ही है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें भी बदल रही हैं. जी हाँ, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है उस सब पे हम बात करेंगे. लेकिन पहले सुनते हैं इस बहुत ही बेहतरीन मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग. वो क्या

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव। और आज हम एंजॉय कर रहे हैं आफ्टरनून बॉलीवुड बुलेटिन। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ न्यूज और चटपटी गॉसिप की। भाई गॉसिप का तो अभी नंबर नहीं आया है, अभी हम बात तो न्यूज पे ही कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने सुना एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, तूने जिंदगी बदल दी। भाई इस मूवी को जब भी हम याद करते हैं या कभी गुनगुनाते हैं, हमारे जो जहन में हमारे बॉबी देओल की एक क्यूट सी चार्मिंग सी इमेज ज़रूर आ जाती है। हाँ, वही जिन्होंने वाइट सूट पहना हुआ है और अपनी वाइफ के लिए ये बहुत ही बेहतरीन गाना गा रहे हैं। आज भी ये गाना कहीं ना कहीं लोग ज़रूर इस्तेमाल करते हैं अपने लवर को अपनी फीलिंग्स बयां करने के लिए। लेकिन आपको पता है हमारे बॉबी देओल ने एक बहुत ही बड़ा काम भी किया है। भाई अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने रिलीज से पहले ही धमाल मचा दिया। अनुराग कश्यप की डार्क क्राइम थ्रिलर बंदर, और ये जो बहुत ही बेहतरीन मूवी है, बंदर नाम है जिसका मतलब इसमें ये नहीं कोई बंदर है। भाई ये एक बहुत ही प्यारी सी मूवी है जिसमें क्राइम थ्रिलर दिखाया। अब प्यारी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कई सारे सीन हैं जो कि क्यूट भी हैं, बहुत ज़्यादा डार्क भी हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी हैं। ये मूवी 5 जून को रिलीज़ हो चुकी है। बॉबी देओल और सनाया मल्होत्रा के साथ ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल अपना धमाल मचा दिया है। रिव्यू आने से पहले ही कुलदीप मड़वी ने 4 स्टार इसको दे दिए हैं। और एक रिव्यू में तो लिखा है कि ये फिल्म देख कर किसी लड़की को मैसेज करने से पहले रूह कांप जाएगी। भाई इसमें बड़ी तारीफ क्या है आपको पता है? ये है कि भाई इस मूवी में दिखाया गया है कि जो लड़कियों के लिए क्राइम हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, कैसे लड़कियां मुंह तोड़ जवाब देती हैं और कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है पुलिस की। एनिमल के बाद जिस बॉबी देओल को लोग नए सिरे से पहचानने लगे थे, बंदर में उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है जिसे फैंस करियर बेस्ट बोल रहे हैं। अनुराग कश्यप और बॉबी देओल, ये जोड़ी भाई क्या जमी है बॉक्स ऑफिस में। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए कि भाई कुछ ऐसी मूवीज़ ज़रूर होती हैं जो हमारे दिल पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, और ये मूवी उनमें से एक है। अब हम बात करते हैं गुल्लक की। जी हाँ, वही गुल्लक जिसे हम बचपन में लेकर आते थे, कोई मिट्टी का लाता था, कोई प्लास्टिक का लाता था। और याद है वो पुरानी यादें, अरे वही घर वाले गुल्लक की जिसमें से हम बटन दबाते थे तो अंदर से एक डॉग बाहर निकलता था और आपके पैसे ले जाता था, है ना। ये हम सब ने कभी ना कभी देखी है। और वो मिट्टी का गुल्लक जिसकी पूजा दिवाली में होती है। अब भाई ये तो हो गए पैसे सेविंग वाले गुल्लक की। लेकिन आपको पता है कि गुल्लक नाम का एक बहुत ही बढ़िया OTT पर सीरीज निकली है। जी हाँ, गुल्लक सीरीज की हम बात करेंगे, लेकिन पुरानी वाली नहीं, नई वाली, यानी कि गुल्लक 5 की। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसकी न्यूज़ हम शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे हम जा रहे हैं लेकिन आपको छोड़ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही नए गाने की। क्योंकि भाई देखिए, हमारे जो पुराने गाने हैं जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं उनका आजकल रीमेक पड़ा बन रहा है ना। हमारा जो कल्चर है ना वो पूरे वर्ल्ड वाइड में छा रहा है। कौन सा गाना है आप ज़रूर सुनिए, इन्जॉय करिए, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश की बात बस हम ब्रेक के बाद आएंगे और ज़रूर करेंगे।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: कोक स्टूडियो भारत सीजन 4 सब्सक्राइब नाउ।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शादी कर सकते हैं
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी। मलिका तिलफरेब।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड न्यूज की। बॉलीवुड न्यूज में कुछ ऐसी न्यूज जो कहीं ना कहीं आपको जरूर जाननी चाहिए अगर आप एक बॉलीवुड लवर हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत में रह के हम बॉलीवुड लवर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। हम सब में कहीं ना कहीं शाहरुख खान, सलमान खान, प्रीति जिंटा और काजोल छुपी तो हुई है। आप सभी के अलग अलग फेवरेट स्टार्स होंगे और उनके कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर जरूर होंगे। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी भाई गुल्लक की, और गुल्लक पे बात करने के बाद हमने सुना कचौड़ी गली, एक ऐसा गाना जो है तो बहुत पुराना, हमारा लोकगीत है, लेकिन अब ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश भाई पूरे विश्व में फैल चुका है और इसकी जो फैंडम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये गाना एक ऐसा गाना है जिसमें बात हो रही है हमारी अपनी कचौड़ी गली, जो कि बनारस में है। अब बनारस जाएं और कचौड़ी गली जाके कचौड़ी और आलू चने की सब्जी ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई अगर जो जो इंसान चाह रहा है बनारस घूमना और बनारस का ट्रिप करना, तो कचौड़ी गली आपको ज़रूर जाना है। अब हम बात करते हैं खाने पीने से थोड़ा सा हटके, अब बात करेंगे गुल्लक पे। जी हाँ, गुल्लक वो नहीं जिसमें हम सेविंग्स करते हैं, गुल्लक जो हमारी बहुत ही प्यारी सी ओटीटी सीरीज है। ओटीटी पर इस हफ्ते सबसे बड़ा धमाका हुआ, वो भी गुल्लक का। क्या गुल्लक फूट गई? गुल्लक सीजन 5 सोनी लाइव पर 5 जून को रिलीज हुआ और देखते ही देखते 5 दिनों में 7 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज बटोर लिए। यूपी में तो ये बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो गया। घर घर की कहानी जो कि हर किसी को अपनी लगती है, लेकिन इस सीज़न का बड़ा बदलाव आया इस सीज़न में, जो कि कहीं ना कहीं फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया। हमारे अन्नू भैया का किरदार अब वैभव राजगुप्ता नहीं बल्कि अनंत वी जोशी निभा रहे हैं। यानी ये कैरेक्टर्स थोड़े से बदले हैं, लेकिन वही क्रेज़ है और वही एंटरटेनमेंट है। फैंस थोड़े से घबराए थे कि अब क्या होगा, लेकिन देखते ही देखते सबका दिल उस मूवी ने खुश कर दिया। लोग बोल रहे हैं कि नए अन्नू भैया ने पूरा न्याय किया है, गुल्लक की आत्मा वैसी ही वैसी है। मिस बिल्कुल मत करिएगा और ओटीटी लवर्स को आज ही जाना है और जाके ये बहुत ही प्यारी सी सीरीज देखनी, क्योंकि भाई इसमें उत्तर प्रदेश के हर एक एक घर की कहानी है। क्या है वो तो आपको देख के जाना पड़ेगा, वो तो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। इसीलिए अभी हमने एंजॉय किया उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्यारा सा गाना, लेकिन अब मैं आपको छोड़ जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ। कौन सा है उसे आप सुनिए और एंजॉय करिए, और मुझे लगता है कि आपने ज़रूर उसको कहीं ना कहीं सुना होगा, शायद इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर या फिर दिलजीत लवर ने तो इसको ज़रूर ही सुना होगा।
1: शादी कर सकते हैं
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी। मलिका तिलफरेब।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव। और आज हम एंजॉय कर रहे हैं आफ्टरनून बॉलीवुड बुलेटिन, जी हाँ, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं कुछ बॉलीवुड न्यूज़ की। और बॉलीवुड की न्यूज़ हो रही है और हमारा इंटरेस्ट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और भाई मैं अभी आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई मौसम तो देखिए बहुत ही सुहाना हो रखा है, इसी को कहते हैं हीलिंग वेदर। और इस हीलिंग वेदर में इंडियन टच ना दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आज ये मौका बहुत दिन बाद आया है, तो जल्दी जाइए अपने घर में और मम्मी को परेशानी करना है, अपना खुद जाइए और कांदा भजिया तली और साथ ही बनाइए कड़क अदरक इलायची वाली चाय और एंजॉय करिए अपना ज्ञानश्री लाइफ, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल। जी हाँ, क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है वो तो आपको सुन के पता चलेगा। और चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट गॉसिप की तरफ। गॉसिप पहले न्यूज़, भाई देखिए पंजाबी तो आ गए। जी हाँ, आपने ये लाइन जो है कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, भाई पंजाबी आ गए, पंजाबी आ गए। ये आपने ज़रूर सुना होगा दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में, जहाँ पे ये हमेशा आते हैं और ये लाइन ज़रूर बोलते हैं। लेकिन इस बार पंजाबी आए हैं थोड़े से रोमांटिक टच के साथ। क्या है मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, कल यानी 12 जून को एक बहुत ही खास मूवी रिलीज़ हो रही है, इम्तियाज़ अली। जी हाँ, इम्तियाज़ अली वही रॉक स्टार और लैला मजनू मूवी वाले इम्तियाज़ अली की मैं वापस आऊंगा, दिलजीत दोसांझ, सरवरी वाघ और वेदांग रैना के मुख्य भूमिका में एक मूवी रिलीज हो रही है। इम्तियाज़ अली का नाम सुनते ही रोंगटे बड़े खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाई इम्तियाज़ अली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी मूवीज़ हम काफ़ी टाइम तक याद रखते हैं और इनका क्रेज़ कभी नहीं जाता, चाहे आप कोई भी मूवी देख लें। आपको याद है वो जिसकी क्रेज़ अभी भी है? अरे भाई, हमारी जब वी मेट, जिसमें हमने शाहिद कपूर को देखा था और बड़े ही चटपटे अंदाज में हमारी करीना कपूर को, उनकी मूवी भी इम्तियाज़ अली ने ही बनाई है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो है ना, जो भी मूवी इम्तियाज़ अली बनाते हैं उसे हम कभी भूल नहीं पाते हैं। जब वो फिल्म बनाते हैं तो वो सीधा दिल तक जाती है। और इस बार रिव्यूअर्स आलिया कश्यप ने पहले ही 10 में से 10 इसको रेटिंग दे दी है। अभी जो आप गाना इन्जॉय कर रहे थे मस्कारा, ये इसी मूवी का गाना है और इस मूवी को रेट किया है आलिया भट्ट ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। बड़ी बात यह है कि अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरे 7 दिन पहले ही बुकिंग खोल दी है। वाह, ये तो भाई सॉलिड डिमांड हुई कि भाई यहां की बनी हुई मूवी, यानी हमारे इंडिया की बनी हुई मूवी आज भी कहीं ना कहीं विदेशों में अपना जलवा ऐसे ही बरकरार रखी हुई। इम्तियाज खुद हैरान हैं और उन्होंने बोला कि भाई मेरा तो दिल खुश हो गया, कल ज़रूर देखना है आपको भाई, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, ये मेरा वादा है। उसके बाद भाई इस गाने को हम सब ने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, काफ़ी लोगों ने इस पर गेट रेडी विथ मी शूट किया है, कई सारे ट्रांजिशंस आए हैं, कई ने स्टोरी टाइम बनाई है, किसी ने अपने पंजाबी लुक को इस पर फ्लॉन्ट किया है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया की एक हॉट चटपटी खबर के बारे में। जी हाँ, खबर कहें, गॉसिप कहें, कुछ भी कहें, लेकिन भाई मज़ा बड़ा आ रहा है। आपने नोटिस किया कि कभी कभी जनता ऐसा काम कर देती है, स्पेशली हमारे भारत की, कि बड़े बड़े दिग्गज भी अपना कदम पीछे ले लेते हैं। आपको याद है 370 की है? 370, अरे भाई वो धारा 370 नहीं, 370 की बिरयानी वाला विवाद। अब ये हमारे नुक्कड़ पे मिलने वाली बिरयानी नहीं है, ये बिरयानी है प्रणीत मोरे के शो की। क्या खबर है, क्या नहीं है, क्या गॉसिप है, सबकी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको इन्जॉय करना है एक बहुत ही प्यारा सा फनी बॉलीवुड सॉन्ग।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपने प्रोग्राम ज्ञानसी लाइव। और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड न्यूज की। भाई बॉलीवुड के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया की कुछ सेलेब्स के साथ चल रही है बहुत ज्यादा ड्रामा। जी हाँ, बहुत ज्यादा ड्रामा फैल रखा है सोशल मीडिया पे और हमारे कॉमेडियन प्रणीत मोर पे। इतना फैल गया है कि भाई प्रणीत मोर ने अपनी इंस्टाग्राम ही बंद कर दिया। क्या है मैं आपको बताती हूँ भाई। बात है यहाँ पे 370 की, धारा 370 नहीं लेकिन 370 की बिरयानी पे विवाद हो रखा है। और अब ये थोड़ा सा तीखा मसला हो गया है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में 370 बिरयानी वाले जोक ने सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी है। एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने इस पे बहुत ज़्यादा वो भड़की हैं और सीधे कहा कि ये कॉमेडी नहीं बल्कि एक क्रिएटिविटी की कमी है, एक क्रिएटिविटी का मजाक है। और साथ ही साथ औरत जात का भी इसमें बहुत ज़्यादा उनकी डिसरिस्पेक्ट भी की गई है। उन्होंने शेम ऑन प्रणीत हैशटैग भी पोस्ट किया है। एल्विश यादव और मल्टी चहर ने भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये दो लोग ट्रोल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे पहले हम अभी बात कर रहे थे प्रणीत मोर पे। भाई देखिए, प्रणीत मोर जो हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन है लेकिन आजकल वो अपने गॉसिप से अपने शो को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चे में है। कुछ शोज डॉक्टर पे हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं बिरयानी पे। और बिरयानी वाले ने इतनी आग पकड़ ली है कि कोई भी इंसान उन्हें माफ़ करने को रेडी नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इतना मामला फैल चुका है कि प्रणीत मोर ने अपना इंस्टाग्राम जो उनकी रोजी रोटी है उसको भी बंद कर दिया है। आपने भी कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। इस पर आपके क्या विचार हैं जल्दी से आके चैट बॉक्स में भी बताइए। साथ ही हम बात कर रहे हैं एल्विश यादव की। देखिए, एल्विश यादव और मल्टी चेहर पर भी इन लोगों ने भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया। और ये पहली बार ही नहीं बल्कि पहले भी प्रणीत ने वीर पहाड़िया पर जोक मारकर मुश्किल मोल ले ली थी। जी हाँ, एक दूसरे पर जोक मारना कॉमेडी नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं, जैसा रश्मि देसाई ने कहा था, कि क्रिएटिविटी की कमी है। एज अ कॉमेडियन आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इस बार प्रणीत ने माफ़ी मांगी, विवादित पोस्ट भी डिलीट कर दिया और आखिरकार अपना पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। भाई कब सीखेंगे लोग कि हंसना और हंसाना एक बहुत अच्छी बात है पर किसी को चोट पहुँचाना ये थोड़ी सी अलग चीज़ है और एक शर्मनाक चीज़ है। उसके बाद अब हम बात करेंगे भाई कॉकटेल पे। थोड़ा सा पीने वीने की बात हो जाए। पीने वीने की बात नहीं, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ आपको, बल्कि ये भी हमेशा कहती रहती हूँ कि अल्कोहल फ्री इंडिया हमें बनाना है, ड्रग मुक्त बनाना है, यानी कि नशे से अपनी इंडिया को बचाना है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कॉकटेल दूसरी वाली, यानी कि कॉकटेल मूवी की। अब कॉकटेल एक है, दो है, तीन है, क्या है, कौन है, क्या नहीं है, सारी चीज़ों को हम सुनेंगे समझेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको एंजॉय करना है आज का शो और साथ ही साथ पानी पीते रहना है, क्योंकि भाई बारिश से मौसम चाहे जो शांत हुआ हो लेकिन डिहाइड्रेशन अभी भी अपनी चरम सीमा पे है।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुके हूँ वापस एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही भाई। देखिए हम आए तो कॉकटेल के इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ है, और साथ में हमारे हैं आज हमारी ही एक सखा। जी हाँ, एक हमारी सहेली जिनका नाम है संध्या जी। संध्या जी आती रहती हैं और ये जब न्यूज़ सुन रही थी तो आई और कहीं कि भाई मेरे पास भी एक ज़बरदस्त न्यूज़ है जो मैं साझा करना चाहूँगी, यानी कि शेयर करना चाहूँगी अपने लिसनर के साथ। क्या है, चलते हैं उनके पास और उनसे बातें करते हैं।
1: हेलो एवरीवन, मैं हूँ संध्या। आज हम आपसे बात करेंगे कॉकटेल मूवी पर।
0: कॉकटेल मूवी, वो पुरानी वाली?
1: नहीं, जो नई रिलीज हो रही है उस पे।
0: अच्छा, यानी कि एक कॉकटेल नई रिलीज हो रही है।
1: कॉकटेल 2।
0: जी
1: याद है 2012 में आई कॉकटेल, दीपिका सैफ और डायना की वो फिल्म जिसने सिचुएशनशिप को पर्दे पर पहली बार इतनी खूबसूरत अंदाज में दिखाया था। अब 13 साल बाद उसका सीक्वल आ रहा है। कॉकटेल 2 में है शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना। ट्रेलर 1 जून को रिलीज हुआ। बेबाक, बोल्ड और एकदम फ्रेश। नया गाना माशू का भी रिलीज हो चुका है जिसे प्रियतम ने कंपोज किया है। कृति और शाहिद की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। फिल्म 19 जून को रिलीज होगी। फैंस को ओरिजिनल कॉकटेल जैसा जादू चाहिए। देखते हैं शाहिद भाई पानी भरते हैं या नहीं।
0: बिल्कुल भाई, देखिए ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ इन्होंने दी है कि कॉकटेल 2 रिलीज़ हो रही है जिसमें हमारे शाहिद कपूर जी, हमारे चॉकलेट बॉय शाहिद कपूर एक नए अंदाज में आ रहे हैं। उनके साथ है हमारी प्यारी सी टॉल एक्ट्रेस कृति सैनन जी। हाँ, टॉल एक्ट्रेस इसलिए क्योंकि कृति सैनन की हाइट देखते ही सारे के सारे छोटे हो जाते हैं।
1: हाँ सही बात है, और बहुत टैलेंट है।
0: हाँ, और सही बात तो ये भी है कि इसमें हमारी एक्सप्रेशन क्वीन रश्मिका मंदाना भी है। तो भाई ट्रेलर तो रिलीज हो चुका और वो तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी है, लेकिन क्या मूवी है ये तो आपको 19 जून को देखने के बाद। तो भाई आज ही से
1: आयुषी मैम
0: जी,
1: और वो रश्मिका मंदाना की आंखें कैसी है जरा बता दो।
0: रश्मिका मंदाना की आंखें, अरे भाई ऐसी लगता है, ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद कारीगरी अपने ही हाथों से की हो। और अभी हाल ही में उनकी शादी भी हुई है जिससे उनकी जो गॉसिप है या फिर कहें उनकी जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, कभी उनकी लुक्स की, उनकी साड़ी की, उनके पार्टनर की, उनकी ज्वेलरी की। लेकिन ऑल इन ऑल भाई हमारी रश्मिका मंदाना जी हैं बड़ी खूबसूरत।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद ये मैं सोचे कि चीज़ें यहीं ख़त्म हुई नहीं, चीज़ें बहुत सारी हैं। आपको फिलहाल छोड़ के जा रहे हैं कॉकटेल के इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ, लेकिन उसके बाद आएंगे और हम बात करेंगे थोड़ी सी बंटवारे की। देखिए बंटवारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोच रहे हैं ये क्या कह रही हैं, लेकिन भाई देखिए बंटवारा बहुत ज़रूरी है और आपको भी बंटवारा देखना चाहिए। क्या न्यूज़ है क्या नहीं है उस पर बात करेंगे, लेकिन भाई आपको कन्फ्यूजन के साथ छोड़ जाती है उस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे बंटवारे पे।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, और आप इंजॉय कर रहे हैं आफ्टरनून बॉलीवुड बुलेटिन, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड की कुछ चटपटी न्यूज़ की। अभी तक हमने बात की भाई कॉकटेल की, बिरयानी की, पंजाबी की, गुल्लक की और बंदर की, और ना जाने कितनी ऐसी सी चीज़ें जिसपे आपको ज़रूर कोई ना कोई मज़ा आया होगा। देखिए, हम भारतीयों को तो भाई मतलब वो आपने डायलॉग तो सुना होगा ना, बहुत ही प्यारा सा, ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी का मज़ा ना थोड़े से चटपटे में है, और चटपटे में अगर भाई गोलगप्पे, अगर गॉसिप मिल जाए तो भाई बात ही अलग है। अब दूसरी न्यूज़ हम लेकर आने वाले हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात भी की, वो है बंटवारे की। अब बंटवारे दो घर की नहीं बल्कि दो देशों की। अब आप सोचेंगे बॉलीवुड की बात कर रही है, कहाँ ये देश में आ गई। भाई देखिए, बात बहुत बड़ी है और बॉलीवुड से ही जुड़ी हुई है, जिसको आपके साथ शेयर करेंगी हमारी कौन, हमारी सहेली।
1: हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे और आज की आखिरी और सबसे बड़ी खबर, सनी देओल, प्रीति जिंटा और करण देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का मोशन पोस्टर 9 जून को रिलीज हुआ। डायरेक्शन है राजकुमार सोनी, राजकुमार संतोषी का और बैनर है आमिर खान प्रोडक्शन का, यानी क्वालिटी की गारंटी है। फिल्म 1947 के बंटवारे पर बनी है, इंसानियत बनाम नफ़रत की कहानी जो आज भी उतनी ज़रूरी है। पहले इस फिल्म का नाम लाहौर 1947 था, अब बंटवारा 1947 हो गया है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी, यानी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले। इससे बेहतर टाइम क्या हो सकती है, बस इंतज़ार करो और तैयार रहो।
0: जी हाँ दोस्तों, तो भाई ये एक बहुत ही प्यारी सी मूवी, और बहुत ही, आपने सनी देओल की वो मूवी जो देखी है ना गदर, गदर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी भाई, कैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, क्या क्या सिचुएशंस थी और लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेस की। लेकिन अब बंटवारा 1947 लेकर आई है एक नए नज़रिया, हमारा जो है हमारे एक नए नज़रिए से हमें दिखा रही है कि आखिर 1947 में बंटवारे के टाइम क्या हुआ था। और ये इसकी मूवी जो रिलीज़ हो रही है, इसकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है, क्योंकि भाई बंटवारा 1947 में 14 अगस्त और 15 अगस्त को ही हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को जो है हमारा भारत पाकिस्तान की दो सेपरेट कंट्री बनी थी। फिलहाल ये थी आज की न्यूज़, आई होप आपने इंजॉय किया होगा और साथ ही साथ आज की प्लेलिस्ट को भी इंजॉय किया होगा। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, और भाई ध्यान रखने के साथ साथ इस बहुत ही मज़ेदार मौसम का लुत्फ़ भी उठा रहे होंगे। छोड़ जाती हूँ आपको इस बहुत ही प्यारे से गदर मूवी के सॉन्ग के साथ, और मैं भी निकल जाती हूँ भाई अपनी गड्डी को लेके।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
2: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
3: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
2: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
3: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
2: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
3: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
2: जी, तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
3: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
2: तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
3: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
4: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
3: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या पीएचसी में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
2: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है, तो इसके बारे में।
3: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या पीएचसी या आंगनबाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा और आंगनबाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं। घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है वो सबसे नजदीकी सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जाएं तो वहां हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
2: जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है?
3: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
4: मैम, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं, उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
3: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
2: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
3: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को, ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
2: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं? और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
3: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक जरूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें, उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती है। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है।
2: थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे अच्छे से, उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के नए एपिसोड में स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। दोस्तों, आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊं हम अक्सर पोषण शब्द सुनते तो हैं पर समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया मतलब पोषण पूरा हो गया, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी, जो हमें बताएंगे कि सही भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद आरजे कांचा जी।
2: जी,
3: आज की चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
2: जी, क्या बात कही आपने। लेकिन सच बताऊं, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसको पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा चिंतित हुई मैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
3: यही तो पोषण की असली तस्वीर है और ये समस्या है सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल के किशोर लड़कियों में 61% से ज्यादा एनीमिया और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बड़ी कमी है।
2: तो क्या इसका मतलब ये है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा?
3: बिल्कुल, पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास और बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। जो भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डी, मांसपेशियां और दिमाग बनाता है।
2: तो सबसे आसान भाषा में बताइए कि आखिर में पोषण है क्या?
3: पोषण का मतलब ऐसा संतुलित भोजन जो शरीर की जरूरत पूरी करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट।
2: मतलब कहने का आपका है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्यों भैया?
3: जी हाँ,
2: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
3: देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषक तत्व तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी विटामिन और खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
2: मतलब ये भैया कि अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा।
3: बिल्कुल, स्वस्थ आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्त, संतुलन, संयम और विविधता, यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलन हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
2: और गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है,
3: ये सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छा पोषण देते हैं। महंगा फैट वाला खाना पोषण नहीं देता है बल्कि कई बार बीमारी देता है।
2: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
3: कार्बोहाइड्रेट से। साबुत अनाज, दालें, फल और सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुल ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से आना चाहिए।
2: और प्रोटीन?
3: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है, दाल, चना, दूध, अंडा सब अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी भोजन से भी पूरा प्रोटीन मिल सकता है।
2: हाँ, ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन एक बात और आपसे पूछूंगी मैं कि आखिर में वसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा क्यों मानते हैं?
3: जरूरी नहीं है शरीर को कुछ वसा चाहिए, लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान करते हैं।
2: आजकल गाँव में ब्लड प्रेशर और डायबिटिक बढ़ रहा है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
3: बहुत गहरा संबंध है। ज्यादा नमक, चीनी और प्रोसेस्ड भोजन बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए। ज्यादा नमक दिल की बीमारी बढ़ाता है।
2: और फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
3: हर व्यक्ति को रोज कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जी लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
2: अच्छा भैया, बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
3: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भावस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय दिमाग और शरीर का विकास सबसे तेज होता है।
2: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
3: पहले 6 महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन, खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल, नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए।
2: अच्छा भैया, गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होती है, ऐसा है क्या?
3: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में मिले तो बच्चा स्वस्थ रह सकता है।
2: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खाना चाहिए, ये बात कितनी सही है?
3: नहीं, बिल्कुल गलत है। ये फल सुरक्षित हैं और विटामिन से भरपूर हैं। ऐसे मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर देते हैं।
2: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
3: 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों में ठिकानापन, कुपोषण, एनीमिया और कम जन्म वजन कम करना। आंगनबाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम।
2: अच्छा भैया, सुना है कि तकनीक का भी इस्तेमाल काफी हो रहा है।
3: हाँ, पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुँचती है।
2: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
3: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा हो। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
2: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं भैया,
3: यही भविष्य की बीमारी है। बचपन की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
2: अच्छा सियातिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां रोकी जा सकती हैं?
3: स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी को, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम करता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
2: सियातिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
3: आरजे कांचा जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाना चाहता हूँ।
2: बिल्कुल।
3: ये कहानी सिर्फ आरती की नहीं बल्कि हमारे देश के हजारों बेटियों की कहानी है।
2: जरूर जरूर जरूर, मैं सुनना चाहूंगी और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी ध्यान से सुनेंगे।
3: आरती एक छोटे से गांव में रहती थी। पढ़ाई में अच्छी, काम में तेज और हमेशा हंसती रहने वाली लड़की है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए वही काफी है।
2: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
3: बिल्कुल। आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी, कभी सिर्फ चावल, हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
2: और भैया, इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
3: धीरे धीरे आरती जल्दी थकने लगी। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते थे कमजोरी तो लड़कियों में होती है।
2: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
3: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती की शादी हो गई। शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसकी शरीर में पहले से ही खून की कमी थी, जिससे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया।
2: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
3: पहले नहीं, उसे लगता था सब ठीक है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान चौथे महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वह बेहोश हो गई।
2: फिर क्या हुआ भैया?
3: उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर एनीमिया। डॉक्टर ने परिवार से कहा, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है।
2: फिर तो ये सुनकर परिवार घबरा गया होगा।
3: हाँ, पहली बार उन्हें समझ आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी और पोषक आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच।
2: अच्छा, क्या आरती ने फिर सलाह मानी?
3: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियां से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने समझाया कि यह सम्मान और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
2: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा।
3: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
2: क्या बात है, फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
3: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीने बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे।
2: वाह, यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा ली।
3: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वह कहती है, मैंने कमजोरी को सम्मान समझकर गलती की है, अब कोई और यह गलती ना करे।
2: वाह भैया वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
3: हाँ, आज आरती अपने बच्चे को समय पर स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और हर गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह देती है।
2: तो भैया, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
3: सीख बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है।
2: जी।
3: सही भोजन, समय पर जांच और सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
2: तो दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है।
3: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
2: धन्यवाद सेहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख भी दे गई।
3: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
2: तो सेहतिया भैया, अब अंत में श्रोताओं के लिए आपका संदेश।
3: देखिए, विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराइए, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
2: तो दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत बनेगा।
2: इसी संदेश के साथ मैं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा अब आपसे विदा लेती हूँ, पर जाने से पहले लेंगे हम सेहत की शपथ।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे
4: शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई।
4: सेहत सही तो लाभ कई।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं,
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूले 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88404-9584। 88404-9584। 88404-9584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? जल्दी से आ जाइए चैट बॉक्स में क्योंकि आ गई हैं आपकी दोनों सहेलियां और आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
3: सुन सहेली
2: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो भाई हम लोग आ गए हैं बहुत ही बढ़िया से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम लोग शो की शुरुआत करने के लिए बस बिल्कुल तैयार हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दोपहर है और दोपहर के समय का एक औपचारिकता होती है और इस प्यारी सी दोपहर में आज कल रात से बारिश भी हुई है, क्यों अंशिका?
4: जी मैम, तो ये प्यारी प्यारी बरसात के साथ आप सभी को कहना चाहते हैं जो कि हमारी औपचारिकता है और आप भी हमारे मुझे लगता है मुख से सुनना चाहते हैं
2: और दिल से सुनना चाहते हैं। तो प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सबसे पहले जय माता दी,
4: जय माता दी।
2: और उसके बाद में आइए शुरू करते हैं और प्यारा सा विश कर देते हैं एक साथ एक ही फ्रेम में,
4: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आज है मूड सुपर हाई क्योंकि जिस गर्मी से थे हम बहुत ज्यादा परेशान उससे हमें मिल गई है राहत क्योंकि आज का दिन तो भाई बहुत प्यारा है। मतलब आज के दिन को सोच के कुछ फीलिंग आ रही है मैम, पता है कौन सी वाली? अच्छी सी कार हो और अच्छा सा कार कोई मतलब वो मैम समझ गई, आई थिंक समझ गई ना मैम? हाँ वो मैम समझ गई, वो मेरे और मैम के बीच का था।
2: और उसमें गाना चल रहा हो, क्या मौसम आया है
4: संग तुम्हें लाया है, मतलब ऐसा कुछ समथिंग वाला।
2: चलो
4: और बढ़िया से ऐसे हाँ सपनों की दुनिया से निकल आते हैं, बट रियलिटी यही है कि कुछ ऐसा ही मन कर रहा है क्योंकि मौसम बहुत प्यारा सा है और इस मौसम में अगर आप बाइक पे हो ना, ओ माय
2: और बारिश हो
4: हल्की हल्की वाली ओ गॉड, वहीं पे कहीं भुट्टे वाला भी हो, मतलब
2: देखा हमने कहा था 3 दिन मुश्किल से नहीं हुआ है इनका पेट सही हुए और अब सीधे इनकी फरमाइश भुट्टे पे आ गई है।
4: वो बारिश को देखते हुए ऐसा फील हो रहा है मुझे।
2: नहीं, फील ना करो, अभी तुम कुछ
4: खा नहीं सकती हूँ, फील तो कर ही सकते,
2: देख सकते हैं केवल उसको, हाँ। है ना? चलो कोई नहीं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने शो को और शो की सबसे पहले ही जो सेगमेंट होता है वो होता है प्यारी सी पोयम को लेकर के। तो आज बड़े और हमारे बुजुर्गों के ऊपर एक प्यारी सी पोयम है। भैया हमारे घर में भी एक पूर्ण रूप से एक बुजुर्ग आ गए हैं जिनसे मैं भी वाकई में अब जैसे लगता है कि हाँ मैं उन्हें फील कर रही हूँ, उनके साथ रह रही हूँ और उनकी सारी बातों को जैसे कहता है ना एब्जॉर्ब कर रही हूँ।
4: ओके तो चलिए बुजुर्गों के अनुभवों से मिलती है बहुत सारी सफलता और अब आपको प्यारी सी पोएम सुनाएंगी आपकी अपनी आरजे समता, तो सुनते हैं, सुनाइए मैम।
2: हम सफलता सुन के जान गए थे क्योंकि जहाँ पर राइमिंग त होती है
4: वहाँ एंडिंग भी वही
2: एंडिंग वही होती है। ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं इस प्यारी सी पोयम के साथ में जो है कि उम्र के ढलते पड़ाव पर प्रकृति की गोद में सुकून तलाशते और अपने अपने अनुभवों की अमिट छाप छोड़ते हुए अमिट छाप और बुजुर्गों को समर्पित ये प्यारी सी बहुत ही फीलिंगफुल वाली कविता है जो कि आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो शुरू करें अंशिका।
4: यस मैम। इरशाद।
2: प्रकृति की छाओं में बैठे झुर्रियों में छिपी अनगिनत दास्तानें हैं, संघर्षों की भट्टी में तपे ये बुजुर्ग हमारे जीवन की मुस्कान है, धूप छाओं से लड़

0: हूँ, बहुत ही फीलिंगफुल और बहुत ही सच्चाई से भरी हुई।
1: जैसे आज हम अपनी मम्मी को जाके ये सुनाएंगे।
0: बिल्कुल सुनाएगा मैम, वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। और वाकई बहुत ही प्यारी पोएम है, और मैम के मतलब मैम सुना रही थी तो और भी अच्छी लग रही थी, थोड़ी फीलिंगफुल लग रही थी।
1: फीलिंगफुल लग रही थी क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक बुजुर्ग अगर दूसरे बुजुर्ग की कविता सुनाए तो उसका मजा कुछ और होता है।
0: अब जो मैं नहीं कहने वाली थी वो आज मैम ने सोचा होगा कि अंशिका अभी कह देंगी।
1: काफी दिन से तुम कह नहीं रही हो, तो हम ही कह दे अपने आप को।
0: नहीं तो मैं आपको बुजुर्ग नहीं, अभी आपने कहा था कि मैं कूल रहूंगी, तो मैंने कहा मैं दो तीन कुछ दिन आपको बुजुर्ग।
1: तो क्या बुजुर्ग कूल नहीं होते हैं?
0: नहीं नहीं
1: होते,
0: वो नहीं कह रहा था। तो मेरा सेंस ये था कि मैम कूल मूड में है तो ऐसे अनकूल हो जाए वो बातें नहीं।
1: एक्चुअली ना मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को बुजुर्ग मान लूं, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो सीनियर सिटीजंस को थोड़ा सा प्रॉफिट होती है।
0: इस वजह से
1: उसके टिकट्स में थोड़ा कम हो जाता है, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बुजुर्ग एक नाम आगे लगा दूं मैं
0: आपके लिए, तो वो भी नहीं होगा।
1: हाँ मुझे तो लगता है कि जब मैं वाकई में जब बुजुर्ग वाली एज में आऊंगी ना, तो मुझसे लोग ये पूछेंगे कौन है यहाँ बुजुर्ग, कौन सी किसको चाहिए बुजुर्ग?
0: मुझे यहाँ कोई सीनियर सिटीजन नजर
1: लग ही नहीं रहा है मुझे कोई सीनियर सिटीजन। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, उम्र के पड़ाव में ना वो हो जाता है वो।
0: हाँ।
1: वो तो एक ईश्वर का बहुत प्यारा वाला मैसेज है जो उम्र बढ़ते हुए बालों पे, फेस पे और बॉडी पे आ ही जाता है।
0: जी जी, तो बिल्कुल जैसे मैम ने अभी आपको बताया कि ऐसा होता है, लेकिन एक बात इस पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा मन से अपने आप को यंग ही रहना है। और यंग का भी सेंस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है, जैसे हम कहते हैं ना एज इज़ अ नंबर, तो बस वो फील करिए कि नंबर है, जा रहा है, बढ़ रहा है तो ठीक है, घट रहा है तो ठीक है, लेकिन दिल को हमेशा खुश रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए और कूल रहना चाहिए।
1: और आज मैंने अंशिका, कल रात में मैंने कुछ ऐसा सोच के सोई थी, मतलब सुन के सोई थी, मैं सोई थी कुछ ऐसा। तो मतलब मैं हमेशा से रात में ना कुछ ऐसी चीजें सुन के सोती हूँ जैसे पॉजिटिवली।
0: ओके,
1: तो मुझे बहुत अच्छी सी एक बात लगी। तो मैंने रात में सोच लिया था कि कल मैं, अब कल से मतलब पहले एक दिन से शुरुआत करेंगे कि कल जो है मैं पूरा दिन बहुत कूल रहूंगी।
0: okay.
1: और मैं बहुत खुश रहूंगी और कोई भी टेंशन वाली बात को नहीं लूंगी ना सोचूंगी, और अपने आप को पूरा का पूरा दिन पॉजिटिव वाइब से भरी रहूंगी मैं।
0: ओके, तो ये आपने सोचा था?
1: हाँ, रात में मैंने सोचा था
0: और मुझे लगता है कहीं हद तक सफल भी रहा है, क्योंकि जब अभी मैम आई तो मैंने देखा तो बड़ी खुश लग रही थी अच्छे से।
1: हाँ।
0: और हमने बहुत सारी बातें भी की, हम बैठे हुए थे तो
1: हाँ, तो मुझे तुमको फील हुआ ना?
0: हाँ
1: हाँ, तो बस यही है, यही
0: कूल कूल
1: है, यही ऑरा अब हम बना के रखेंगे।
0: अच्छी बात है, तो हम इसे बनाए रखेंगे और चाहेंगे बना रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई चेंज होता है तो बहुत प्यारा लगता है, तो ये चेंज अच्छा है और ये चेंज आप ऐसे ही रखिए।
1: एंड थैंक उस इंसानों का जिनकी वजह से मैं चेंज हुई हूँ। थैंक यू दिल से थैंक यू।
0: तो हमने थैंक यू ले लिया है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे।
1: तुम्हारी वजह से थोड़े चेंज हुए हैं।
0: अरे
1: तुम समझी नहीं मेरी बात को। थैंक यू उन लोगों को जिनकी वजह से मैं चेंज हो गई, जिन लोगों ने मुझे इतना सोचने पे मजबूर कर दिया, मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, मैं बहुत डीप प्रॉब्लम में चली गई थी।
0: ओके ओके ओके,
1: उनका थैंक यू कि अगर वो मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम में ना डालते तो आज जो चेंज आया है वो चेंज ना होता।
0: ओके, ये मैं नहीं समझ पाई।
1: हाँ।
0: तो ये अब मुझे लगता है मुझे बड़े बुजुर्गों वाली जो सेंस है वो डेवलप करनी पड़ेगी।
1: हाँ। तो अच्छा अच्छा बोला कि नहीं बोला मैं?
0: अच्छा बोला, बहुत अच्छा
1: बोला ना। तो चलिए अब आते हैं हम अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि हमारा होता है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। ओनली ऑन ओनली आपको बताएंगी आज जी अंशिका।
0: आज का हमारा रियल फैक्ट ऑफ लाइफ कुछ अलग कहता है। अलग कहने का मतलब यही कि अगर आप खुश नहीं भी हैं तो हमेशा अपने माइंड को ये एहसास दिलाएं कि आप खुश हैं, क्योंकि आपका दिमाग नकली खुशी और असली खुशी में फर्क नहीं कर पाता है। और अगर आप खुश ना होते हुए भी अपने दिमाग को ये एहसास कराने में कामयाब हो जाते हैं कि आप खुश हैं, तो इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है।
1: माय गुडनेस अंशिका, सेम पॉइंट कल रात में मैं ये सोच के सोई थी, मतलब सुन के सोई थी। एक मोटिवेशनल ने है
0: जी जी,
1: उन्होंने ये बोली लाइन, मतलब बहुत सारी लाइनें बोली थी जिसमें एक लाइन ये बोली थी कि अगर आप हमेशा से खुश होने का ड्रामा करेंगे, उन्होंने उनकी लाइन ये थी
0: जी
1: कि आप ड्रामा करेंगे तो उस कुछ दिनों के बाद ना वो ड्रामा आपका सही में वो
0: हाँ।
1: सही होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: और धीरे धीरे आप हील होना शुरू कर देते हैं।
0: जी मैम,
1: यानी दिमाग सोचने लगता है कि जो मतलब इसी में खुशी है।
0: हाँ।
1: और अब हम खुश रहना सीख चुके हैं
0: बिल्कुल।
1: तो ड्रामा कभी कभी ये होता है कि कभी कभी ड्रामा

0: भी हकीकत बन जाता है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो जैसा अंशिका ने कहा कि दिमाग को नहीं पता चलता है कि हम असली में खुश हैं कि नकली में खुश हैं, और धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इट्स अ गुड पॉइंट।
1: और आपने लाफ्टर थेरेपी देखी होगी कि जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हम उनको सजेस्ट करते हैं लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी में जब आप हंसते हैं तो उसकी कोई वजह नहीं होती है और ना आप खुश होते हो, लेकिन फिर भी हम हंसते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो हमारे माइंड को क्या लगता है, ये बहुत खुश है, और तब हमारे पॉजिटिव जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो रिलीज हो जाते हैं और हमें बहुत अच्छा फील होता है। आप एक घंटे कभी कंटिन्यूअसली हंस के देखिए, इतना बेटर फील होगा।
0: अकेले कमरे में?
1: हाँ,
0: पागल कहेंगे लोग।
1: नहीं पागल नहीं, हाल कहने वाले तो बहुत।
0: क्या खा के, क्या सतुआ पी लिया, रतूरा खाई हो कि क्या?
1: अरे कह दो हमने भांग पी है, बस
0: भांग पी है, क्या है,
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने ये किया है अभी जब 2-3 दिन पहले।
0: और भांग और धतूरा तो अब देखने जा रही हूँ मैं।
1: बिल्कुल,
0: आई होप सो,
1: आई होप सो कि आप देखें और जरूर देखें और आके हमें बताएं कि आपने कैसा भांग और धतूरा देखा,
0: सच्ची
1: वो हम जानना चाहेंगे। ये कह रही थी कि 2-3 पहले, जब मैं 2-3 दिन पहले बीमार थी, तो मुझे बीमार होना बिल्कुल, मतलब किसी को नहीं पसंद होता है, लेकिन मुझे वो एक कंडीशन बिल्कुल पसंद नहीं है कि दिन भर बिस्तर पर लेटे रहो और सब काम कोई दूसरा करे, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन आपकी हो जाती है। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे रेगुलर वॉमिटिंग हो रही थी, तो मुझे उल्टा फील होने लगता है, ये मेरी एक सेंस है। तो मेरे दिमाग में आंत तो नहीं खराब हो गई, कुछ हो तो नहीं गया,
0: मतलब
1: इस तरह की चीज़ें फील हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा अब कुछ नहीं। उसके बाद मुझे पेन हो रहा था, मैं लेटी थी आराम से, मैंने रिमोट उठाया और मैंने कपिल शर्मा शो लगाया, मैंने उसको चेंज कर दिया और उसमें इतना बढ़िया, मतलब वो पता नहीं मेरा लग था या क्या था, बहुत अच्छा आ रहा था। और उसके बाद आधे घंटे बाद हाँ मैंने खूब हंसी मैं, मतलब तो मम्मी कह रही थी अभी तो तुम्हें दर्द हो रहा था, तो हमने कहा नहीं जानबूझ के, खुश नहीं है, पेन हो रहा है लेकिन फिर भी हंस रहे हैं क्योंकि वो दर्द दर्द दर्द फिर दिमाग में चलता रहेगा।
0: हील हो गया
1: जब आधा घंटा मैंने हंस लिया है तो बड़ा बेटर फील हुआ बाद में। तो कहने का सेंस यही है कि खुश नहीं है लेकिन खुश है ऐसा रहने की कोशिश करें। जो कंक्लूजन है वो ये निकल कर के आता है।
0: तो मतलब कभी कभी जो ड्रामा हम लोग कर लेते हैं ना, तो वो ड्रामा भी कभी कभी वो रियल में फिट होने लगता है। इट्स अ रियल कंक्लूजन। तो चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और ये ड्रामा नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये
1: हम कोई ड्रामा नहीं
0: हम
1: कर
0: कोई ड्रामा नहीं करते हैं, हम जो लेके आते वो हैं सच और सच, और बिल्कुल जैसे एक न्यूज आती थी ना, सच से परे,
1: नहीं सत्य में विजय, नहीं
0: झूठ से परे सच के करीब, कुछ ऐसा एक स्लोगन होता था न्यूज का, किसी चैनल का नाम है मुझे नहीं याद आ रहा है। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल सच के करीब ही रहते हैं, कभी भी झूठ का और फरेब का सामना नहीं करते हैं। तो चलिए ज्यादा ज्ञान नहीं अब हम लोग यहाँ पर देंगे आपको, ज्यादा ज्ञान देने से ना ये लगता है कि ज्ञानी बाबा, तो बस हम लोग यूं गए और यूं आए, झट से आएंगे क्योंकि सिर्फ एक सॉन्ग सुनने के लिए जा रहे हैं, आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, और सुनते हुए हम लोग खुद भी आएंगे एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: क्या हुआ?
3: वो तो
2: क्यूट है ना?
3: अरे पहलवान है,
2: पर तुमसे प्यार करती है।
3: हो नहीं सकता।
2: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
3: हो नहीं सकता।
2: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
3: ये हो नहीं सकता।
4: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो सुन सहेली, और वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां फिर से आपसे बातें करने के लिए। और चलिए सीधे चलते हैं हमारे हम दोनों के, यानी कि हम दोनों ही आपको इस पे कुछ ना कुछ बताएंगे, जो कि है फर्स्ट वाला टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक आज हमारा ये है कि हमारे घर के, जैसे हम कहते हैं ना मैम, कि घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो समय बीतने के साथ साथ बच्चे बन जाते हैं।
6: हमसे पूछो
5: तो एक वो प्रैक्टिकल जिन्होंने किया होता है वो अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।
6: भैया प्रैक्टिकल मैं कर रही हूँ, मुझसे बेटर प्रैक्टिकल कोई नहीं कर रहा हो, है ना?
5: जी जी,
6: बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल के उसमें हूँ। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी पूरी प्रैक्टिकल में ही जाने वाली है। एक प्रैक्टिकल खत्म होता है, दूसरा प्रैक्टिकल, जैसे कहते हैं ना होम साइंस पूरा दहेज बनाना होता है, वैसे ही सेम टू सेम ऐसा ही है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। बट चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि वो है आज सीनियर सिटीजन पे। सीनियर सिटीजन्स में एक सिंड्रोम नहीं कहेंगे हम, मतलब
5: मेंटल कंडीशन
6: कह सकते हैं। तो हमेशा से ये देखा गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उसमें सब्सटेंस अब्यूज, जो एक इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा कि एक लत कह सकते हैं।
5: हाँ मैम,
6: आई थिंक सो,
5: यस,
6: है ना, लत कह सकते हैं, किसी चीज की लत कह सकते हैं। वो भी लत ऐसे कह सकते हैं कि आदत कह सकते हैं हम लोग, किसी चीज की आदत होना,
5: आदत पड़ जाना।
6: और वो आदत मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है। आई मीन कि जैसे किसी की बहुत सालों से अगर हम, मतलब किसी बड़े बुजुर्ग की दवाइयाँ चल रही हैं, और अगर एक दिन दवाई वो नहीं खाएं तो उनके दिमाग में होता है कि अगर मैं ये दवा नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी तो मुझे ये हो जाएगा।
5: हाँ,
6: है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है ये आदत के अंतर्गत आती हैं, आदत लत के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्या है, क्यों है और कैसे होता है, हम लोग आज उस पर चर्चा करने वाले हैं।
5: बिल्कुल, सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होता है। तो जैसा अभी मैम ने आपको बताया कि एक लत एक आदत की तरह होता है, बिल्कुल सही। और दूसरी चीज ये होती है कि जब कोई भी इस मेंटल कंडीशन से बुजुर्ग कोई भी गुजर रहा होता है तो उसे हर चीज गलत लगती है। ये एक मेंटल कंडीशन है, गलत लगना इन द सेंस कि आप अच्छी बात भी बोल रहे हैं कोई, तो वो उसके लिए कुछ, मतलब वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमारे अच्छे के लिए है, ये हमारी खुशी के लिए है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पूरा माइंडसेट जब हो जाता है तो वो कहलाता है सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि आपकी मेंटल कंडीशन का पूरी तरह नेगेटिव हो जाना, हर चीज नेगेटिव लगना। अगर हम एप्पल भी खा रहे हैं तो हमें लग रहा है ये कहीं ऐसा तो नहीं है
6: खराब
5: वाला, हाँ, एक आना माइंड में, अरे खराब वाला तो नहीं दे दिया। अगर हल्का भी वो थोड़ा सा नरम है, ये देखो मुलायम है, तुमको देखा नहीं है, तुमने तुमको सड़ा हुआ, अंदर से सड़ा हुआ है, भले वो आपके कट करने के बाद अंदर से बिल्कुल फ्रेश होगा।
6: या आम को ले लो, जैसे अभी क्या हो रहा है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं तो क्या होता है कि जैसे आम मतलब मेरी आदत है अंशिका, मैं आम ऐसे पूरा नहीं खाती, मैं पूरा इन द सेंस की वजह से नहीं
5: कट करके,
6: बस कट कर लिया और ऐसे ही फांके खा लिया, या फिर अंदर की जो गुठली होती है उसको ऐसे खाओ बैठ करके, तो मेरी आदत ऐसी वाली नहीं है, मैं ऐसे नहीं खाती हूँ आम, मैं थोड़ा सा जैसे लगता है ना कि हाँ अपने आप को वो ज्यादा
5: अच्छे वाले
6: वे में खाती हूँ
5: मैम, अच्छे तो वाले वे में
6: पता नहीं अब उसको जो भी कह लें, लेकिन घर में मेरा छोटा वाला भाई और मैं वैसे खाते हैं, बट मुझे मेरे जो मम्मी है मेरी और जो जिया है तो तुरंत वो ये कहती हैं कि लो अंग्रेज चले गए लेकिन बट मैं क्या करूं, मुझे ऐसे वाला आम नहीं अच्छा लगता है खाना, तो मैं क्या करती हूं, पहले आम को पूरा पील कर लेती हूं और उसके छोटे छोटे
5: पीसेस कर,
6: हाँ बाइट्स करके और एक बाउल में रखकर और चम्मच से खाती हूं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे आम खाती हूं तो मैं एक पूरा आम खा सकती हूं और एक की जगह दो भी खा सकती हूँ, लेकिन अगर ऐसे कट करके हो गया ना तो मुझे लगता है यार दो फांके हो गए ना, छोड़ो आप बस, अब नहीं, अब नहीं खा पाएंगे। तो एक ये भी कारण है कि ज्यादा आम जब हम मन करता है खाने का तो ऐसे ज्यादा मतलब थोड़ी ज्यादा आम थोड़ी क्वांटिटी,
5: थोड़ी क्वांटिटी,
6: तो एक ऐसे ही मतलब कल भी ऐसे ही हुआ, आम को कट किया तो मम्मी ने बोला कि अरे मैं खा लूं तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, ये है वो है दुनिया भर की चीजें, मैंने कहा खाओ खाओ आम, और अगर डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी तो आम में एक नेचुरल मिठास होती है, तो आप ज्यादा ना खाओ ना यार, कटोरा भर के क्यों खा रहे हो आम,
5: और क्या
6: आप एक मतलब फांक ले लो
5: एक, हाँ बिल्कुल
6: आप एक फांक ले लो, और बेस्ट तो ये होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें नाइट में आम खा करके नहीं सोना चाहिए, उन्हें दिन में आम खा लेना चाहिए, खाना खाने के बाद या फिर दोपहर के टाइम पर आम खा लेना चाहिए। उसका रीजन पता है क्या होता है?
5: क्या
6: उसका रीजन ये होता है कि उसके बाद हम एक प्रॉपर मील लेते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, और आम हम लोग 12 से 1 या 2 के बीच में अगर हम लोगों ने खा लिया है तो वो काफी हद तक जो होता है ना वो मतलब जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, वो ज्यादा देर पेट में नहीं रहता, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसका असर डायबिटिक पेशेंट के लिए कम हो जाता है फिर, ठीक है। तो हाँ ऐसे कोई भी फ्रूट अगर आप मतलब अगर आप डायबिटिक पेशेंट को दे रहे हैं तो आपको दोपहर में ही फ्रूट को उनको देना चाहिए। एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो जिसकी मिठास बहुत ही मतलब ना के बराबर होती है,
5: हाँ, उसमें तो
6: एप्पल मतलब आप किसी भी समय आप दे सकते हैं, बट ग्रेप्स हो गया और
5: मैंगो
6: तो बिल्कुल ही इस समय तो आप रात में तो खा करके बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि और क्या बनाना है,
5: तरबूज,
6: अरे बाप रे, तरबूज और खरबूज तो भूल करके भी शाम को नहीं खाना चाहिए,
5: वो तो दिन के लिए,
6: वो तो नॉर्मल इंसान को भी नहीं खाना चाहिए रात में, वो तो नॉर्मल इंसान को भी नहीं खाना चाहिए, मतलब मैं तो नहीं खाती हूँ, और इसी बात पे बहुत बार बहस भी हो चुकी है कि तरबूज को पता है, खरबूज को पता है क्या कि तुम्हारे पेट में की रात है कि दिन है। अरे यार हम जिस समय से चलते हैं वो समय हमारी बॉडी महसूस करती है। दही आपने खा लो रात में, कहीं आप शादी में जाओ और आपने कहीं खा लिया, अच्छा शादी में हम लोग जाते हैं चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे हम लोग हो, तो जितने आइटम्स होते हैं वहाँ सोचते हैं हम लोग कि दही बड़ा खा लिया है तो आइसक्रीम नहीं खानी है,
5: नहीं ऐसा
6: बड़ा खा लिया
5: है
6: तो अब हमको फ्रूट्स में एक कॉर्नर लगा होता है फ्रूट्स का, तो हमें उसमें फ्रूट्स भी बहुत गिन चुन के लेना है, उसमें वाटरमेलन नहीं लेना है और उसमें तो क्या कहते हैं ड्रैगन फ्रूट्स होते हैं, तो पता नहीं कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, तो क्या हम लोग उसमें चूजी हो जाते हैं, हम लोग तो उन्हीं फ्रूट्स को खाते हैं जो कभी घर में नहीं खाते,
5: घर में नहीं खाते हैं बिल्कुल।
6: उसके बाद में हम केसर वाला दूध भी पी लेते हैं, उधर हमने दही बड़ा खाया है, चाट खाई है, बताशे खाए हैं, और फिर यार मम्मी रुको ना दो मिनट एक मिनट बस काली केसर वाला दूध पी के आते हैं,
5: वो पूरा फ्यूजन हो जाता है
6: पूरा, मतलब टोटल हमारे अगर पेट में अगर मिक्सी होती तो बढ़िया सा एक जूस निकलता फिर, मतलब
5: फ्यूजन जूस
6: निकलता, तो हम बाहर जाते तो सोचते हैं
5: नहीं
6: सोचते है ना, हम सब खा लेते हैं, भले उसका असर दो दिन के बाद होता है,
5: अब वो जो होता है वो तो होता है,
6: लेकिन नहीं होता है अंशिका, असर नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारी सोच पॉजिटिव
5: होती है
6: कि हम जो भी खा रहे हैं वो मुझे पच जाएगा,
5: जी
6: उसका गलत असर नहीं होगा, अरे मम्मी कुछ नहीं होगा लाओ, इतना कह देना ही कि अरे कुछ नहीं होगा लाओ मैं खा लेता हूँ, और वाकई कुछ नहीं होता है
5: बिल्कुल।
6: लेकिन घर में क्या होता है, रात में एक कटोरी दही खा के दिखा दो, वाटरमेलन खा के दिखा दो,
5: ना
6: मैंगो खा लिया है तो उसके बाद आइसक्रीम के लिए सोचोगे, अरे यार मैंगो खाया तो अभी आइसक्रीम खाएं कि ना खाएं,
5: कहीं कुछ हो ना जाए,
6: के लिए मैं बता रही हूँ, खुद के लिए बता रही हूँ। बट मैं अभी लखनऊ गई थी जब अभी बीच में, तो मैंने वहाँ पर बिंदास, मुझे नाइट और मतलब सुबह का हम लोगों के यहाँ फिलहाल वैसे भी होता है कि वहाँ दिन जो होता है वो रात होती है और रात जो होता है वो दिन होता है, ऐसा वाला होता है, मतलब 12 से 5 बजे तक उनकी रात में दिन होता है, तो जो भी खाओ, 12 बजे बताशे खा रहे बैठ कर के, उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई,
5: बहुत अच्छा लगता होगा,
6: कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ मैं 12 बजे अगर अपनी शॉप से अगर बताशे लेके खाऊं ना, तुरंत मुझे कुछ होने लगेगा, क्योंकि मेरी सोच वैसी,
5: सोच का इफेक्ट होता है, बिल्कुल मैम,
6: सोच वैसी बन गई है कि मैंने बताशे खाए हैं, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी। मम्मी 12 बजे बताशे क्या मतलब?
5: हाँ, 12 बजे रात को अब कौन खाएगा, रहने दो।
6: प्रॉपर बताशे खाए मैंने वहाँ पर 12 बजे, क्योंकि वहाँ का जो 12 बज रहा था वो शाम के 7 बज रहा था। तो ये था वहाँ का टाइमिंग। तो जो समय होता है, समय आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करता है। आप जिस समय में अपनी बॉडी को रखेंगे, वो समय आपकी बॉडी महसूस करने लगती है। क्यों कहते हैं कि हमारे बॉस जो हैं वो अमेरिका से हैं, हमारी मैम लोग अमेरिका में, तो यहाँ से 12 घंटे समय बाद में होता है,
5: बाद में होता है।
6: तो इसका मतलब है कि जो यहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है, और पर हमारी बॉडी जो है तो वो तो वही है ना,
5: बिल्कुल,
6: पर हमारी बॉडी उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो गई,
5: क्योंकि हम वैसा फील कर
6: रहे हैं, फील कर रहे हैं भैया रात है अब। तो रात में जो हमारे आर्गन्स जो है, जो अंदर के आर्गन्स है, वो कहते हैं अब तुम्हें सोना है,
5: सोना है।
6: पर ये सोच का फर्क है, तो बड़े बुजुर्ग जो है वो कहीं ना कहीं उस सोच के हिसाब से काम करते हैं।
5: तो अपनी सोच के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। चलिए इस बात पे एक बात आपको बताते हैं कि मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो और किसी की थिंकिंग होती है कि आज मैंने हील पहनी है, कहीं गिर ना जाऊं। आप पांच
6: मेरा हमेशा हाँ, हाँ।
5: तो 5 से 6 बार आप ये सोच के देखिए कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, और वो पक्का 5 से 6 बार सोचने के बाद होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आप स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि हम सोच के चलते हैं। ये मेरे साथ तब होता है जब मेरे घर की धुलाई होती है, जब मैं मतलब पोछा उछा जब अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि आज मैंने पोछा लगाया है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा ही पैर फिसल जाएगा। और जैसे 2 से 4 बार सोचते हैं, वैसे 5वीं बार पैर फिसल जाता है, ये निश्चित होता है।
6: 100%।
5: तो सारा सोच का फर्क होता है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर पॉजिटिव थिंक के साथ आप कुछ भी खा रहे हैं, अब ऐसा कुछ भी का सेंस कॉर्नर पे नहीं जाना है कि मतलब अब उन्होंने कह दिया पॉजिटिव सेंस के साथ खाओ, तो पॉजिटिव सेंस के साथ एक साथ 5 आम खा ले, नहीं ऐसा नहीं करना है। लेकिन जो भी खा रहे हैं आप, थोड़ा ही खा रहे हैं लेकिन पॉजिटिव सेंस से खाएं, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा अच्छी तरह।
6: तो चलिए अब हम लोग उसके सिम्टम्स पे चलते हैं कि पहला सिम्टम्स क्या है, जो कि है, पहला है दवाइयों की लत।
5: दवाइयों की लत का मतलब होता है कि जिससे आपने देखा होगा किसी को हल्का बॉडी पेन भी होता है, लाओ मम्मी पेन किलर खा लें। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि मतलब दवाई भी मैम ऐसे खाते हैं जिससे लगता है कि वो डेली रूटीन का हिस्सा है, और दवाई कभी हमारी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। आपको कोई जिसे बीमारी है, मतलब इन द सेंस की ब्लड प्रेशर है, तो हाँ रोज बीपी की दवा हम खाते हैं तो वो खानी पड़ेगी। डायबिटीज है तो डेली डायबिटिक हैं तो दवा खाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं पेन किलर डेली खा रहे हैं, हल्की सांस की प्रॉब्लम हुई, हल्की सी सांस फूलने लगी,
6: फीवर आ गया,
5: हाँ
6: खा लिया,
5: मम्मी मेडिसिन लिया। छोटी छोटी बातों पे बॉडी को मेडिसिन की नीड नहीं होती है। मैं मेडिसिन तब खाती हूँ जब मेरी बॉडी इतना पेन करती है कि अब मुझे उठने में तकलीफ है, तो हम कहते हैं कि लाओ अब काम नहीं हो पा रहा है तो नीड है, दवाई खाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों पे हल्का सा फीवर आ रहा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है पेरेंट्स बहुत ज्यादा बच्चों को लेके होते हैं, अरे नहीं नहीं उसको हल्का बुखार है, उसको दवाई दे दो ठीक हो जाए, इससे आपकी बॉडी अच्छी नहीं होती है, इससे आपकी बॉडी वीक होती चली जाती है। क्योंकि हमें जरा सा पेन हुआ, हमने दवाई खाई, तो हमारी बॉडी जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वो तो उसको मिली ही नहीं, क्योंकि दर्द हमने सहा ही नहीं, हमने दवाई खाई वो ठीक हो गया आराम से। अपनी बॉडी को हमेशा उतना दर्द सहने की क्षमता रखें कि अगर आप किसी कहीं फंस गए किसी इमरजेंसी में तो वो बर्दाश्त कर सके। कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों को होता है कि वैसे तो वॉशरूम जब आपको लगती है तो रोकनी नहीं चाहिए, ये गलत बात होती है क्योंकि किडनी पे असर पड़ता है। लेकिन किसी किसी को आपने देखा होगा कि वॉशरूम उनको है, उनको जाना है, उनको नीड है, लेकिन फिर भी वो करते हैं, अरे नहीं अभी अभी मुझे मैनेज हो जाएगा। वो एक क्षमता होती है कि हम उतनी देर तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोकना ही है, अगर आपके पास है सुविधा तो आप जाइए। लेकिन कभी हम बस में होते हैं, कहीं होते हैं, ट्रैवल में होते हैं, तो वो होता है कि रोकना है, तो वो भी एक अंदर।
6: पर पता है अंशिका, घर में तो रुक जाती है ये जो प्रॉब्लम है ना, ये घर में तो हम लोग कंट्रोल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखो सोच का फर्क है कि अरे अभी चले जाएंगे ना, मतलब वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हम तुरंत अपने वॉशरूम में चले गए। पर अगर हम बस में हैं या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हमें पता है कि हाँ नहीं रुकेगी, तो वो दिमाग की सोच है, उस समय हमको जाना ही जाना है,
5: बिल्कुल
6: तरीके से जाना ही जाना है। तो ये भी सोच का ही फर्क है कि मतलब हमें हर एक को अपने हिसाब से मैनेज करके रखना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट इज कि शारीरिक दर्द और बीमारियां, तो पुरानी बीमारियां जैसे गठिया, रीढ़ की हड्डी का दर्द, को असहनीय दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए बुजुर्गों को दवा की खुराक को बढ़ा देना चाहिए। मतलब एक तरफ ये हम कह रहे हैं कि दवा को, दवा की लत नहीं बनाना चाहिए, एंड सेकंड पॉइंट कि दवा की खुराक को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन बढ़ा देने का मतलब है कि जैसे रुक के बढ़ा देना चाहिए।
5: हाँ।
6: जैसे बीमार हुए, ठीक हो गए, दवा छोड़ दी, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उस समय डोज को बढ़ा देना।
5: बिल्कुल। और बुजुर्गों में एक बात और कहना चाहूंगी कि जब भी आप मेडिसिन डॉक्टर से अगर आप प्रिस्क्राइब करा के लेकर के आते हैं या उसके बाद आप जाते हैं, तो हमेशा ये जरूर बताइए कि हम मेडिसिन लेने आए हैं तो ये हमें सीनियर सिटीजन्स के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसी के हिसाब से आपको MG देते हैं।
6: हाँ।
5: कई लोगों की हैबिट क्या होती है, मम्मी के लिए दवाई लाने जा रहे हैं, आप भाई साहब दवाई दे दीजिए, ये दवाई देनी है।
6: नहीं, और बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना कि मेडिकल से दवा लेकर के वो
5: हाँ।
6: लोग अपना काम चला
5: काम चलाते हैं,
6: पर ये चीज बिल्कुल खराब है और मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कि कभी कभी मुझे जैसे कभी मतलब हेडेक होने लगता है, सर में दर्द हो गया, हल्का सा फीवर हो गया, तो एक टैबलेट आती है कैल्पॉल, आई थिंक यही नाम है कैल्पॉल।
5: हाँ।
6: तो वो हमें हमेशा हमारे पास रहती है और वो डॉक्टर से रिकमेंडेड है। बट ऐसे अगर मम्मी को कभी कुछ होता है ना तो बोलती है दांत में दर्द है तो जाओ मेडिकल से दवा लेकर के आ जाओ, फिर मुझे गुस्सा लगती है कि नहीं, ये चीजें पता है हमेशा से एक डॉक्टर से लिखी हुई जो दवा होती है वो ज्यादा ठीक होती है। क्योंकि कभी कदार क्या होता है कि हम मेडिकल से दवा तो ले लेते हैं, उसका हम सेवन भी कर लेते हैं, पर वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होती है।
5: बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपको ये नहीं पता होता है। अब आप गए लाने, मान लीजिए बुजुर्ग के लिए आपने कहा भैया ये दांत में दर्द है दवाई दे दो।
6: हाँ।
5: उसने पता नहीं कितनी MG दे दी, हो सकता है अगर 80 एज है या 70 या 60 है तो वो बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए दवाई हमेशा डॉक्टर की देखी हुई खानी चाहिए।
6: एंड लास्ट पॉइंट इज की अकेलापन और अवसाद, यानी जीवन साथी की मृत्यु हो जाने पर, बच्चों का दूर हो जाना या फिर समाज से कट जाने के कारण होने वाले मानसिक दर्द को भुलाने के लिए कुछ बुजुर्ग जो होते हैं वो ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं, जैसे नशीली गोलियां हो गई या फिर अल्कोहल। तो ये भी बहुत गलत है और ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि ये अवसाद, वो वाला अवसाद होता है जिसमें हमें अपनों की बहुत ज्यादा नीड होती है। अकेलेपन, उन्हें अकेले में बिल्कुल ना बैठने दें, अगर कहीं घूमने फिरने का शौक है तो उन्हें घूमने फिरने के लिए जबरदस्ती लेकर के जाएं, तो ये सारी चीजें जैसे अल्कोहल हो गया या फिर नशीली दवाएं हो गई, इन सब से हमें उनसे छुटकारा मिल सकता है।
5: बिल्कुल। और सेकंड पॉइंट आता है जो कि है याददाश्त की कमी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं याददाश्त में भी देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि अरे उम्र बढ़ रही है तो भूलने की आदत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल एक स्टेज होती है, क्योंकि जब हमारी एज बढ़ेगी तो वो होगा ही होगा। और इसी वजह से कभी कभी वो अपनी दवाई लेना भी भूल जाते हैं, नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से और उनका जो माइंडसेट होता है वो धीरे धीरे, मतलब जब हमें जैसे डायबिटीज़ है, आप दवा नहीं ले रहे हो तो नॉर्मल है कि आपकी डायबिटीज़ बढ़ेगी, तो उन्हें क्या लगता है एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, अरे हम बीमार हैं तो पुरानी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं याददाश्त में कमी भी बहुत बड़ा कारण होता है इसका, इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो भूल जाते हैं तो घर के लोग उन्हें याद दिलाएं और उनका ध्यान रखें। तो ये था कि सब्सटेंस एब्यूज क्यों होता है और कैसे होता है, क्या क्या उसके रीजंस होते हैं। अब हम मुझे लगता है मैम एक गाना सुनने की नीड हो रही है।
6: हाँ हाँ बिल्कुल, सुना देते हैं। तो चलिए एक गाना सुनते हैं और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बहुत ही सुलझा हुआ है और आप सभी के काम आने वाली बात है। तो चलिए बस हम यू गए, यू आए, स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए।
7: हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज ये है कि ज़्यादातर गर्मियों में जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्हें शरीर में ऐठन की प्रॉब्लम हो जाती है।
6: अच्छा जी।
7: जिससे सीधी भाषा में अगर हम कहें तो कई बार हम कहते हैं ना टांस लग रही है या ऐठन हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों होती है और कैसे ठीक करना है ये आज हम आपको बताएंगे।
6: जी बिल्कुल।
7: तो कैसे होती है ये मैं बताती हूँ और ठीक कैसे करना है ये आपको मैम बताएंगी, क्योंकि मैम हमारी बहुत अच्छे से ठीक करती हैं, लोगों को भी और डिसीज को भी। तो चलिए पहले बताते हैं क्यों होता है, फिर हम ठीक करने पे जाएंगे। तो होता है इसलिए क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि गर्मी में शरीर का जो पानी होता है और जो जरूरी हमारी बॉडी के मिनरल्स होते हैं वो कई बार पसीने के थ्रू निकल जाते हैं बॉडी से। क्यों कहा जाता है कि प्रॉपर खाना खाना, प्रॉपर पानी पीना, अपनी डाइट का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो पसीना जब बॉडी से निकलता है तो बॉडी अपने आप कमज़ोर होती है, क्योंकि पसीने के रूप में पानी ही तो निकल रहा है आपकी बॉडी से। तो इसलिए ये जो हमारे बॉडी में ऐठन होती है

0: हाँ, एहसास नहीं होता है उसका,
1: एहसास नहीं होता है कि हमें प्यास लगी है, इसलिए हम पानी नहीं पीते। और जब आप पानी नहीं पीते हैं तो आपकी बॉडी में खुद ब खुद कमी हो जाती है और हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये आप जान लीजिए कि अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपकी बॉडी में पसीना जो है वो आपकी बॉडी से नहीं निकलता है, और उस पसीने के थ्रू जो नुकसान करने वाले जो भी विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होती हैं, वो आपकी बॉडी में ही रह जाते हैं और धीरे धीरे वो आपकी बॉडी को वीक कर देते हैं। आपने देखा होगा जो पानी नहीं पीते हैं उनका ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, ये एक बहुत एकदम प्रूव्ड बात है। हाँ। ये आपको डॉक्टर भी बोलता है कि अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। हम क्यों कहते हैं कि अरे उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है इसलिए हार्ट में दिक्कत हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है इसलिए कई बार इंसान को, कभी आपने देखा होगा सिर में बहुत तेज दर्द होता है, एकदम पीक पे होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, वो कब होता है जब आपका ब्लड जो होता है वो आपके माइंड तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक से आपकी बॉडी ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाती, और वो तभी होता है जब हमारे शरीर का ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और वो तब होता है जब हम पानी नहीं पीते हैं। इसलिए पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये कहा जाता है कि दिन भर में आप 7 से 8 ग्लास पानी पिएं, लेकिन अगर आपसे हो सकता है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो और ज़्यादा उसको पीने की कोशिश करिए। रात में उठ उठ करके, जैसे लोग कहते हैं अरे रात में सो गए तो सो गए, किसी को ऐसी नींद आती है, लेकिन रात में भी एक दो बार पानी पीना चाहिए, सोने से पहले पी लीजिए। अगर आप रात को उठ रहे हैं वॉशरूम जाने के लिए या नींद खुल जाती है, मतलब ऐसा तो मैम नॉर्मली होता ही है रात को, तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि रात में कभी आपने महसूस किया होगा, मैं महसूस करती हूँ कि लंबा जैसे सो के उठे 2-3-4 घंटे बाद अगर रात को खुल गई नींद तो जैसे गला सूखा सूखा सा लगता है, एक फीट होता है कि हाँ लाओ पानी पी लें। तो अगर ऐसा है तो पानी प्रॉपर मात्रा में पीना चाहिए। ये कुछ कारण थे कि जिनकी वजह से आपकी बॉडी में ये ऐंठन जो है वो होती है। और एक कारण और होता है, वो होता है हमारी बॉडी को मिनरल्स जो हमें चाहिए वो ना मिल पाना। आप बातें हैं कि ठीक कैसे करना है, तो मैम ठीक करिए।
0: उसके पहले मैं बताऊं कुछ शुरुआती लक्षण okay. जो कि हम कैसे उसको पहचाने कि ये प्रॉब्लम है
1: okay.
0: तो बिना किसी कारण के हर समय नींद आना, सुस्ती छाए रहना, ये भी हाँ होता है, बिल्कुल होता है कुछ लोगों को। सेकंड पॉइंट इसके बात बात पर चिढ़ जाना, मूड का अचानक बदलना या हमेशा से कंफ्यूज्ड रहना ठीक है। उसके बाद आता है कि निर्धारित समय से पहले ही घर की दवाइयां खत्म हो जाना, ऐसा कुछ होता है। एंड शारीरिक संतुलन बिगड़ना या बार बार गिरना, मतलब बार बार जो लोग गिर जाते हैं उसके कारण भी ऐसा होता है। अब हम आते हैं कि उसे ठीक कैसे करें और उसके उपचार। तो बुजुर्गों में ये समस्या को बहुत ही संवेदनशीलता से और प्यार से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप अपनी मेडिकल डिटॉक्स करें, यानी कि सबसे पहले उनके डॉक्टर या किसी मनोचिकित्सक यानी फिजिकल से मिलें, और डॉक्टर धीरे धीरे और उसकी सुरक्षित तरीके से दवाओं की खुराक को कम करें, मतलब कम करना चाहिए। एंड अचानक दवा बंद करने से भी बुजुर्गों की तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है। दूसरा पॉइंट है कि मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि दवाइयों की निगरानी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बुजुर्गों को दवाओं का जो बॉक्स है खुद संभालने न दें, परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य अपने सामने उन्हें सही समय और सही मात्रा में दवाई दें। एंड उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा आता है पॉइंट जो कि सब चीज़ से परे होता है, वो होता है काउंसलिंग थेरेपी। तो काउंसलिंग थेरेपी ये होती है जो कि आप अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े जो कि बुजुर्ग हैं, और बड़े से बड़े बुजुर्ग का मतलब है कि बड़े से बड़े, मतलब एज अगर बड़ी हो जा रही है, एंड बड़े से बड़ी बीमारी को भी आप काउंसलिंग थेरेपी से ठीक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि काउंसलर जो होता है वो आपकी बातें, जब आप किसी काउंसलर के पास जाएंगे मैम कभी थेरेपी लेने के लिए, तो वो क्या कहता है कि आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। अब वो सिर्फ आपको सुनता है, वो अपनी कोई आपको बात नहीं कहेगा, वो पहले कम्प्लीटली आपको अच्छे से सुन लेगा और उसके बाद आपसे कोई बात कहेगा। इसीलिए जब हम काउंसलिंग थेरेपी लेने जाते हैं उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है,
0: बहुत अच्छा वाला फील होता,
1: क्योंकि आपको लगता है किसी ने आपकी बात को सुना और समझा। और सीनियर सिटीजंस की एज में नीड सिर्फ यही होती है कि कोई हमारी बातों को सुने और उसे समझे।
0: बिल्कुल।
1: सेकेंड आता है पॉइंट कि अकेलेपन से उन्हें दूर रखना चाहिए। कोई भी उनकी पुरानी आदत हो, हॉबी हो, जिसे वो बहुत पसंद करते हैं, उसे उनकी लाइफ में फिर से लाना चाहिए घर के किसी एक इंसान को। और साथ ही साथ में पुरानी एल्बम्स देखें, पुरानी यादें ताज़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, और कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएं जिससे वो बिजी रहें।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर वो बिजी रहेंगे तो इधर उधर की बातें दिमाग में नहीं आएंगी और फिर उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: कैफ लिख रहे हैं कि रात को उठे तो अपनी ऐसी डायट टली पीली की मुंह धो के पिए।
1: क्या

0: पता नहीं क्या लिखा है,
1: कैप जी थोड़ा साफ साफ लिखने
0: की कोशिश, पीले की मुंह धो के पिए, पता नहीं क्या।
1: अच्छा पानी डायरेक्टली पी लें कि मुंह धोकर पिए,
0: पता नहीं क्या
1: हे भगवान,
0: मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है तो जी मैं जी नहीं पढ़ पा रही हूं, पता नहीं क्या
1: मोबाइल, मतलब मोहम्मद कैफ जी आप ये बताइए कि रात को इंसान अगर नींद से उठेगा तो वो मुंह धोकर पानी क्यों पिए।
0: एंड प्रबल जी को बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है कि मुझे समता मैम के दर्शन करवा दो, तो उसमें से फिर मनीष शर्मा का आंसर आया है कि आज तक हमारे दर्शन नहीं हुए हैं भैया, मैं आपको कैसे करवाऊं। तो भाई मैं कोई देवी नहीं हूं जो आपको हमारे दर्शन करने हैं, आप हमारी आवाज़ से ही काम चलाएं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर माता जी के पास आप जाते हैं, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, और अगर भगवान की अंतरात्मा से आवाज़ आने लगे तो मतलब आपके काम सिद्ध होने लगते हैं। तो हम लोग तो यहाँ जीते जागते बोल रहे हैं, आपका नाम लेके बोल रहे हैं, तो इससे अच्छा और आपके लिए क्या हो सकता है ना। तो चलिए अंशिका लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे आपसे टाटा बाय बाय करने के लिए। तब तक के लिए सुनिए इस प्यारे से गाने को, एंड बढ़िया वाले मैसेजेस करने के लिए थैंक यू सो मच, एंड सभी का आने के लिए हमारे शो में भी थैंक यू सो मच। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

बिल्कुल चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे और आकर दूर अपना जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम आपसे दूर, हमेशा आपके पास रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इजाजत चाहेंगे क्योंकि समय हो गया है हमारे जाने का। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और ज़बरदस्त रहिए और पानी पीते रहिए। तो आज के लिए बाय बाय, कल फिर मिलेंगे आपके अपने पसंदीदा वाले शो सुन सहेली में, आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अनुशिका। बाय बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हाँ जी, तो आज के मौसम ने क्या खुमारी चढ़ा रखी है भाई। दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, और हम कहीं हैं, आप कहीं हैं, और हमारी जो प्लेलिस्ट है, मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आज बनी बहुत ज़्यादा रोमांटिक रोमांटिक रोमांटिक रोमांटिक। और भाई, मैं जो आज खास गाना लेके आई हूँ आप सभी के लिए, पहले वो तो मैं आप तक पहुँचा दूँ, फिर बताती हूँ कि नहीं नहीं पहले बता ही देती हूँ। शो चल रहा है आपका, जी हाँ वही वाला, आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा। मौसम ने आगाज कर दिया है थोड़े से रोमांस को बढ़ाने का, तो मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोगों की प्लेलिस्ट आज जो बनेगी वो रोमांटिक सॉन्ग से ही होगी। अगर नहीं भी होगी तो भी चलेगा दोस्तों। सदाबहार नंग में सदाबहार गीतों का शो है आपका कॉलर ट्यून गोंडा। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो गाना 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। और इसका कॉलिंग नंबर भी बता देते भाई, कोई भी बच के ना जा पाया, सभी की फरमाइश होनी चाहिए और एक से बढ़कर एक होनी चाहिए। क्या मौसम है, क्या ख्यालात है, क्या होश हवास है, सारे फ्लॉप हो चुके हैं। मैं भी बताऊंगी मैंने रात में किया क्या, लेकिन उससे पहले आप एंजॉय करेंगे आज के पहले सॉन्ग को। और भाई नंबर स्टूडियो वाला 6393316429, इसको आप डायल करिए, डेडिकेशन में दीजिए गानों को, अपने मन से गानों को ट्यून करवाइए, अपने मन को और आनंदित करवाइए। लॉन्ग ड्राइव पे अगर निकले हैं किसी के साथ में, तो बगल की सीट पे अगर कोई है तो उसको एक गाना सुनाइए ना, देरी किस बात की है। 6393316429 यानी कि 63 93 31 64 29, कॉल मिलाइए और सुनते जाइए प्यारे से प्यारे नगमे। वैसे अगर इस मौसम में आप किसी से मिलने वाले हैं और उससे थोड़ी सी दूर है, तो सोचिए फिर आप क्या नगमा गुनगुनाएंगे उनके लिए या उनसे मुलाकात के लिए। हाँ, मान लीजिए अभी शाम में आपसे उनकी मुलाकात होनी है और आपका वक्त नहीं कट रहा है और बस आप उनसे मिलने को बेकरार हैं, पर क्या डिमांड होनी चाहिए, ये सुनाती है आपको आपकी अपनी आर्जी आकांक्षा अपनी प्लेलिस्ट से। तो एंजॉय करिए इस ट्रैक को, फिर आते हैं आज की पहली डिमांड लेके अपने धर्मेंद्र मोहन भारती जी की। एंजॉय द ट्रैक।

हाँ जी, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड यानी कि आज की पहली डिमांड की ओर। और पहली डिमांड हम तक पहुंचाई है हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी ने। चलिए सुनते हैं इनको क्या सुनना है। बड़ा ही प्यारा सा रोमांटिक सा सॉन्ग है भाई, बड़े दिनों बाद हम सुन रहे हैं ओल्ड वर्जन वाला ये प्यारा सा नगमा हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की डिमांड पर।

बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक सॉन्ग अभी आपने एंजॉय कर लिया है हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की डिमांड पे, जो हमें सुनते हैं आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से। और अब जो नेक्स्ट डिमांड हम तक आई हुई है वो आई हुई है कहाँ से बता देते हैं आप सभी को। वो आई हुई है दोस्तों हमारे पास में सुभागपुर से। जी हाँ, सुभागपुर से सुनते हैं इस प्यारी सी डिमांड को। और ये डिमांड की है हमारे श्याम नाम की पगली जी ने। भाई इनको किसी की याद आ रही है, उम्मीद है आप तक वो कुछ महीनों में ज़रूर पहुँचेंगे या पहुँचेंगी, जो भी हो जब फ्री होंगे। फिलहाल एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय करें आपकी अपनी आर्जी आकांक्षा को इन योर ओन शो, फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा।

1981 का ये सॉन्ग है। मूवी बहुत प्यारी है, लता जी और अमित कुमार जी की आवाज इतना प्यारा डिमांड है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बचपन में ये हम बहुत गुनगुनाया करते थे, इसलिए शायद अपने आप को हम रोक नहीं पाए। एंजॉय करते रहिए ऐसे ही प्यारे प्यारे नगमों को। और मोहिनी तिवारी जी, आपका सॉन्ग कुछ देर में आप तक जरूर पहुंचेगा।

हाजी श्रोताओं, श्याम नाम की पगली जी की ये डिमांड थी, आपने एंजॉय किया। और अभी हम बढ़ेंगे उस डिमांड की ओर जो लगातार दो दिन से हमारे पास में आ रही थी, हमने गौर नहीं किया। आई एम सो सॉरी मोहिनी जी। और मोहिनी जी की एक बेस्ट फ्रेंड जिनको मैंने शायद संबोधित किया उनमें से ना हो, मैं यही गुजारिश करूंगी ऊपर वाले से। और जब मेरी नेक्स्ट बात हो मोहिनी जी से तो उनकी कविता और प्रिया में कोई फ्रेंड ना हो, मैं बस यही उम्मीद करते हुए ये सॉन्ग प्ले कर रही हूँ। इनकी फ्रेंड का अभी हाल ही में डेथ हुआ है, मतलब दो दिन पहले। तो सबसे पहले तो उस आत्मा को भगवान बहुत ही सुकून के साथ में रखें और नेक्स्ट जन्म जहाँ भी दें वो बहुत खुशहाल जीवन उनका बीते, बस इसी कामना के साथ में आप तक आपका ये सॉन्ग मैं पहुँचा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिमांड के लिए और अपने दोस्त को यूं ही याद करने के लिए।

जी हाँ, तो ये हमारी प्यारी लिसनर हैं मोहिनी तिवारी जी, उनकी बेस्ट फ्रेंड में से एक फ्रेंड है जो अभी परसों ही मेरे ख्याल से एक्सपायर हुई है, उसके रिक्वेस्ट का सॉन्ग है ओएमजी। ईश्वर बस उनकी आत्मा को शांति दे।

हाँ जी श्रोताओं, तो लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ हमें मजबूत होना पड़ता है, उनकी यादों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है जो हमारे साथ कभी बहुत खुशहाल हुआ करते थे। और बस इतनी दुआ करूंगी कि ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करें और आपकी सखी की आत्मा को शांति प्रदान करें। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की ओर, जो डिमांड हम तक आई हुई है एहसान जी की। आइए एहसान जी की इस प्यारी सी डिमांड को एंजॉय करते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा के साथ।

तरह आज भी ढेर सारी डिमांड आई है और हमारे कुछ प्यारे लिसनर इतने प्यारे हैं कि कहते हैं मैम अब तो लेट हो गया है, किसी ने हमको ऐड कर दीजिएगा, अब हम क्या ही कहें। भाई इतनी समझदारी हमें बड़ी अच्छी लग जाती है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आई डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे तक आई हुई है अमित कुमार जी की डिमांड पे। भाई बारिश बारिश बारिश, कल रात आपकी आरजे आकांक्षा भी भीगी थी बारिश पे, बारिश और हम भीगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं जब बारिश हो तो छतरी खोल के नहीं बंद करके चलिए, भीगे आनंद लीजिए ऐसे मौसम का, कहां रोज रोज बारिश होती है। एंजॉय करते वैसे इस ट्रैक को।

भाई भीगी रात में का तो पता नहीं, लेकिन भीगने का आनंद बड़ा आता है। हमने कल रात ही आनंद उठाया और सुबह ही हमारे गले ने हम पे कर दिया हमला, कहा भैया आप तुम बोलने लायक नहीं रहोगी, बस खांस खांस खांस के बतिया रहे थे हम सबसे। और नागेश्वर जी तो भाई ऐसा लग रहा है कि आज बस सोना ही चाह रहे, वैसे मौसम बड़ा अच्छा है, सोने वाला ही है। और बहुत सारे लिसनर हमारे साथ में चैट बॉक्स में बने हुए हैं, लेकिन हम चैट बॉक्स की ओर रुख करेंगे पूरे 3:40 पे। गाने बहुत सारे हैं, गाने एक से बढ़कर एक हैं, आप एंजॉय करते रहिए। आते हो सर भी आपसे मुलाकात करते, फिलहाल ये गाना हमारे आमित कुमार जी की डिमांड पे।

और अब भाई बरसात का मेरा मोस्ट फेवरेट मोस्टेस्ट रोमांटिक सॉन्ग आप तक पहुंचा रहे हैं मोनू जी, जो हमें सुनते हैं रेलवे क्रॉसिंग गोंडा से उनकी डिमांड पर। और हमारे प्यारे इट्स कुमार साहब का कहना, भैया हम छत में लेटते हैं बरसात में। भैया ये भी बता दीजिए, छतरी खुली रहती है बंद रहती है? फिलहाल एंजॉय करते हैं इस नेक्स्ट ट्रैक को, एंजॉय द ट्रैक।

आपको बता रहे हैं रेडियो पे बचपन से इस गाने को सुनने की मतलब होड़ होती थी। बारिश के दौरान रेडियो पे गाना जरूर प्ले होता था और आपकी अपनी आर्जे कांक्षा इसको काफी एंजॉय करती थी। आज भी हम एंजॉय कर रहे हैं इस ट्रैक को मोनू जी के डिमांड पे, जो सुन रहे हैं हमें रेलवे क्रॉसिंग गोंडा से। शो चल रहा है आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा और नंबर वही है, अगर आप भी डायल करना चाहते हैं तो मिला लीजिए 6393316429। और ये देखिए सामने से कॉल भी आ गई।

सुरेंद्र यादव जी का कहना, भाई हमारे गौरा चौकी में एक को बूंद नहीं बरसा, आप रतिया में रहबे नहीं क्यों होंगे, रतिया भर बरसे हैं और के बाद निकल गए हैं, झुरा गया होगा, आप जान नहीं पा रहे हैं, प्यासी धरती मांग रही थी पानी, पानी मिला, प्यास भर गई और वो सब निकल लिए, शायद मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रात में बारिश हुई थी। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये है, अगर हम गलत नहीं है तो किसकी डिमांड है भैया, देख लें जरा झांक के, हमारे मनीष शर्मा जी की डिमांड है। चलिए सुनते हैं इस डिमांड को, फिर आते हैं पंडित जी की डिमांड की ओर, और फिर होंगे हमारे निब्बर जी, अजीत साहब और सुनील कुशवाहा जी फ्रॉम MP। और हाँ, मुझे याद है 3:40 पर मिलना है मुझे मेरे प्यारे चैटबॉक्स वासियों से। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रैक के साथ में। झूमिए नाचिए गाइए और मनाइए, क्या नहीं कुछ भी मन मनाइए भाई, एवरग्रीन सॉन्ग है, बस सुनते जाइए, थोड़ा सैड लव सॉन्ग है लेकिन मस्त है। नागेश्वर जी आपके लिए स्पेशली है भाई, रूपा जी तो जा चुकी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए गाना छोड़ गई है पैगामे तोहफा, तो आप एंजॉय कर लीजिए।

हाँ जी, तो मनीष शर्मा जी जो हमें खुरासा से सुनते हैं, उनकी डिमांड पे आपने ये ट्रैक एंजॉय किया। आप चलते हैं पंडित जी की डिमांड की ओर और देखते हैं आज इन्होंने रैप के माध्यम से क्या संदेश भेजा है।

क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत ही गहराई भरा कहीं ना कहीं बात पेश कर दिया है इस नगमे के माध्यम से पंडित जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया अपना संदेश हम तक पहुंचाने के लिए इस गाने के माध्यम से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे पास में निब्बर जी की, भाई एक और बरसात का सॉन्ग एंजॉय करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेके अजीत साहब और सुनील कुशवाहा जी की एमपी से।

हाँ जी, तो ये बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक सॉन्ग की डिमांड थी हमारे निबर जी की, जो हमें सुनते हैं रेलवे क्रॉसिंग गोंडा से। अब हम बढ़ेंगे उस ओर जिस ओर आए हुए हैं आप सभी के पैगाम। 3:40 एग्जैक्टली हो रहा है भाई, और एग्जैक्टली इस वक्त पे हमने बोला था माते आप लोग से मुलाकात करते हैं आपके अपने चैट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला मैसेज किसको मिला है हमें। तो सबसे पहले मैसेज में हमें देख रहे हैं हमारे मनी शर्मा जी, उसके बाद मुस्तफा जी हैं सऊदी अरेबिया से, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे प्यारे लिसनर है कुमार टीलर साहब गौरव चौकी से, प्रबल मिश्रा जी और पंडित जी है हमारे बीच में, नेक्स्ट है हमारे बीच में दीपांशी तिवारी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन की स्माइली वाओ। कैफ मोबाइल जी भी है गोंडा से, भाई आज गुड मॉर्निंग के साथ में चाय, इन्हें मालूम है कि आज थोड़ी सी सर्दी लग रही है हमारी मतलब इनके प्यारी आरजी आकांक्षा को। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और क्या ही बोलूं, गुड मॉर्निंग का मैसेज इनका जब भी आता है मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ, साथ में एक चाय भी, आहा, दिल से दिल का कनेक्शन है कहीं ना कहीं आपका हमारा। आप हमारी जज्बातों को बड़े अच्छे से जानते हैं, एक दो शब्द ही लिखते हैं लेकिन पूरी बात कह जाते हैं उतने में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर। कमल नयन जी हैं हमारे बीच में, आपका भी स्वागत करते हैं कमल नयन जी, और बड़े ही प्यारे नयन इनके, इसलिए इनका नाम है कमल नयन। और किस आरजे से ज्यादा डर लगता है, नाम क्या है ये तो आप बताएंगे ना कैफ जी, हम कैसे जाने आप बताइए। और के गुप्ता जी हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, गुल्लबो आरजे आकांक्षा जी कैसी हैं आप, बहुत प्यारी हूँ आपकी दुआओं जैसे, एकदम से मुस्कुरा रही हूँ, थैंक यू सो मच। नीना जी भी आ गई हैं भैया अपना नीला नीला लिंक लेके, देखते हैं आपका गाना कितने नंबर पे आता है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे बीच में उपस्थित है हमारे सबलू सावंत जी मुंबई बोरेवली से, और इसके अलावा हमारे बीच में नेक्स्ट हमारी नेहा जी आ गई बराई से, यानी कि चंगू मंगू की जोड़ी हुई यहाँ कंप्लीट। नमस्कार हमारे गुलाब जामुन मैडम जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला मिठास। और आज इनकी जो डिमांड है ना भाई, क्या ही बताएं, क्या बोल के गई हैं मैडम, बताएंगे इनकी डिमांड के वक्त पे जी, हमारे नीना जी नहीं नेहा जी की डिमांड के टाइम पे। और नागेश्वर धाकर जी हैं रतलाम की गलियों से, तो बीरबल जी हमें लग रहा है कि आधे सफर में सो गए क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा है। खैर कोई बात नहीं, आधे सफर के लिए आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रूपा जी की खोज में शायद हमें लग रहा है सपने मिल जाए इसी आसरे से सो गए हैं। श्याम नाम की पगली जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज की अगर हम बात करते हैं तो अब्दुल मुजीम साहब हैं अपने एक प्यारे से शेर के साथ में, शेर की तरह जीने का शौक है हमें, डर के साए में जीना हमारी फितरत नहीं, क्या बात है बॉस, शेर ही रहिएगा लाइफ टाइम, उम्मीद है आपसे। और इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो हमारे बीच में है कौन, ये हमें ढूंढना पड़ेगा भाई, बहुत सारा मैसेज है आपस में ही, इन लोगों की चिट चैट हो रखी है। और जी जी जी आगे बढ़ रहे हैं हम लगातार, और हमारे बीच में है भाई कौन है धर्मेंद्र मोहन भारती जी आवास विकास कॉलोनी गोंडा से, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है और वेलकम भी है साथ में। इट्स कुमार साहब एमपी रीवा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनका कहना भैया हमारे इधर तो झीले हैं हमारे चारों तरफ, भाई एमपी इतना प्यारा मतलब क्या बोलेंगे, जिला शहर क्या बोलेंगे, राज्य है भाई राज्य है, एमपी इतना प्यारा राज्य है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, वहाँ घूमने के पर्यटन स्थल इतने ढेर सारे, मंदिर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, तो भाई आपके शहर का आपके राज्य का बात ही कुछ अलग है, नहीं अलग नहीं है, देश में ही आता है हमारे, इसलिए हमें नाज है कि हमारे देश में एक एमपी भी पड़ता है। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मैसेज की ओर, हमारे बीच में है सचिन शुक्ला जी जो हमें सुनते हैं दिल्ली से, हमारे सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, और नेक्स्ट आप ही लोगों के ढेर सारे मैसेजेस हैं, चिट चैट है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और अगर किसी का मैसेज रह जाएगा तो हम बाद में जरूर संबोधित करेंगे उनको। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, नेक्स्ट डिमांड हम तक पहुंची हुई है अजीज साहब की, जो हमें सुनते हैं कहां से दोस्तों, वो हमका सुनते हैं मुंबई से, आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रैक के साथ में जो होगी सुनील कुशवाहा जी की एमपी से।

बहुत बड़े दिनों बाद इस कव्वाली को एंजॉय किया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया अजी साहब, आपकी डिमांड में काफी पसंद आती है। आप गजल या कव्वाली ही लाते हैं लेकिन बड़ी प्यारी होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, जो है हमारे प्यारे सुनील कुशवाहा जी की डिमांड, जो हमें सुनते हैं MP से। और वक्त हो चला है 3:47। भगवान इतनी जल्दी वक्त बीतता क्यों है।

के गुप्ता जी, स्पेशली नेक्स्ट पैराग्राफ आप ही के लिए होगा और ध्यान से सुनिएगा। और जब भी किसी का जी चाहे तो पास उसके मिलने आता है, और आपको अगर लगता है कि हम थोड़ा सा आपसे नाराज है तो आप आ जाइए, मिल लीजिए हमसे। हमें नहीं लगता है कि हम आपसे नाराज होंगे। कोई बहन अपने भाई से कब तक नाराज होती है, यही बताइए, आप खुद ही बताइए। थोड़ा जिद करती है कि आप थोड़ा सा अपना मतलब शायद कुछ मनवाने के लिए, बस इतना ही कहेंगे। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को हमारे प्यारे सुनील कुशवाहा जी की डिमांड पे, और चलते हैं इस सफर में आगे।

हाँ जी दोस्तों, और अब हम बढ़ेंगे सुनील जी की डिमांड के बाद में नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये नेक्स्ट डिमांड है किसकी, आइए बताते हैं आप सभी को। ये नेक्स्ट डिमांड हमारी आई हुई है हमारे पास में, जिनकी उनका नाम है शहनवाज जी, जो हमें सुन रहे हैं अहमदाबाद से। मुझे तुमसे मोहब्बत है, कहाँ तक दीवानगी की हद तक यार।

जी दोस्तों, और इस सॉन्ग के बाद में होंगे हमारे सबले सावन जी, मुंबई बोरीवली से कमल नैन जी होंगे हमारे गोंडा से, और नेक्स्ट डिमांड किसकी होगी वो होगी हमारी नेहा जी की, यानी कि बड़ी यार बड़ा गाना बढ़िया है, एंजॉय करते बोलेंगे बाद में।

जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये हमारे सबलू सावंत जी की डिमांड है। फिर आएंगे हम अपने कमल नैन जी की डिमांड पे, और फिर होंगी हमारी नेहा जी यानी मंगू जी, और लास्ट डिमांड अगर वक्त रहा तो रईस साहब मैं आपका कंप्लीट करूंगी।

हाँ जी, और सबलू जी ने भाई पहली दफा ऐसे सॉन्ग की डिमांड की है, हम तो भाई थोड़ा सा चौक से गए। बहुत अच्छी सी डिमांड थी, सूदी से सॉन्ग था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो हमारे कमल नैन जी की डिमांड है भैया, मौसम के ऊपर गाना आया हुआ है, एंजॉय करते हैं। उसके बाद मंगू जी की डिमांड होगी, और फिर अगर वक्त हुआ तो रईस साहब लास्ट डिमांड आपके लेंगे।

जिन की डिमांड रह जाएगी वो है हमारे प्यारे राजू सलमानी जी यानी रॉबिन हुड जी, जो मैं सुनते हैं आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से मुमताज अंसारी साहब। क्या प्यारा सा सॉन्ग आपने भेजा था, ओ माय गॉड क्या मौसम आया है। और इसके अलावा सुरेश कुमार जी चौक गोंडा से, इनका भी नगमा बड़ा प्यारा था, भोली सी सूरत। काजल जी हैं और राम नरेश तिवारी जी हैं। इसके अलावा है इरशाद टेलर जी, जो हमें हथियागढ़ से सुनते हैं, और मुस्तफा जी और नीना जी भी कहीं ना कहीं आज रेस से बाहर हैं।

राजू और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में भी आपने एंजॉय किया प्यारा सा नगमा। बढ़ते हैं हमारी नेहा जी की डिमांड पे और इसको हम डेडिकेट करेंगे अपनी दोनों चंगू मंगू की जोड़ी को। भाई इन्होंने हमको डेडिकेट किया लेकिन हमें लगता है हमें आपकी लगी हुई है क्या? ये गाना सुनिए जान जाएंगे।

जमाने का पता नहीं, लेकिन दरोगा साहब ने जरूर कहा होगा कि लती ये गलत लगी हुई है। इसके बाद जो गाना है वो इट्स कुमार साहब स्पेशली आपके लिए, जो रईस साहब की ओर से आया हुआ है। मनी जी, वक्त की कमी के कारण आई एम सो सॉरी, चाची जी से माफी मांगते हैं।

क्या बात है भाई, दिल दिमाग सब हिला हिला के एकदम क्या किया है आप दोनों ने। चंगू मंगू जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल वर्मा जी है सैदापुर से और अनुष्का जी भी आ गई है जाते जाते श्रावस्ती से। अब चलते हैं रईस साहब की डिमांड की ओर और ये गाना हमारे प्यारे इट्स कुमार साहब जी के लिए। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपके अपने शो जी हाँ खेत खलिहान के साथ। आइएगा जरूर, बहुत ही जरूरी स्कीम है, सरकारी स्कीम है, तो उसका फायदा उठाने जरूर आइएगा। बाय बाय, टेक केयर।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
2: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
2: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
9: आप सुन रहे हैं एक सुपर हिट सॉन्ग्स वाला शो, ज्ञान स्थली बेस।
10: ज्ञान स्थली बेस।

0: एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, ये लाइन भी नहीं है और बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई
1: बस विरूपा जी बस, वरना तेरे प्यार में पग पड़ जाऊंगा।
2: तुम क्या कह रही थे?
0: गर्मी गर्मी कितनी हो रही है यार, पसीने निकल रहे हैं।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
2: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। व चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
2: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
2: पालतू जानवरों को छाव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ जी दोस्तों, तो अभी वक्त हो चला है आपके अपने शो का, क्योंकि घड़ी में बज चुके हैं पूरे 5:12 और ये वक्त होता है आपके खेत खलिहान कार्यक्रम का, गौधुली स्पेशल खेत खलिहान। दिन है गुरुवार और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे कांक्षा, और हम लेकर हाजिर हैं आपका जी हाँ साप्ताहिक कार्यक्रम जिसका नाम है खेत खलिहान। चलिए चलते हैं उस ओर जिस ओर आज हमें जाना है। हाँ बताते हैं ना कि आपको आज का टॉपिक क्या है और हमारे बीच में कौन कौन है मौजूद। तो हमेशा की तरह हमारे को होस्ट की भूमिका निभाने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हमारे इरफान शाह जी, और उनके साथ में हैं आज के हमारे बतौर एक्सपर्ट। और बतौर एक्सपर्ट कौन है ये बताएंगे हमारे इरफान शाह जी। उससे पहले हम इरफान जी का वेलकम करते हैं। कैसे हैं इरफान जी?
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, और मैम आपको भी नमस्ते।
0: आज का मौसम बड़ा बढ़िया है हमने सुना है
1: जी। आज जब बारिश हो गई रात से ही, तो सुबह देखा आंख जब खुली तो मौसम बहुत सुहाना हो गया और किसान भाई बहनों के चेहरे पे मुस्कान आ गया।
0: अच्छा ऐसा क्यों? मतलब मुस्कान तो मेरे भी चेहरे पे आई थी भाई, खाली किसान भाइयों बहनों के ऊपर काहे आया था?
1: देखिए इस समय जो हमारे किसान भाई बहन गन्ने की फसल लगाए हैं, सब्जी की फसल लगाए हैं और धान का जो बीरन डाल रहे हैं, तो उसमें क्या है पानी की बहुत जरूरत होती है।
0: ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस समय धान की खेती होने की तैयारी हो रही है क्या?
1: बिल्कुल, इस समय जो गांव में जो है, इस समय गांव में जो धान की नर्सरी डालने की बहुत तेजी से चल रही है। सभी किसान भाई बहन जो है वो धान की नर्सरी को डाल रहे हैं और उस पे मतलब वो कौन सा बीज डालें, क्या क्या ध्यान रखे हैं। लेकिन इसके लिए आपको मालूम होगा मैम कि सबसे पहले मिट्टी की जांच होती है।
0: हाँ ये बात तो सही। अच्छा किसानी में ही नहीं, आप मतलब बागवानी भी कर रहे हैं, कोई भी खेती से संबंधित आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपकी मिट्टी की जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के लिए शायद आज हमारे बीच में कोई खास मेहमान मौजूद है। कौन है इरफान जी?
1: बिल्कुल नाम बताएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर श्री छोटेलाल रावत सर, जो की बलरामपुर से चलकर आए हैं। तो सर का हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं तहे दिल से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप कैसे हैं सर, अपना हाल चाल बताएं।
2: मैं बहुत ठीक हूं मैडम, और जी मैं सभी किसान बंधुओं को नमस्कार करता हूं।
0: जी आपके उधर भी बारिश हुई थी?
2: जी जी जी मैडम, शाम को बारिश हुई थी और इस समय तो मौसम अच्छा है, बारिश तो नहीं हो रहा है।
0: ओके सर, मिट्टी और बारिश का क्या संबंध है? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है।
2: देखिए मैडम, जो बारिश हमारी होती है वो डिपेंड करता है कि किसान की उस समय क्या क्या आवश्यकताएं हैं। कभी कभी ये बारिश हमारी जो होता है एक तरीके का सोना का काम करती है, और कभी कभी ये बारिश जो होता है किसानों की पूरी पूरी फसल जो होता है चट कर जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि बारिश किस समय हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, तो ये सारी बातें बारिश पर निर्भर करती हैं। जैसे इस समय की जो बारिश है ये बहुत ही अच्छी बारिश है, क्योंकि धान की रोपाई के लिए जो बीज है वो तैयार किया जा रहा है और खेतों में डाला जा रहा है।
0: जी जी,
2: तो इस समय उपयुक्त है और बहुत अच्छी बारिश है।
0: ओके, तो मतलब अगर ये बारिश जो हो रही है वो कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, दोनों ही तरह से हमारी खेती के लिए बहुत जरूरी है।
2: जी जी जी, जी। मैडम इस समय तो आवश्यक है और जरूरी भी है, क्योंकि अच्छा खासा पानी हमारे किसान बंधु जब भी ये सीडलिंग डालते हैं धान की,
0: जी जी,
2: तो अच्छा पानी भरना पड़ता है, करीब 5 सेंटीमीटर पानी भरना पड़ता है।
0: तो मतलब
2: है।
0: वो बचपन वाला डायलॉग कह सकते हैं कि मेघा रे पानी ला रे पानी ला रे।
2: जी जी जी मैडम कह सकते हैं।
0: जी वैसे आज का विषय है दोस्तों सॉइल टेस्टिंग, यानी कि मृदा की जांच या मिट्टी परीक्षण आप जो भी कह लें। इसके लिए कोई मुहिम भी चला रही है सरकार इस दौरान इस वक्त सर?
2: हाँ मैडम, भारत सरकार की योजना है
0: जी
2: सॉइल हेल्थ कार्ड, तो उसी के अंतर्गत
0: जी
2: प्रत्येक ईयर प्रत्येक साल भारत सरकार कुछ हर जिले से हर ब्लॉक से कुछ ग्राम पंचायत सेलेक्ट करती है
0: जी,
2: और जो भी ग्राम पंचायत सेलेक्ट की जाती हैं उसका हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी लोग मिट्टी का नमूना कलेक्ट करते हैं, और वो भी निशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। और ये मुहिम प्रत्येक वर्ष चलती है, और अभी वर्तमान में निशुल्क की योजना नहीं आई हुई है, संभवतः 1 वीक में निशुल्क की योजना आ जाएगी। तो जो भी ग्राम पंचायत सिलेक्ट किए जाएंगे उनका निशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
0: तो ये जो कार्ड मतलब बनता है वो मतलब साल में कितनी दफा हम अपनी मिट्टियों का परीक्षण करवा सकते हैं उस कार्ड के बिहाफ पे?
2: मैडम जो सॉयल हेल्थ कार्ड होता है
0: जी,
2: ये इसकी वैधता 3 वर्ष की होती है।
0: ओहो,
2: और इसमें 12 पैरामीटर की जांच की जाती है जिसमें से मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और उसके बाद में जीवांश कार्बन, पीएच, विद्युत चालकता की जांच होती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और बोरान की जांच की जाती है। सिर्फ द्वितीय पोषक तत्व एक ऐसा है जो इसमें जांच किया जाता है, वो है सल्फर। तो कुल मिला के 12 पोषक तत्वों की जांच की जाती है और उस जांच के आधार पर किसानों को उस कार्ड में संतुति दी जाती है कि जिस पोषक तत्व की कमी है उसकी मात्रा बढ़ा के उसमें डोज बढ़ा के दी जाती है और यदि वो पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में है तो उसकी मात्रा कम करके बताई जाती है और कुछ पोषक तत्वों को गोबर की खाद और केचुए की खाद के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उत्पादन भी अच्छा होता रहे
0: जी।
2: हाँ, इन बातों का ध्यान रखा जाता है
0: जी। बहुत ही अच्छे से आपने बताया, लेकिन अभी मेरे जहन में एक और सवाल चल रहा है। सवाल ये है सर कि इसी बात से संबंधित है कि ये जो जितनी भी कमियां जितनी आपने टेस्टिंग बताई उसको लेकर के है कि अगर इन सभी की कमी आती है तो वो मतलब सरकार के द्वारा मतलब हमारी प्रतिपूर्ति की जाती है या किसान भाइयों को अपनी तरफ से करना होता है?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम
0: जी।
2: ये जो भी कमियां आती हैं तो समय समय पे भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं रहती हैं
0: जी।
2: जैसे कि ढांचा जो कि जो होता है खाद के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो राज्य सरकार से सब्सिडी पे उपलब्ध कराया जाता है जो कि हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, जो उसकी संरचना है उसको अच्छा करता है, नाइट्रोजन और उसकी जो जल धारण क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से जो होता है समय समय पे जो सब्सिडी रहती हैं वो किसानों को उपलब्ध कराई जाती हैं।
0: तो इस हिसाब से तो भाई ये सॉइल टेस्टिंग कार्ड बड़ा ही उपयोगी है और मुझे लगता है हमारे सारे किसान भाइयों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और सर इसीलिए हाल फिलहाल में आए हैं, आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, आप लोग की जागरूकता के लिए खास करके अपना कीमती वक्त निकाल के बलरामपुर से यहाँ तक आए हुए हैं। सबसे पहले आपको इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों बस आपसे यही विनती है कि एक हफ्ते में ही मे बी ये योजना फिर से स्टार्ट होने वाली है तो आप उसका पूरी तरह से लाभ उठाइए और 3 साल तक ये कार्ड आपको लाभान्वित करता रहेगा। फिलहाल आज का जो विषय है उस ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताइए सॉइल टेस्टिंग होता क्या है?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम
0: जी।
2: सॉइल टेस्टिंग में लगभग 3 क्वेश्चन किसानों के रहते हैं और अगर उन 3 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक किसान ध्यान दे कि मिट्टी की जांच क्यों करानी चाहिए और मिट्टी की जांच का क्या महत्व है और मिट्टी का नमूना कैसे लेना चाहिए, अगर इन बातों को किसान भाई ध्यान दे तो निश्चित रूप से किसान का मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उत्पादन भी अच्छा रहेगा। और जो फर्स्ट जो आपने मेन क्वेश्चन किया कि सॉइल टेस्टिंग का क्या महत्व है, तो सॉइल टेस्टिंग का मैम यही महत्व है कि जब तक हमारी मिट्टी स्वास्थ्य नहीं रहेगी तब तक हम सभी लोग, किसान बंधु हो या कोई भी लोग हो, कोई भी अपने स्वास्थ्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सुबह से शाम तक हम जो भी खाते हैं, चाहे फल खाएं, चाहे वेजिटेबल्स खाएं, चाहे दालें खाएं, चाहे तेल का सेवन करते हैं, सब हमारी मिट्टी द्वारा ही उपजा जो होता है उत्पादित होता है। तो इसलिए मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आवश्यक है और जांच के आधार पर ही संतुलित मात्रा में जब हम उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से किसान की इनकम भी बढ़ेगी और उसकी लागत में भी कमी आएगी।
0: तो इस तरह से सॉइल टेस्टिंग हमारे लिए जरूरी है और ये क्या है ये हमारे सर ने हमको बताया। अब हम चलेंगे इरफान शाह जी की ओर और आज देखेंगे ये कितने सवाल लेके आए हैं। भाई इनके पास सवाल तो होता है लेकिन हमें लगता है हम इन्हें बोलने ही नहीं देते हैं। तो सर आपके पास आज कौन सा सवाल है, प्लीज अपना प्रश्न रखिए हमारे सर से।
1: आपने काफी सवाल अच्छा किया है। आप सर हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे किसान भाई बहन के मन में सर सवाल सर ये तो जाना कि सॉइल टेस्टिंग है क्या और जांच क्यों करवाना चाहिए। अब सर हम आते हैं अगले सवाल पे, जानते हैं कि सर ये सॉइल टेस्टिंग जब अगर कराना है तो हम कहाँ पे कराएं सर, ये बहुत सर जरूरी होता है।
2: इरफान जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए जितने भी जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, प्रत्येक जनपद में राज्य सरकार की प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। प्रत्येक जिले में आप जब भी कृषि विभाग जाइए, कृषि विभाग में वहां पर भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के नाम से कार्यालय आपको मिलेगा और वहां पर आप मिट्टी का नमूना देकर और वहां पर आप जांच करा सकते हैं। और कुछ हमारे ज़्यादातर केवीके भी हर ज़िले में, किसी ज़िले में एक हैं, कहीं पर दो हैं, वहाँ पर भी मिट्टी की जांच आसानी से किसानों भाइयों की हो जाती है।
1: तो मतलब यहाँ पे जो हर ज़िले में सर प्रयोगशाला होता है वहाँ पे जाके हम जांच करवा सकते हैं। अब सर मान लीजिए अगर खेत की जब मिट्टी की जांच करवाना है तो सर हम मिट्टी खेत की बीच से लें या किनारे से लें, ये भी हमारे किसान भाई बहनों के मन में ज़रूर सवाल होगा सर।
2: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जब तक हम नमूना सही से नहीं लेंगे तब तक हमको अपने खेत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी नहीं अच्छे से प्राप्त होगी।
1: तो कॉल आ गया सर, हम रोकना चाहेंगे।
0: जी अभी बढ़ते हैं कॉलर की ओर और देखते हैं मैं अभी इसमें कौन जुड़ गया है। हेलो।
3: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं?
3: नमस्कार, बहुत बढ़िया है। कुशल पाल तिवारी उसेना रुपई जी गोंडा।
0: जी जी कुशल पाल तिवारी जी, आप के उधर भी बारिश हुई है?
3: नमस्कार बहन जी, हमारे उधर भी बारिश हुई है।
0: क्या बात है, बधाई हो।
3: और साथ में इसमत महोदय छोटे लाल जी रावत को
0: जी जी
3: और भाई इरफान को और आपके पूरी टीम को नमस्कार मेरी तरफ से।
0: जी बहुत बहुत नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। कहिए आपका प्रश्न क्या है सर?
3: अरे प्रश्न तो हमारा बहुत बढ़िया, सबसे पहले आपने आज गाना भी बहुत बढ़िया बजाया, ऐसा देश है मेरा।
0: जी जी।
3: और उसके बाद में इस प्रश्न से तो बाद में सवाल पूछते हैं, पहले आपसे ही एक प्रश्न को क्लियर करते हैं।
0: जी जी पूछिए।
3: अभी अभी अभी आपने मेघा के बारे में बताया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये मेघा बादल को बता रही है या जो पहले हम लोग कार कलौटी खेलते थे पकड़ करके तालाब वाले मेघा को, दोनों में कन्फर्म क्या है?
0: ये तो आप खुद से समझ लीजिए, अब आपकी बहन है, अब आप खुद ही समझ लीजिए क्या ही किया होगा।
3: मैंने कार कलौटी खेलते हुए बच्चों को आपने देखा होगा, उस मेघा की बात कर रही है कि आसमान वाले मेघा?
0: देखिए एक हमारा होता है, एक जो आता है मौसम में बरसात के ही दौर में, उसको कुछ बोलते नक्षत्र शायद मेघ होता है, और उसी को बोलते हैं शायद वो मतलब राजा होता है पूरे मौसमों का बरसात वाले का।
3: ये तो हंसी की बात थी।
0: जी जी।
3: आज हमारे गांव के एक भाई साहब बैठे हैं जो आपके कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।
0: ओह बहुत बहुत स्वागत है
3: मूर्ख शुक्ला जी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है सर का।
3: आप शुक्ला जी लीजिए अपना प्रश्न पूछिए।
4: सर नमस्कार।
0: नमस्कार, आप तो नहीं पूछने वाले?
4: सर एक प्रश्न है हमारा
0: जी,
4: वह के लिए जानकारी थी मिट्टी की जांच के लिए कैसे क्या कुछ खेत मैम थोड़े।
0: जी जी क्या क्या सवाल है आपका?
3: बहन जी ये पूछना चाहते हैं, जैसे अभी पहली बार ये फोन पे बात कर रहे हैं।
0: हाँ, हाँ,
3: हाँ। ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई किसान
0: जी
3: अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना चाहे तो सबसे पहले उसे कब जांच कराना चाहिए, कब लगे? जैसे हम बीमार होते हैं, कुछ सर्दी जुकाम बुखार होता है, कोई परेशानी होता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जी जी जी।
3: तो हम अपनी खेत को कैसे पहचान करें कि इसमें जांच की आवश्यकता है, और अगर जांच करवाने की ही जरूरत पड़ती है तो हम नमूना कैसे लें, खेत से नमूना कैसे एकत्र करें?
0: जी जी जी बहुत बढ़िया सवाल है आपका, जरूर आप तक आपका उत्तर पहुंच रहा है। और कोई सवाल तो नहीं है कुशल पाल जी?
3: नहीं नहीं बस और कोई नहीं
0: जी।
3: तो ये आज आज हमने अपने भाई साहब से कहा था कि आज ज्ञान स्थली का गोधूल स्पेशल सुना जाए।
0: जी जी जी।
3: तो ये हमारे घर पर बैठे हुए हैं, काफी देर से हम लोग सुन रहे हैं।
0: जी जी। और हम तो आपसे विनती करना चाहेंगे कि इस दफा जो कार्ड बनेगा मृदा परीक्षण का, उसमें जरूर आप मतलब लाभान्वित होइएगा उससे।
3: जी जी जी। तो वही ये भाई साहब का प्रश्न है, भाई साहब थोड़ा नहीं अभी फोन पे हिचकिचा रहे हैं।
0: जी जी, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे बीच थे कुशल पाल तिवारी जी। सर, आप तक उनका प्रश्न पहुंच गया है, अब आप जवाब दें।
2: देखिए तिवारी जी, हमें मिट्टी का नमूना कैसे लेना है, उसके पहले हमको ये जानना चाहिए कि मिट्टी का नमूना हमको कब लेना है।
0: लेकिन उससे पहले हाँ यही कि कब लेना है, और दूसरी बात हमारी मिट्टी बीमार कब है।
2: हाँ, और मिट्टी हमारी बीमार कब है, तीन क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहले तो हमको ध्यान देना है कि अगर हमारी फसल खेत में खड़ी है तो उस दौरान हम मिट्टी का नमूना नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपके खेत में फसल खड़ी है तो इसका मतलब है आपने उसमें पोषक तत्व यूरिया डीपी गोबर की खाद आदि उसमें डाले हैं। अगर उस दौरान आप सैंपलिंग कर लेंगे, नमूना ले लेंगे, तो उसमें पोषक तत्व ज़्यादा आएंगे और कमी पता नहीं चल पाएगी। तो ये तो बात हो गई कि हमको ध्यान देना है कि जब फसल हमारी खेत में खड़ी है उस समय मिट्टी का नमूना हम कलेक्ट नहीं करेंगे। हम जब भी मिट्टी का नमूना लेंगे, जब हमारे खेत की फसल कट जाएगी लगभग 10 से 15 दिन बाद हम अपने खेत से मिट्टी का नमूना लेंगे। अब नमूना लेने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान देना है कि हमें किन किन बातों को ध्यान में देना है कि कहाँ कहाँ से हमको मिट्टी का नमूना नहीं लेना है। सबसे पहले किसान बंधुओं, हमको ध्यान देना है कि अगर आपके खेत में कोई भी पेड़ हो, चाहे आम का हो या जामुन का हो, तो उस पेड़ के नीचे से मिट्टी का नमूना नहीं लेना है, क्योंकि पेड़ की पत्तियां गिरती रहती हैं और जब पत्तियां गिरती हैं तो वो सड़ती हैं, उससे जो होता है जीवांश कार्बन अच्छा वहां के नीचे निकलता है, तो हमें खेत के नीचे से भी मिट्टी का नमूना नहीं लेना है। दूसरा, हमें लगभग अपने खेत से एक मीटर एरिया जो मेड़ होती है, जिसको बंड बोलते हैं, उसको छोड़ देना है, वहाँ से भी मिट्टी का नमूना हम नहीं लेंगे। तीसरी बात, किसान बंधु हम ध्यान देंगे कि जहाँ पे हम कभी कभी कुछ किसान बंधु अपने खेत में गोबर की खाद भी डालते हैं जिनके पास जानवर हैं, तो उस स्थान से भी मिट्टी का नमूना नहीं लेना है, क्योंकि अगर उस स्थान से मिट्टी का नमूना ले लेंगे तो वहाँ पे जीवांश कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की मात्रा पर्याप्त मिल जाएगी। तो अभी तक तो आप किसान बंधुओं ने ये जाना कि कहाँ से नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि कहाँ से मिट्टी का नमूना लेना है। मिट्टी का नमूना हम किसी अपने खेत पे ऐसे स्थान का चुनाव करेंगे जो समतल हो, जहाँ पे ज़्यादा गड्ढे ना हो, उस स्थान से हम मिट्टी का नमूना लेंगे। और हम अपने खेत में वी शेप का गड्ढा खुरपी की सहायता से, अगर की सहायता से, सॉयल सैंपलर की सहायता से लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई तक खोदेंगे। 15 सेंटीमीटर गहराई तक तब खोदेंगे जब हमको गेहूं और धान, चना, मक्का ये फसलें लेनी हो, उस स्थिति में हम 15 सेंटीमीटर गहराई तक गड्ढा खोदेंगे। अगर हम गन्ना की फसल लेना चाह रहे हैं तो गन्ने की जड़ें हमारी उससे ज़्यादा अंदर जाती हैं, तो हम 25 सेंटीमीटर गहराई तक गड्ढा खोदेंगे वी शेप का, और उस गड्ढे से 2.5 सेंटीमीटर मतलब दाएं से और बाएं से 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से लगभग 250-250 ग्राम मिट्टी कुल मिला के एक जो गड्ढा खोदेंगे उससे हम आधा किलो मिट्टी निकालेंगे। और ये प्रक्रिया अगर हमारा एक हेक्टेयर खेत है तो हम लगभग 8 जगह से करेंगे। और ये जब प्रक्रिया कर लेंगे 8 जगह पे, तो लगभग हमारे पास 4 किलो मिट्टी कलेक्ट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। उस 4 किलो मिट्टी को हमको एक बोरी पे डाल देना है, और उसमें जो भी फसल के अवशेष हों, जो भी कण हों, उनको बाहर कर देना है। और उसके बाद में मिट्टी को अच्छे से मिलाने के बाद में मिट्टी को चार भागों में बांट देना है। जब चार भागों में बांट देंगे तो उसमें से जो आमने सामने के भाग होंगे उनको हटा देंगे, बचे हुए दो भागों को फिर एक में मिलाएंगे। ये प्रक्रिया किसान बंधुओं तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे खेत का आधा किलो मिट्टी का नमूना नहीं बचता है। जब हमारे खेत का आधा किलो मिट्टी का नमूना बचेगा तो उस मिट्टी के नमूने को हम एक पॉलीथीन में भर के और उसमें उसके ऊपर एक कागज़ में अपना नाम, अपना खसरा संख्या, अपने ब्लॉक का नाम, अपने ज़िले का नाम लिख के नज़दीक के प्रयोगशाला में जाके जमा कर देंगे। और अगर आप निःशुल्क वाली योजना नहीं चल रही होगी उस समय तो अगर आप 5 पैरामीटर की मुख्य पोषक तत्वों की जांच कराएंगे तो उस समय 29 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा, और अगर कुल 12 पैरामीटर की जांच कराएंगे तो 102 रुपये किसान बंधुओं आपको देना पड़ेगा, और अगर निःशुल्क चल रही होगी योजना तो उस समय आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो हमने पूरा तरीका बता दिया कि मिट्टी का नमूना कैसे लेना है और कब लेना है। अब बात आती है किसान बंधुओं कि आपने पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी मिट्टी बीमार है, तो मैं किसान बंधुओं आपको बताना चाहूँगा कि आप अंजादे में उर्वरक तो डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीपी डाल रहे हैं, पोटास डाल रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि हमारे गन्ने को, हमारे गेहूं को, हमारे धान को कितने पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। तो जब आप मिट्टी की जांच कराएंगे उसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि किस किस मात्रा में पोषक तत्व देना है। दूसरा, अगर आप देखते हैं अपने खेत में कि जिस हिसाब से आप उर्वरक डाल रहे हैं आपके खेत में उसके अनुसार आपके खेत की पैदावार नहीं हो रही है, और कभी कभी किसान बंधुओं ये होता है कि जब मिट्टी हमारी ज़्यादा क्षारीय हो जाती है तो मिट्टी के ऊपर हल्का हल्का सफ़ेद कलर नज़र आने लगता है गर्मियों के सीज़न में, तो उससे प्रतीत होता है कि हमारी मिट्टी ऊसर का रूप ले रही है। तो इन जब बातों को ध्यान में रखेंगे और आपके मन मुताबिक उसमें जब पैदावार नहीं हो रही है तो आप समझ जाइए कि हमारी मिट्टी बीमार हो रही है और इसकी जांच कराना चाहिए।
1: आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी। आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन इस समय कार्यक्रम खेत खलिहान सुन रहे हैं उनको बहुत सारी जानकारी मिली। अब सर हम आते हैं अगले सवाल पर। सर, अगर मिट्टी की जब जांच हो जाती है तो किसान भाई बहनों को ये भी कैसे पता होता है कि पोषक तत्वों की कमी है?
2: हाँ, हमने अभी सबसे पहले यही बताया कि जो हम सॉयल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराते हैं जी। उसमें हम 12 पैरामीटर की जब जांच करते हैं तो जिस पोषक तत्व की कमी होती है तो उसमें कमी को प्रदर्शित किया जाता है और उसी कमी के अनुसार पोषक तत्वों की संतुति भी की जाती है, और संतुति इस हिसाब से की जाती है कि कुछ पोषक तत्व रासायनिक खादों से दिए जाते हैं, कुछ गोबर की खाद से दिए जाते हैं, कुछ केचुए की खाद से दिए जाते हैं, जिससे और कुछ ढांचे से, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य भी मेंटेन रहे और हमारे किसान बंधुओं की जो लागत है वो भी कम आए और उत्पादन भी अच्छा हो।
0: सर, एक सवाल मेरे पास भी है कि किन गलतियों के कारण कीट व बीमारियां फसल में बहुत ज्यादा लग जाती हैं, अक्सर देखा जाता है?
2: हाँ मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है
0: जी, बहुत बधाई।
2: हाँ, ये जो बीमारियां लगती हैं कुछ तो कभी कभी जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है कि बिना सीजन के बारिश हो गई, तो जैसे फ्लावर वाला सरसों का खेत है तो बिना ज़्यादा बारिश हो गई या ज़्यादा ठंडी हो गई तो उस समय कीटों का जैसे माहू का जो होता है प्रकोप हो जाता है
0: जी जी।
2: दूसरा, जो कीड़े हमारी फसलों में लगते हैं किसान बंधुओं की, वो जब हम उर्वरक जब हम बिना मिट्टी की जांच कराए हुए उर्वरकों को अंधाधुंध अपने खेत में डालते हैं बिना जांच के, और जैसे ही आप खेत में सबसे ज़्यादा किसान बंधु, सभी किसान बंधु हमने जहाँ तक देखा है कि सबसे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करता है, जब किसान बंधु यूरिया का प्रयोग करता है, अगर खेत में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो गई
0: जी,
2: तो जो फसल की वनस्पतिक वृद्धि है वो तो बहुत अच्छी वृद्धि उसकी होती है, लेकिन उसमें बीमारियों से और कीड़ों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि उसमें बहुत ही आसानी से बीमारियां, कीड़े उस पे जो होता है अटैक करते हैं। तो इसलिए मिट्टी की जांच के बाद ही उर्वरकों का चयन करें और उसके अनुसार ही उर्वरकों को डालें, क्योंकि जब आप उर्वरक ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी फसल की वनस्पतिक वृद्धि तो होगी, आपको देखने में तो अच्छा लगेगा, थोड़ी सी भी हवा चलेगी या आप सिंचाई करेंगे तो आपकी फसल गिर जाएगी, क्योंकि फसल के जो तने होते हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे कि किसान बंधुओं आपका जो उत्पादन है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। इसलिए मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आवश्यक है।
1: जी, ये तो बात हुई सर मिट्टी की जांच और उर्वरक। अब सर उर्वरक की बात हो रही है तो यूरिया का जो घोल है सर वो फसल पर छिड़काव कब और कैसे करें सर?
2: हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, और फसल की वृद्धि के लिए, वनस्पतिक वृद्धि के लिए यूरिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब वृद्धि होगी, पत्तियां निकलेंगी, तो प्रकाश संश्लेषण का होगा और पौधे जो होता है अच्छी ग्रोथ करेंगे। यूरिया का जो आपने बताया कि यूरिया का घोल किसान बंधुओं, कुछ विषम परिस्थितियाँ आती हैं तभी हम प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम खेत में छिड़काव के माध्यम से देते हैं। जब हमारे खेत में पानी बहुत ज़्यादा भरा हो, जैसे अभी धान की रुपाई होगी तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो खेत में पानी बहुत भरा हुआ है, और उस समय हमको यूरिया देना है कि नहीं तो हमारा जो होता है पौधे की जो वृद्धि है वो भी जो होता है प्रभावित होगी, तो उस स्थिति में हम यूरिया का छिड़काव करते हैं, 2% यूरिया का छिड़काव करते हैं। 2% का किसान भाइयों मतलब ये है कि जैसे 1 किलो यूरिया से में जो होता है 20 ग्राम यूरिया लेंगे और 1 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करेंगे। अगर मोटा मोटा किसान बंधुओं समझिए तो 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया डाल के छिड़काव करेंगे, जिससे कि आप की पत्तियों में, और ये छिड़काव भी दिन में करिए लगभग 11 से 12 बजे, कि पत्तियों के जो स्टोमेटा, जो रंध्र होते हैं, वो ओपन हो, वो खुला हो, जिससे कि वो अच्छे से जो होता है उसको अब्जॉर्ब कर सकें, अवशोषित कर सकें और उत्पादन बढ़ सके।
0: मतलब कि जब यूरिया का छिड़काव करना हो उस टाइम खड़ी दोपहरिया होनी चाहिए?
2: नहीं नहीं मैडम, खड़ी दोपहर में जब ज़्यादा धूप होने लगती है तो जो पत्तियों के स्टोमेटा, जो रंध्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं।
0: okay.
2: और अगर शाम के समय भी नहीं, ज़्यादा अगर शाम में करते हैं तो पौधे भी हम लोगों की तरह आराम करते हैं, पौधे भी सोते हैं
0: जी.
2: अगर आप ज़्यादा शाम के समय करेंगे तब भी पौधे के जो रंध्र रहेंगे, जो स्टोमेटा रहेंगे, वो बंद हो जाते हैं, और किसान बंधु
0: सुबह किया तो भी दिक्कत होगी।
2: हाँ, इसीलिए हमने बताया कि 11 से 12 बजे के बीच में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, उस स्थिति में छिड़काव करना चाहिए जब फसल हमारी खेत में खड़ी है, लेकिन उस समय जैसे फसल खड़ी है लेकिन वो जो होता है अवशोषण का कार्य, ग्रोथ ज़्यादा हो गई और फसल जो होता है अच्छी वृद्धि भी कर रही है, लेकिन उस समय ज़्यादा जो होता है जैसे खेत में पानी भरा हुआ है या फिर ज़्यादा ठंडी हो रही है, जब ज़्यादा ठंडी होती है तो उस समय भी हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाती हैं, जिससे कि जो होता है पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है।
0: तो उस वक्त भी हमें यूरिया छिड़काव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
2: हाँ, उस समय भी छिड़काव करना चाहिए।
0: ओके।
2: हाँ,
0: तो इस तरह से अभी आपने जाना कि यूरिया का एक्चुअल में छिड़काव कब करना होता है। हमारे यहाँ तो हमने देखा है, दादा नाना जब हमारे यहाँ खेतों में काम करते थे, शाम होती थी तब भी यूरिया छिड़क दिया करते थे।
2: शाम को बहुत ज्यादा शाम ना हो कर सकते हैं, लेकिन सबसे छिड़क जो हमने स्प्रे करने की बात बताया
0: जी
2: जो स्प्रे करने की बात बताया वो दिन में ही करें और सुबह के शाम समय ही करें। बाकी जब छिड़काव की बात आपने जो मैं पूछी
0: जी
2: छिड़काव में भी बहुत ध्यान देने वाली बातें होती हैं, क्योंकि यूरिया ये बहुत ही चलनशील उर्वरक है, बहुत जल्दी घुल जाता है, ये 24 घंटे के अंदर जो होता है करीब 75% जो होता है ये घुल जाता है।
0: तो लगा था जब एक दफा हमने पहली दफा मतलब यूरिया को देखा था, हमें लगा था ये साबुदाने का छोटा वाला साबुदाना है, हमने पूछा भी ये खाने वाला साबुदाना कहे, खाओगे मर जाओगे।
2: तो किसान बंधुओं को एक मैं बहुत आवश्यक बात बताना चाहता हूँ यूरिया के बारे में
0: जी,
2: कि कुछ किसान बंधु क्या करते हैं कि जैसे अपनी फसल बोई और बुवाई
0: कॉल आ रही है सर, हम आपको रोकना चाहेंगे
2: जी।
0: हेलो
5: हाँ नमस्ते बहन जी।
0: जी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताएं और कहाँ से सुन रहे हैं हमें ये बताएं।
5: मैं विजय पाल यादव
0: जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से बात कर रहे हैं।
5: जानते हैं बहन जी।
0: जी कई आपका क्या प्रश्न है, कैसे हैं आप पहले ये बताएं।
5: हम ठीक हैं
0: जी, भगवान करे ऐसे ही रहे। कहिए क्या सवाल है आपका।
5: मेरा ये प्रश्न है कि एक हमारा 6-7 बीघे का खेत है
0: जी,
5: उस खेत में आधे खेत में फसल बढ़िया होती है और आधे में बढ़िया फसल नहीं होती है। तो इसका अब जबकि पूरे खेत की समान जुताई होती है, खाद भी बराबर पड़ती है, पानी भी बराबर लगता है।
0: अच्छा तो हमें लगता है दोनों में दुश्मनी होगी, नाराजगी होगी किसी बात की।
5: पता नहीं बहन जी उसमें।
0: नहीं हमें लगता है सुबह सुबह आप जो घर से निकलते होंगे अपने खेतों के दर्शन के लिए, सबसे पहले आप पड़ोस वाले अच्छे वाले खेत में पाँव रखते होंगे, इसलिए वो नाराज हो गई। सो सॉरी, मेरी आदत है थोड़ा मजाक करने की। तो इसके अलावा भी कोई सवाल है
5: बढ़िया लगता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं फिर आपके सवालों का जवाब लेते हैं एक्सपर्ट महोदय से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नमस्कार। तो ये थे हमारे बीच में हमारे विजय पाल यादव जी, जो हमें सुनते हैं ललहुआ लखीमपुर खीरी से। और इनका सवाल यही है कि भाई खेत इनका सेम है, बहुत लाड प्यार से ये दोनों का ही देखभाल करते हैं, मतलब एक ही खेत का दो पार्टीशन मान लेते हैं, और एक में फसल अच्छी खासी होती है, दूसरे में फसल नहीं होती, इसका कारण क्या है।
2: किसान बंधु मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो अभी हमने पूरा प्रोसेस बताया उसी के माध्यम से आप अपने खेत की मिट्टी का नमूना प्रयोगशाला में ले आइए और उसमें 12 पैरामीटर की जांच की जाएगी। जांच के आधार पर ही अगर मिट्टी आपकी क्षारीय हो रही होगी तो आपको जो राजकीय बीज गोदाम है वहां से जिप्सम उपलब्ध करा दिया जाएगा और वो सब्सिडी पे ही मिलता है जिप्सम। जब अगर आपकी मिट्टी क्षारीय होगी तो जिप्सम उपलब्ध करा दिया जाएगा और वो आप अपने खेत में डाल दीजिएगा। उससे मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 के आसपास आ जाएगा, जिससे कि जो आप उर्वरक कह रहे हैं कि हम बराबर ही डालते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि जो पीएच मान है, पीएच मान आपकी मिट्टी में आधे खेत का कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो अगर वो जब जांच करेंगे उसी के आधार पर जिप्सम का रिकमेंडेशन डोज हम आपको बताएंगे और उपलब्ध करा देंगे। जब आप अपने खेत में डालेंगे तो उससे आपकी मिट्टी का जो संरचना है वो अच्छी हो जाएगी। कभी कभी किसान बंधु होता ये है कि हम उर्वरक डालते हैं और जैसे ही हमारी मिट्टी क्षारीय होने लगती है तो उर्वरक पौधे न लेके उर्वरकों का निच्छालन हो जाता है। वो लगभग जो 10 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक, तो 5 सेंटीमीटर तक रह के ना वो 15 सेंटीमीटर अंदर चले जाते हैं। तो किसान बंधु ये कर लीजिए। दूसरी एक बात ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कि आप मिट्टी पलट वाले से एक बार अपने खेत की गर्मियों के सीजन में जुताई करा दीजिए, जिससे कि जो उर्वरकों का निच्छालन आपकी ज़मीन के नीचे हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा और जो कीट पतंगे हैं, खरपतवार हैं गर्मियों में, और जो ऊपर के ये जो जितना सारा खरपतवार है ये नीचे चला जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में दीजिए तो निश्चित रूप से जो आपकी समस्या है इसका समाधान हो जाएगा।
0: सर आपने बताया कि गर्मियों के सीजन में आप मतलब पलटवाए अपने जमीन को, जिससे कि मतलब उसके उर्वरक जो भी नीचे चले गए वो ऊपर आ जाए, तो गर्मियों का सीजन फिलहाल चल रहा है। और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी इसी से संबंधित कि धान की बुआई का कहीं ना कहीं वक्त चल रहा है, और अगर इन्होंने उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जमीन तैयार कर लिया हो तो?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है
0: जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थैंक यू।
2: कि जैसे आपने अगर अपनी जो होता है खेत में रुपाई के लिए जो होता है तैयार कर रखा है, समय नहीं है अब उतना
0: जी,
2: तो आप अगर मिट्टी पलट वाले हल से नहीं जुताई कर पा रहे हैं तो मिट्टी का नमूना ले आइए और उसकी जांच कर लेते हैं। उसके जांच के अनुसार जो भी उसमें कमियां होंगी वो संतुति कर दी जाएंगी और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
0: कुल मिला के विजयपाल जी, आपको आपके मिट्टी का परीक्षण कराना बेहद जरूरी है। आपके सारी समस्याओं का निदान एक ही है, मिट्टी की जांच, प्लीज करवा लीजिए। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और चलते हैं इरफान शाह जी की ओर। बड़े देर से शांत बैठे हो भाई।
1: जी बिल्कुल मैम, हम लोग सवाल सुन रहे थे सर, बहुत अच्छे से हम लोग को।
0: हाँ ये तो है, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं नहीं बोलूँगी वरना हंसी आ जाएगी। आप प्लीज कंटिन्यू करें।
1: जी बिल्कुल, आते हैं अगले सवाल पे सर, कि जिंक जो है सूक्ष्म उर्वरक को जमीन में डालते या छिड़काव करते समय धान की जो फसल पर है कितना छिड़काव करें? मतलब
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने, क्योंकि धान का हमारा सीजन भी चल रहा है
1: जी, बिल्कुल सर।
2: और इस समय किसान बंधुओं के लिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपका है
1: जी, बिल्कुल सर।
2: हाँ किसान बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिंक एक हमारा ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसको बहुत सारे लोग जो होता है नज़रअंदाज कर देते हैं, यूरिया डीपी और पोटास में ही पड़े रहते हैं, जबकि जो हमारा ये जिंक है इसका पौधे की ग्रोथ में, वृद्धि में और कल्ले जो निकलते हैं धान में

0: इससे कि एक आपके खेतों में किसान बंधु आप सभी लोगों ने देखा होगा एक बीमारी लगती है खैरा रोग जिसको झुलसवा रोग बोलते हैं। वो किसान बंधुओं जिंक की ही कमी से लगता है और जिस भी खेत में लग जाता है वो रोग वो उत्पादन को आधा कर देता है क्योंकि फसल हमारी झुलस जाती है और जब फसल हमारी झुलस जाती है जगह जगह धब्बे पड़ जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं कर पाती है। जब पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो निश्चित रूप से किसान बंधुओं जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा, जो अनाज का जो ग्रेन का डेवलपमेंट है दाने का वो भी प्रभावित होगा। तो इसलिए जब भी आप धान की फसल की बुआई कीजिए उसमें जिंक का ज़रूर प्रयोग कीजिए। हो सके तो ज़मीन आप ज़्यादा करके ज़मीन में छिड़काव कीजिए। अगर आपके खेत में छिड़काव करते समय नहीं ध्यान दिया या जिंक आपने छिड़काव नहीं किया है उस स्थिति में आप अपने खेत में जिंक का छिड़काव भी कर सकते हैं। उस और जो छिड़काव करेंगे वो करीब 10 दिनों में 2% का घोल बनाना रहता है जिंक का, तो उसी 2% के घोल से आप छिड़काव कीजिए, जो कि अभी हमने यूरिया के बारे में भी बताया था। तो निश्चित रूप से आपके खेत में ये जो झुलसा की प्रॉब्लम आती है ये भी नहीं आएगी और खेत में कल्ले भी बढ़ेंगे प्रति प्लांट। जब पौधे में कल्ले की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन भी अच्छा होगा।
1: क्या बात है भाई, और उत्पादन बढ़ाने के लिए ही तो हमारे एक्सपर्ट महोदय हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और सर चलते चलते एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या बुआई के दौरान ही हमें सारे फास्फोरस का छिड़काव करना चाहिए?
0: हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है
1: जी सर।
0: हाँ, बहुत सारे किसान बंधु हमारे ऐसे हैं जो DP का प्रयोग बुआई के बाद में खड़ी फसल में भी करते रहते हैं। किसान बंधुओं मैं आपको बताना चाहूँगा कि फास्फोरस के लिए हम DP का चुनाव करते हैं, DP को खेत में डालते हैं और हमारी जो DP है उसमें 46% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होती है। तो अगर हम अपनी फसल में जब हम फसल की बुआई करते हैं उस समय अगर हम DP का प्रयोग करते हैं अपने खेत में तो हमारे खेत का जो पौधा होता है उसकी जड़ों का अच्छा विकास होता है। जब पौधे की जड़ों का अच्छा विकास होगा तो पौधे का भी अच्छा विकास होगा। और दूसरी बात ये है कि जो जिंक ये जो हमारा फास्फोरस है ये जितना ज़्यादा यूरिया चलनशील होती है घुलनशील होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है फास्फोरस। फास्फोरस बहुत ही एक्टिव होता है, ये जैसे ही ज़मीन में जाता है आयरन से एल्युमिनियम से रिएक्शन करके बॉन्डिंग करके रुक जाता है। तो इसलिए जब हम इसको बुआई के समय प्रयोग करेंगे और इसको ये धीरे धीरे घुलता है तो धीरे धीरे पौधे को मिलता रहेगा। पूरी फसल चक्र में जो पौधे हैं 25-30% ही फास्फोरस का प्रयोग कर पाते हैं, बाकी फास्फोरस अघुलनशील मतलब घुलता ही नहीं है, अघुलनशील कि उसमें स्थिति में ज़मीन में पड़ा रहता है वो दूसरी फसल को मिलता है। तो इसलिए जो भी फास्फोरस होता है जो DP के माध्यम से देते हैं तो वो जब हम बुआई करें तभी प्रयोग करें। नहीं तो आप किसान बंधु अपने खेत में देखते होंगे कभी कभी आप लोग DP का छिड़काव कर देते होंगे, एक दो हफ्ते के बाद में अपने खेत में टहलते होंगे तो जो 18% यूरिया होती है उसमें से वो तो पौधों को मिल जाती है और जो DP के कण हैं वो ज़मीन पर जैसे के तैसे पड़े नज़र आते हैं, वो महीनों तक जैसे के तैसे पड़े रहते हैं। इसलिए जब भी आप फास्फोरस मतलब DP का प्रयोग करें बुआई के समय ही करें और मिट्टी में जाए, अगर आप मक्की की फसल कर रहे हैं तो उसके कूट में जो होता है सीड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो उसके माध्यम से दीजिए, कूट के माध्यम से दीजिए। अगर नहीं उससे कर रहे हैं छिड़काव विधि से कर रहे हैं तो सारा फास्फोरस आप बुआई के समय ही सारी जो DP की मात्रा है वो बुआई के समय ही प्रयोग करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से एक सवाल को रोकते हुए उसकी बहुत ही डीपली जा करके सारे सवालों का जवाब हमको दिया, और आप यहाँ तक आए बलरामपुर से, अपना कीमती वक्त हमको दिया, हमारी पूरे परिवार को दिया, यानी

0: ज्ञान स्थली परिवार को दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम
0: जी। हमारे बीच में बने रहे चैट बॉक्स में आई लव गुंडा जी, और इसके अलावा विजयपाल यादव जी ने भैया बोल दिया है इतनी अच्छी जानकारी दिलवाने के लिए। बहन आकांक्षा जी व इरफान सर और साथ ही साथ में एक्सपर्ट महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। कमल नैन जी भी हमारे साथ बने हैं और लिखते हैं गुड इवनिंग आरजे मैम, गुड इवनिंग आरजे इरफान शाह जी और एक्सपर्ट महोदय को भी हमारा नमस्कार। नमस्कार आपको भी। और अब हमारे चलने का वक्त हो गया है। उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जाते जाते एक सुझाव फिर से देती हुई जाऊंगी। एक हफ्ते बाद जस्ट सर एक दफा फिर से बता दीजिए कि मृदा कार्ड के बारे में, ताकि हाँ
1: किसान बंधुओं लगभग एक हफ्ते के बाद में भारत सरकार की योजना आ जाएगी जिसमें निशुल्क मिट्टी की जांच होगी और हर ब्लॉक से कुछ न्याय पंचायत के जो गांव हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे और उन गाँव से 100 मिट्टी के नमूने लिए जाएंगे। प्रत्येक किसान का एक नमूना लिया जाएगा, उसकी निशुल्क जांच करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण किसान भाई जानकारी मैं दे रहा था यूरिया के बारे में, मेरी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी मैम, मैं उसको बताना चाहूँगा
0: जी
1: कि यूरिया का प्रयोग जब भी किसान बंधु करें तो पूरी मात्रा में, जैसे अभी हमने डीपी के बारे में, फास्फोरस के बारे में बताया कि पूरी मात्रा जितनी है वो बुआई के समय ही कर देनी है, लेकिन यूरिया का जो प्रयोग करना है इसका प्रयोग हमको पूरी मात्रा नहीं करना है। ज़्यादातर किसान बंधु 50% आधी यूरिया बुआई के समय कर देते हैं तो उस स्थिति में बहुत सारे नुकसान होते हैं किसान बंधुओं को, क्योंकि जब हम अपने खेत में कोई भी बीज डालते हैं तो करीब 6 से 7 दिन वो ज़मीन से ऊपर आने में ही लग जाता है और 6 से 7 दिन में यूरिया अच्छी से घुल चुकी होती है और उस यूरिया का प्रयोग करते हैं घास, खरपतवार की ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और जो आपकी फसल है उसकी वृद्धि कम होती है। और जो आपका बीज होता है किसान बंधुओं, उसमें करीब 4 से 5 दिन का खाना पीना बीज में ही पौधे का होता है, वो जो बीज होता है वही उपलब्ध कराता है। तो इसलिए अब जब पहले से ही उसके पास में खाना पीना है और उस स्थिति में आप 50% आप दे रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है और खरपतवारों की ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और उस खरपतवार को निकालने के लिए आप लोग निराई गुड़ाई करते हैं और बहुत सारे जो होता रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो जब भी किसान बंधुओं आप फसल की बुआई करें तो उस समय जो आपकी टोटल डोज हो उसका 20% ही उसमें प्रयोग कीजिए खेत में, बाकी की मात्रा जब आपके खेत में कल्ले निकल रहे हों, क्योंकि जब कल्ले निकलते हैं खेत में उस समय जो होता है सबसे ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो उस समय आप जो होता है 35 से 40% अपने खेत में डालिए। और जब आपके खेत में बाल बन नहीं हो अवशेष मात्रा तब डाल दीजिए। जैसे ही बाल का निर्माण हो जाए, जैसे ही बीज का निर्माण हो जाए उसके बाद में उर्वरक आप अपने खेत में ना डालिए, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाता है फसल का कि जब फसल में बाल बन जाता है उसके बाद में जड़ें जो होती हैं वो अवशोषण का काम पोषक तत्वों का बंद कर देती हैं। अगर उसके बाद भी आप यूरिया का छिड़काव करेंगे, डीपी का छिड़काव करेंगे तो उर्वरक आपकी ज़मीन में पड़ा रहेगा, उसका निच्छालन होगा और आपका जो आय है वो भी प्रभावित होगी। तो इसलिए जो भी उर्वरकों को डालना है बाल बनते समय, कल्ले बनते समय ही प्रयोग कर लें, उसके बाद उसका प्रयोग ना करें
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और अब हमारे चलने का वक्त हो गया है, इतनी डिटेल में जानकारी आपको प्राप्त हुई, इसके लिए हमारे बीच मौजूद हमारे डॉक्टर सीएल रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आप सभी इस शो से लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ मैं चलती हूँ, लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं इसी शो के साथ में नेक्स्ट हफ्ते, जी हाँ गोधूली स्पेशल खेत खलिहान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 9125707093 और 9696746406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आदाब बाप सभी को। जी आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशलीट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला, लेकिन फिलहाल आज आरजे बीना वाला नहीं है, आज ये हमारा वाला है। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के कार्यक्रम गोंडा मैसेज मसाला में। जी हाँ, बहुत से लोग हमको दिखाई पड़ रहे हैं, और कमल नैन जी हैं, गुड इवनिंग आरजे, गुड इवनिंग इरफान शाह जी जी, और मैं साथ मुस्तफ़ा जी हैं सोदी से, तीरथ प्रसाद सोनी जी हैं, शुभ संध्या सर जी, बबीता जी को मैं देख पा रहा हूँ, और इसी के साथ मनी शर्मा जी हैं हमारे साथ। जी हाँ, आप सभी का खैर मकदम, आप सभी का इस्तकबाल। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। जी हाँ, तो आप सभी लोग आज का कार्यक्रम करते हैं भाई मोहब्बत के नाम, यादों के नाम करते हैं। कहा जाता है कि ज़िंदगी में मोहब्बत, यादें, एहसासात, यही सब कुछ तो होती हैं हमारे साथ, और अगर ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं तो ज़िंदगी ज़िंदगी होती है, नहीं तो ज़िंदगी मुकम्मल नहीं लगती, अधूरी लगती है। और इसी ज़िंदगी पर, इन्हीं यादों पर आज बातचीत करेंगे। कुछ बातें ज़िंदगी को छूती हुई और कुछ बातें यादों को छूती हुई। ज़िंदगी को छूता हुआ गीत आपने सुना, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा, यहाँ मैं अजनबी हूँ। और अब आइए आपको ले चलते हैं यादों की दुनिया में, यादों पर बातचीत करते हैं, और देखिए यादों पर हम क्या बोल सकते हैं और यादों पर कौन से गीत हैं। फिलहाल आपको याद पर एक बहुत ही प्यारा गीत सुनाते हैं, उम्मीद आपको पसंद आएगा, सुनते रहिएगा। और रेडियो गणेश 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए, और कमल जैसी आंखों वाले कमल नयन जी उपस्थित हैं, आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ, आपको भी शुभ संध्या कमल नयन जी, और अब चलते हैं अपने इस प्यारे से नगमे की तरफ।

लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: भगवान, रेणु ने मुझसे और मैंने रेणु से वादा किया है कि जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ,
1: जिएंगे तो साथ साथ।

जब याद की बदली छाती है तब आंख मेरी भर आती है, और याद ऐसा नहीं है कि ये आज कल की परंपरा है, कुछ नई चीज शुरू हुई, ये जब से दुनिया है मुझे लगता है तब से ये याद है। अगर हम धर्म ग्रंथों की ओर जाएं तो माँ सीता का जब अपहरण होता है और जब चतुर्मास लगता है तो भगवान राम को हमारी माता सीता की बहुत स्मृति आती है, और वहां पर उपमाएं भी बहुत अच्छी अच्छी दी गई। कहा कि बरसहीं जलद भूमि निराए, जथा नवहीं बुद्ध विद्या पाए। उन्होंने बताया कि देखो जब बादल धरती के करीब आ जाते हैं तो बरसने लगते हैं, और जब ऊपर रहते हैं तो उनमें अकड़ रहती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, उसके पास कुछ होता है, तो उनमें विनम्रता होती है। पेड़ों से जो फलों से लदे हुए पेड़ हैं वो झुकते हैं, और जिन पेड़ों में फल नहीं लगे होते वो तने रहते हैं। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। अगर दुष्ट व्यक्ति मीठा बोल रहा है तो समझिए नुकसान करेगा आपका। दुष्ट व्यक्ति का जिस लहजे में वो बोलता है उसी लहजे में बोले तो ठीक है, लेकिन अगर उसने प्यार से बोल दिया तो समझिए गड़बड़ है। रावण जब मारीच के पास पहुंचा और कहा मामा प्रणाम, मारीच समझ गया आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, दुष्ट ने हाथ जोड़ लिया है। फिर उदाहरण आता है कि दामिनी दमक रही घन माही, खल कै प्रीत जथा थिर नाही। बिजली चमक रही है आसमान में, बरसात का समय है, कभी यहां चमकी कभी वहां चमकी, कहां कभी वहां चमकी। उसी प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं उनका प्रेम होता है, वो एक जगह पर टिकता नहीं है, वो अस्थाई होता है, कभी इनसे कभी उनसे कभी उनसे, कभी ये अच्छा लगा कभी वो अच्छा लगा कभी वो अच्छा लगा। और एक पंक्ति जो बहुत छूती है हमारे दिल को कि बूंद अघात सहाई गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जब बरसात होता है, जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें गिरती हैं, और जब कोई दुष्ट व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति को कुछ बोले तो उसको उसी प्रकार से बर्दाश्त कर लेना चाहिए जिस प्रकार से पहाड़ पानी की बूंद को स्वीकार कर लेते हैं। चलो भाई तुम्हारी कितनी हिम्मत है, छोटी सी हो और इतनी ही आपकी हिम्मत है, आप जितना चोट पहुंचा सकते हो उतना पहुंचाओ। तो बारिश की बूंदों से पहाड़ का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वहीं पर वर्णन आता है कि सीता की बड़ी स्मृति, सीते की बहुत याद आती है, स्मृति होती है उनकी। तो ये जो याद है साहब, मुझे तो लगता है कि ये इंसान की जिंदगी का आधार है। अगर याद न रहे तो फिर यादों का सिलसिला हम आपके साथ बनाए रखेंगे, छोटी छोटी कहानियों के साथ, कुछ उदाहरण के साथ। फिलहाल आपको याद पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं मुकेश और लता की आवाज़ में। जी हाँ, फिल्म का नाम उमर कैद और थीम वही याद।

जी हाँ, याद न जाए बीते दिनों की, क्या बताएं साहब, यही तो याद है। जीवन की इस चादर में सांसों के ताने बाने हैं, जीवन की इस चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सिलवट है, खुशियों के फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर जाने क्या मन में ठाने हैं, चाहे जितना भी जतन करो भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। जी हाँ, समय से पहले और नसीब से ज्यादा न किसी को कुछ मिला है न किसी को कुछ मिलेगा। और इंसान घमंड भी करे तो किस बात का करे साहब, समंदर को बड़ा गुरूर था कि वो सब कुछ डुबा सकता है, तभी उसमें तेल की एक बूंद आकर गिर पड़ी। पूरा समंदर का पानी मिला दिया जाए, वो पूरे समंदर का पानी मिलकर भी तेल की उस बूंद को नीचे नहीं कर सकता, वो बूंद तेल के ऊपर ही तैरेगी। मतलब इतना विशाल समुद्र एक बूंद तेल को अपने भीतर समा नहीं सकता, तो काहे का गुदूर। तो ऐसी स्थिति में जो जिंदगी होती है साहब, उसमें गुरूर फबता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और बशीर भट्ट ने कहा था कि गुरूर उस पे बहुत सजता है, मगर कह दो इसी में उसका भला है, गुरूर कम कर दे। तो क्या बात है भाई, मैं सर दीपांशी त्रिवेदी भी जुड़ चुकी हैं और पूछ रही है कौन है यार, धर्मेंद्र मोहन जी, आ हाँ क्या बात है, गुड इवनिंग तीन बार हमारे ही अंदाज में, और जी वाह नाइस सॉन्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीपांशी जी, मनुष्य हैं शायद वही इस तरह के सॉन्ग बजाते हैं, बहुत बहुत सुंदर, क्या बात है, मतलब क्या बात है दीपांशी जी, मतलब इस तरह के गीत जैसे हमको लग चुका है कि रेडियो गणेशली 89.6 FM की एक मेरी सिग्नेचर पहचान हो चुकी है कि अगर पुराने गीत बज रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ही बैठे होंगे, तो इस तरह के गीत हम ही बजाते हैं। चलिए भाई, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, इस स्नेह के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं फिर यादों की तरफ, आइए एक याद को जोड़ता हुआ एक गौर गीत आपको सुनाते हैं, बस आवाज आपकी पहचानिएगा किसके है, हम सब कुछ क्यों बताएं। फिलहाल आइए याद को छूता हुआ एक गीत

जी क्या बात है भाई, हमारी बहुत ही प्यारी श्रोता दीपांशी जी आपको पहले तो प्रणाम करते हैं। और लिख दिया उन्होंने, शायद ये लता जी हैं, बिल्कुल लता जी हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर लिख दिया, लता जी और रफी साहब ने गाया है इस वाले सॉन्ग को। क्या बात है भाई दीपांशी जी, आपकी परख को प्रणाम करते हैं। क्या बात है, खुद से यूं शर्मिंदा होना पड़ता है, खुद से यूं शर्मिंदा होना पड़ता है, मरते मरते जिंदा होना पड़ता है। खुद से यूं शर्मिंदा होना पड़ता है, मरते मरते जिंदा होना पड़ता है। जीवन ऐसे नाच नचाता है हमको, जीवन ऐसे नाच नचाता है हमको, बेमन से गोविंदा होना पड़ता है। आप नाचना चाहें या ना चाहें, लेकिन जिंदगी आपको नचा देगी साहब, यादें नचाती हैं। सुनाता हूं आपको एक कविता की, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की थी दीवानी सी। इसमें कहानी है, और जब इस कहानी की अंतिम पंक्ति पर हम पहुंचेंगे तो आपका हृदय धक से होगा। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पर नकाब रखती थी, एक लड़का उसे देखा करता था। वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पर से ये नकाब तो हटाओ। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे से ये नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मिलना हो, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए। मैं उस दिन अपने चेहरे पर से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। नहीं मिली तो लड़की लड़के के घर गई। पड़ोसियों ने उस लड़की को बताया कि उस दीवानी की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी, यानी बरसात हो रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने 2 शर्त रखी थी, जिस दिन अपनी पहली रात होगी और आसमान से बरसात होगी। आज दोनों था। बरसात भी हो रही थी और हवा आई और नकाब हट गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र से आवाज आई, तभी कब्र से आवाज आई, अब पंक्ति आपके दिल को छूने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी कब्र में से आवाज आई, ऐ दोस्त ये तो समय समय की बात है, ऐ दोस्त ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। कल मैं आपसे कहता था कि अपना चेहरा दिखा दीजिए,
तो आप नकाब में होती थी। आज आप आई हैं, आपके ऊपर नकाब नहीं है लेकिन मेरे ऊपर ये मट्टी की नकाब चढ़ दी गई है। ऐ दोस्त, ये तो समय समय की बात है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। जिंदगी है साहब, तो महसाद भाई क्या बात है, महसाद जुड़ चुके हैं। जुगल किशोर जी, शुभ संध्या मनु सर जी, और दीपांज लिखते हैं, नहीं नहीं सर, हम आपको प्रणाम करते हैं, सब आपका ही देन है ये सब। अरे नहीं नहीं, आप दीपांशी जी से नजर न लग जाए तब क्या होगा जी, बिल्कुल। अरे आइए, अब बात याद की चल रही है तो आइए फिर चलते हैं आपको यादों की ओर लेकर। देखिए आपको हमारी पसंद कैसी लगती है, जरा सुनकर बताइए।

जी हाँ, यादों के सिलसिले को यहाँ तक पहुँचाया कि मरकर ही अब मिलेंगे, जीकर तो मिल न पाए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। सोचिए, जिंदगी के बाद भी इंसान याद में रहता है। हमारे साथ भाई इम्तियाज अहमद जी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग आपको। सविता शास्त्री जी चरण स्पर्श करते हैं आपका, प्रणाम करते हैं आपको। कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। और चलिए भाई, यादों का हमने आपको आईना दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि ये यादों का ये सफ़र आपको शानदार लगा होगा। पत्थरों का नगर है बचा आईना, पत्थरों का नगर है बचा आईना, कर रहा है यही इल्तजा आईना। इल्तजा मतलब विनती, निवेदन। पत्थरों का नगर है बचा आईना, कर रहा है यही इल्तजा आईना, देखकर लोग तुझको सवरने लगे, अपने किरदार को तू बना आईना। घर के आईने की कद्र घट जाएगी, लाया बाजार से घर नया आईना। घर में जब कोई नया व्यक्ति आता है, कहना नहीं चाहिए हमारे भारतीय समाज में, लेकिन जब पत्नी आती है तो जो माँ होती है वो आईना होती है हमारी। और पैसे तब भी किसी स्त्री के हाथ में पुरुष रखता था, लेकिन पहले माँ के हाथ में और अब बीवी के हाथ में। तो जब नया आईना आ जाता है तो पुराने आईने की कीमत जरा घट जाती है। घर के आईने की कद्र घट जाएगी, लाया बाजार से घर नया आईना, भेद चेहरे के खुल जाएंगे देखना, सामने जब तेरे आएगा आईना। लाख चेहरे को अपने छुपा ले मगर, लाख चेहरे को अपने छुपा ले मगर, जानता है तेरी हर अदा आईना। हर तरफ बेईमानों का बाजार है, हर तरफ बेईमानों का बाजार है, तू किसी को यहां मत दिखा आईना। आईना आईना मुझसे कहता है रुक जा जरा, आईना मुझसे कहता है रुक जा जरा, पहले खुद देख ले फिर दिखा आईना। और तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मेरा आईना मैं तेरा आईना। जी हाँ, हम एक दूसरे के आईने बनकर जी सकते हैं। जी आइए, चलते चलते आपको एक प्यारी सी लोरी सुनाते हैं और इसके पश्चात आपकी फेवरेट आरजिया जो सिंपल हो इज नॉट सो सिंपल पहुंचने ही वाली होंगी। चलिए, अब आपसे भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, आसमान वाले ने चाहा तो मुलाकात होगी बाहर एक गजल में। लेकिन चलते चलते आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं आपसे बाहर एक गजल में। फिलहाल ये लोरी आप सभी के लिए।

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में खास खास बहुत खास बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत बात और जज्बात मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और OMG लगा दीजिए ना जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, नाम आपके, यार जो सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी। क्यों, सही कहा ना मैंने। सो कैसे हैं आप सब, आज तो है थर्सडे। सो क्या आप लोग की इवनिंग भोजपुरिया रही? नहीं रही तो जरूर बताना, अगर रही तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले ऐश करो, मौज करो, हाँ मजे ही मजे। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। जुगल किशोर वर्मा जी MP से, बबीता जी गोंडा से, दीपांशी तिवारी इंडिया से, विजय पाल यादव लालू वाला की

0: लखीमपुर खीरी से, सुरेश कुमार जी चौक से, निबरजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निबरजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, राकेश वर्मा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, आप सभी का स्वागत है। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, स्टे ट्यून्ड, वेलकम इन योर शो। एंजॉय करते हैं दोस्तों बिना बिना बिना बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। टणन टण टण, हमारे पास में पहली फरमाइश है जग्गू दादा की, और हमारे जग्गू दादा मींस जुगल किशोर वर्मा जी को सुनना है गाना नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे मूवी का, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, सो हम भी आपका दामन कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप चाहेंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे, सो दामन छोड़ने ना छोड़ने वाला गाना इंजॉय करेंगे हम हमारे सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: सुर में गाना सीखिए।

कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है धड़कन मूवी के हाउ रोमांटिक गाने की, और हम एंजॉय करेंगे दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे आए हाय। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आया है बबीता जी की तरफ से, यह फरमाइश बबीता की गोंडा से। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। ओह माय गॉड, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: मैं इस गाने को सुनते सुनते उस जोन में चली गई थी और इस गाने को मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगी थी। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। दोस्तों बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी बबीता जी की गोंडा से और अगली फरमाइश हमारे पास में है दीपांशी तिवारी की। दीपांशी तिवारी को सुनना है गाना मोरनी बागा में बोले आधी रात को। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा दीपांशी तिवारी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड
1: सुर में गाना।

सो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी दीपांशी तिवारी की फरमाइश पर। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ और चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर चांदनी की, और चांदनी को सुनना है गाना हम आपके हैं कौन मूवी का। तो एंजॉय करते हैं माई ने माई मुडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, और जोगन हो गई तेरी दुलारी मंजोगी संगलागा। स्टे ट्यून्ड, ये फरमाइश है चांदनी की।

सो दोस्तों, हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना चांदनी की फरमाइश पे। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे शादियों का सीजन चल रहा है ना, ऐसे ऐसे गानों की फरमाइश आ रही है। ऐसे लग रहा है कि शादियों का सीजन चल रहा है, सब शादी अटेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और इसीलिए ऐसे ऐसे गानों की फरमाइश कर रहे हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सौरभ मौर्य, गुड़वा घाट से आपका स्वागत है। इट्स कुमार फ्रॉम MP रीवा, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निब्बू जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, और उनको सुनना है गाना अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट सदाबहार नगमा, सिर्फ और सिर्फ निब्बू जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सबीहा की, गोंडा से, और सबीहा को सुनना है गाना हवा हवाई। सो एंजॉय करते हैं। बिजली गिराने में हुआई, कहते हैं मुझको टिंग टिंग हवा हवाई हवा हवाई। सो एंजॉय करेंगे सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा, हमारी सुपर डुपर हिट सबीहा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एंड इट्स कुमार, व्हाई नॉट शेयर सॉन्ग। Oh, I love this song.

मुझको हवा हवाई और बिजली गिरा रे, मैं हूँ आई। हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना सब बीहा की फरमाइश पर। नाउ नाउ नाउ नाउ नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। सो क्या आप सभी तैयार हैं? क्या हमारी महफिल तैयार है अगले नगमे की पेशकश के लिए? हाँ जरूर बोलिएगा। आप सभी के हाँ का आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को है बेसब्री से इंतजार। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सुनीता मौर्य जी गोड़ाघाट गोंडा से स्टे ट्यून्ड। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और उनको सुनना है गाना मेरी उम्र के नौजवानो दिल न लगाना ओ दीवानो। आहा सो एंजॉय करते हैं सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा। आहा मुमताज अंसारी जी की।

हाँ, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नंग में बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। तो क्या आप सभी तैयार है हमारी आज की अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए? बढ़ेंगे बढ़ेंगे, सब्र करो, पहले एंजॉय तो कर लें, वेलकम तो कर लें। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। तुलसी श्याम और मुस्तफा जी सऊदी से आप दोनों का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल। सो कैसा लग रहा है आज का गाना? हर एक फरमाइशी गीत आप सभी को जरूर चैट बॉक्स में बताना, क्योंकि चैट बॉक्स में मुझे बहुत सन्नाटा दिख रहा है, और जब मुझे चैट बॉक्स में बहुत ज्यादा सन्नाटा दिख रहा है, बहुत कम हलचल दिखती है ना, तो मेरे दिमाग में हलचल कम होती है, और फिर मेरे दिमाग में जब हलचल कम होती है ना, तब मेरी जुबान पे भी हलचल कम होती है, और जब मेरी जुबान पे हलचल कम होती है ना, तो फिर शो में हलचल कम होती है, और फिर जब शो में हलचल कम होती है ना, फिर मजा नहीं आता है ना दोस्तों। सो इस एंटरटेनमेंट को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा तो गपशप करो ना चैट बॉक्स में, थोड़ा सा तो नाचो कूदो ना, थोड़ा सा जो मन वो करे दिल भेज दो किसी के लिए, टूटा दिल भेज दो किसी के लिए, पार्टी वाला इमोजी भेज दो, रोने वाला इमोजी भेज दो, हंसने वाला इमोजी भेज दो, लेकिन भाई कुछ तो करो ना, ऐसे नहीं अच्छा लगता। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू सलमानी जी की आवाज विकास गोंडा से, और उनको सुनना है गाना जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर। वैसे मुझे आधी रात में मजा आता है, लाइक मुझे दिन नहीं पसंद है, ऐसा लगता है कि सूरज की रोशनी आंखों में छुपती है, लेकिन जैसे ही सनसेट होने लगता है, सूर्यास्त होने लगता है, ऐसा लगता है कि वाओ सिंपल गुड मॉर्निंग, नाउ डू योर वर्क, स्टे एक्टिव। सुनाओ स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

आजा मेरी बाहों में सोजा रख के सर, हमने एंजॉय किया है ये गाना राजू सलमानी जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगली वाली डिमांड की तरफ। एंड दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना महबूब सनम तुझे मेरी कसम। कसम उसम कुछ नहीं होता है ना, जिसको जो नहीं करना होता उसने नहीं करना है, वो फिर चाहे कसमें दो फिर चाहे ये बोल दो कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, या फिर ये बोल दो कि अरे झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। मैं मायके, वही तो गाना है ना, मैं तो पागल हूँ दोस्तों। मुझे लगा दो अलग अलग गाने, अलग अलग राइमिंग थी, फिलहाल गाना वही है, मतलब वही है। और मेरा भी कहने का तात्पर्य बस इतना है कि नहीं, ये कस्मे वादे बने ही इसीलिए हैं कि इनको इंसान इंसानी से पहले करके, कस्मे वादे अच्छे से करके फिर उसको तोड़ दिया जाए, फिर मजे किया जाए, वाह वाह भले भले। बस एक एक्सक्यूज का तरीका होता है सो किसी की बातों में नहीं आने का, किसी की कस्मों पर, किसी के वादों पर विश्वास नहीं करने का। एंजॉय करते हैं फिलहाल सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड।

0: नजरों से।
1: तो दोस्तों बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राकेश वर्मा के बेटे कृष्णा वर्मा की, और राकेश वर्मा के बेटे कृष्णा वर्मा को सुनना है गाना छतरी ना खोल बरसात में और भीग जाने दे आधी रात में। वैसे कल आधी रात में कितनी बढ़िया बारिश हुई थी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया था। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और इसी फरमाइशी गीत की उस तरफ चलेंगे दोस्तों हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं सीधे 9 बजे। एंजॉय करते हैं कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर ये वाला।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

0: क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit will provide an opportunity.
3: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
2: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
1: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
4: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
6: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
5: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
7: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता।

0: मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सऊदी से मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है गाना दीवानगी दीवानगी। सो एंजॉय करते हैं ओम शांति ओम मूवी का ये वाला गाना मुस्तफा जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, मनीष शर्मा फ्रॉम खोरासा गोंडा, स्टे ट्यून्ड। अगर बॉलीवुड के पुराने सभी चेहरों को याद करना है आपको, तो एक बार बस दीवानगी दीवानगी ये गाना ओम शांति ओम मूवी का सुन लो, आपको सारे के सारे लगभग चेहरे दिख ही जाएंगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर।

एंजॉय किया है ये दीवानगी दीवानगी ओम शांति ओम का गाना। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। ये फरमाइश अभी हमने एंजॉय की है मुस्तफा जी की सऊदी से, और गोंडा से अब एंजॉय करेंगे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश। उनको सुनना है गाना बंद आंख से देख तमाशा। सो एंजॉय करते हैं फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा किशोर कुमार जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ हमारे राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आने वाला गाना हमने एंजॉय किया है, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का, परवरिश मूवी का ये गाना था और एंजॉय किया है ये गाना हमने मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों वायु नंदन द्विवेदी की, और उनको सुनना है गाना क्या तुम्हें पता है ये गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। सो एंजॉय करते हैं ये गाना वायु नंदन द्विवेदी की फरमाइश पर, और उनका कहना है कि मैम जी हम बहुत सारे लोग बैठकर आपका गाना सुन रहे हैं, और प्रेजेंट टाइम में मैं नाइजीरिया में हूँ, और नाइजीरिया से मैं आपका ये रेडियो सुन रहा हूँ, आपका ये शो सुन रहा हूँ, और कल मेरा इंडिया वापसी है। सो एंजॉय योर जर्नी, टेक केयर, और एंजॉय करते हैं ये वाला गाना वायु नंदन के लिए और उनके सभी दोस्तों के लिए। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कलियां ना बिछाना, राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। और क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे साजन आने वाले हैं। हमने एंजॉय किया है दिल है बेताब का ये गाना अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में। नाइजीरिया से वायुनंदन द्विवेदी की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से। मनीष शर्मा को खुरासा गोंडा से सुनना है गाना इश्क वाला लव। तो एंजॉय करते हैं ये नीति मोहन और सलीम मर्चेंट का गाना सिर्फ और सिर्फ हमारे मनीष शर्मा की फरमाइश पर जो की है खुरासा गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

वाला लव। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मनीष शर्मा की फरमाइश पे, जो कि है खुरासा गोंडा सेना। और लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, इट्स कुमार की एमपी रीवा से। इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना इट्स कुमार की फरमाइश पे, जो कि है एमपी रीवा से। और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो कैफ मोबाइल वाले गोंडा से, स्टे ट्यून्ड। और एंजॉय करते हैं आखिरी फरमाइश, कहती हूँ अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन आपके अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कभी नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्यों? क्योंकि कल मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये देसी गाना। इस देसी गाने को आप सभी के साथ में एंजॉय करके और इस गाने में अपनी ये सुरीली आवाज थोड़ी सी मिक्स करके आप लोग के साथ में थोड़ा और एंटरटेनमेंट करके फिर मैं जाना चाहूंगी। बाय बाय, स्टे ट्यून।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
12: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
13: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
14: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
13: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशलीट 9.6 एफएम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशलीट 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और जी, कार्यक्रम चल चुका है बहारे गजल, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। जी, और आज जिस शायर को हम लेकर आए हैं, उनका नाम है राजेश रेड्डी। उर्दू की दुनिया का एक नाम जिसने अपनी एक मुख्तलिफ पहचान बनाई, एक अलग पहचान बनाई। दुबई तक उनको बुलाया जाता है उनकी गजलों को, उनके शेर को सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। और अजब ये सैर है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है पल रिहा होने से डरता है। तो इंसान चाहता है कोई कभी कि हे भगवान अब उठा लो, लेकिन जब मौत सामने आती है तो कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। जी हाँ, ये है राजेश रेड्डी साहब का रंग। आज उन्हीं के साथ सफर करेंगे, गजलें सुनाएंगे आपको, और बात करेंगे राजेश रेड्डी साहब की। एक दक्षिण भारतीय होने के बावजूद इतनी शुद्ध हिंदी और उर्दू का उच्चारण, उनका जो प्रोनंसिएशन, उनका जो तलफ्फुज़ है, वो बहुत शानदार है। और हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं, क्या बात है, कैफ मोबाइल गुंडा से। गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या आपको भी भाई, शाम का सलाम कबूल करें आप। और सचिन शुक्ला जी हैं, राधे राधे सर जी, मनु जी जी राधे राधे आपको भी। दीपांशी तिवारी जी हैं, कबूल करते हैं सर जी, जी कबूल कीजिए आप, अच्छा है। और मैं बोलूँगा, भेद आपके खोलूँगा, 29 का नाम पता नहीं, एक वाइफ का नाम आज आपके सामने बोलूँगा, मतलब समझ नहीं पाए ये इस कुमार जी आपको क्या हो गया, ये आप किसकी बात कर रहे हैं, हम समझ नहीं पाए, मतलब ये 29 का नाम, एक का नाम, ये कुछ हमें समझ में जरा कम आया, जरा इसको बताइए कि ये आप क्या कह रहे हैं। और हमारे साथ मनीष शर्मा जी भी उपस्थित है भाई, और धर्मेंद्र मोहन जी, क्या बात है भाई। और तो ये है राजेश रेड्डी, जिंदगी का सफर है साहब, और जिंदगी का सफर है, एक एक कदम करके हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे चलते हुए एक ना एक दिन सब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। किसके रोने से कौन रुका है कभी यहाँ, किसके रोने से कौन रुका है कभी यहाँ, जाने को ही सब आए हैं सब जाएंगे, चलने की तैयारी ही तो बस जीवन है, कुछ सुबह गए कुछ डेरा शाम उठाएंगे। तो ये जिंदगी है साहब, चलती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी जी। और जिस कुमार जी लिखते हैं 30 है ना आपकी, मतलब 30 समझने पर, 30 गजलें हमारी हैं, 30 गीत हमारे हैं, मतलब 30 क्या, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। कुमार जी क्षमा कीजिएगा, हम आपकी बात को जरा कम समझ पा रहे हैं कि 30 गजलें हमने लिखी हैं, या 30 शायरी लिखी है, 30 कविताएं लिखी हैं, ये 30
में हम कुछ क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, और लगता है कि आपको थोड़ी सी गलतफहमी है कहीं कुछ, तो भाई अब क्या है, हम क्या जाने भाई। चलिए फिलहाल जिंदगी का सफर आहिस्ता आहिस्ता काटते हैं, और जी हाँ बहुत ही प्यारी सी गजल, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता।

जी चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। प्रशांत सोनी जी उपस्थित हमारे साथ, शुभ संध्या मनु सर आपको भी शुभ संध्या, और दीपांशी जी आप क्या कह रही हैं, मतलब हम बहुत शरीफ आदमी हैं और इस प्रकार के कमेंट्स आपको हम जैसे लोगों पर नहीं करने चाहिए, और कहीं गलतफहमी हुई है आपको दीपांशी जी, इसको दूर कीजिए। और मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं जी बिल्कुल, और बेहद संजीदा, और क्या बात है भाई, बेहतरीन आवाज़ की मल्लिका हमारे साथ उपस्थित हो चुकी हैं नेहा जी। जी शुभ संध्या आपको भी, आदाब करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ इस शनिवार को सुनने को मिलेगी, फिलहाल बुधवार को नहीं मिली थी। और इस कुमार लिखते हैं एक एहसास ही तो है मेरे पास, बाकी सब बकवास है। बिल्कुल सही बात है भाई, मनीष शर्मा जी ने बहुत सारे फूल हमको भेज दिए। दोपहर में गोंडा में मौसम सुहाना था, यहाँ धूप थी, अब वहाँ बादलों का झमघट है, क्या बात है। और इम्तियाज जी हमारे साथ है भाई, शुभ संध्या आपको भी, गुड इवनिंग जी, आदाब करते हैं आपको, हम भी यहाँ आए हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी आप कभी आपने महसूस किया होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है। हम पढ़ रहे थे किसी पुस्तक में, तो उन्होंने लिखा कि शिशु जो माँ के पेट में रहता है, जो बाहर निकलता है और दुनिया को देखता है तो वो कहता है क्या क्या, जिसका अर्थ होता है कहाँ आ गए कहाँ आ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता आता है, फिर समझ में आता है अच्छा ये दुनिया है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को महसूस करती है 9 महीने पहले, और बच्चा बाहर निकलता है तो कहता है क्या क्या, उसके मुंह से निकलने वाली पहली ध्वनि। और आध्यात्मिक लोग बोलते हैं कि उसका मतलब होता है कहाँ आ गए कहाँ आ गए। जी और इसके बाद लिखते हैं कौन आएगा दोबारा दीदारे जिंदगी को, जिंदगी भी धन्य होगी हमें पाकर। बिल्कुल भाई धन्य हो जाएगी। कैप मोबाइल जी हैं, छोटा बच्चा समझ के हमको आग, अच्छा अच्छा ये भाई वो है। और डॉक्टर लव है वो, हाँ हाँ वो कोई है, मतलब हमने भी सुना है भाई, उनके पास हैं भाई, वो पुरुष नहीं है बल्कि वो तो महापुरुष हैं, और हम उनको भी प्रणाम करते हैं, यहाँ एक नहीं संभाले संभल रही है, और सुना है कि उनके पास। जी जिंदगी हाँ मददगार की जरूरत है मुझे, मैं मददगार हूं, हाँ मददगार की जरूरत है, छत हूं दीवार की जरूरत है, हाँ मददगार की जरूरत है, छत हूं दीवार की जरूरत है, आपकी नफरतें बताती हैं, आपकी नफरतें बताती हैं आपको प्यार की जरूरत है। अरे तुम तो लफ्जों से मार देते हो, तुम तो लफ्जों से मार देते हो, तुमको हथियार की क्या जरूरत है। इस दुनिया में कुछ लोग लफ्जों से मार देते हैं साहब, तुम तो लफ्जों से मार देते हो, तुमको हथियार की क्या जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुझे, जीत ने अंधा कर दिया है तुझे, तुझको एक हार की जरूरत है। मैं भी एक बार जरूरी था उसे, मोहब्बत पर तंज कसने की विधा देखिएगा कि एक कोई मोहतरमा है जिनके लिए, मैं भी एक बार जरूरी था उसे, मेरी आवश्यकता थी उनको, तू भी एक बार की जरूरत है। इश्क तो एक से ही होता है, अरे इश्क तो एक से ही होता है, तुझको क्या चार की जरूरत है। जी हाँ जिंदगी में एक इंसान से, मुझे लगता है एक जिंदगी में एक इंसान से इश्क कर लेने में जिंदगी कम पड़ जाती है, सच देखिए तो आपको क्या चार की जरूरत है। और इंसान कहता है कि भाई अगर आपको दोबारा कोई काम करना पड़ जाए तो आप क्या काम करेंगे,
बहुत सीधा सा प्रश्न पूछा गया। तो हमने कहा कि इत्तेफाक कर लिया, बस देखते रहने पे तुझे, यानी मेरे लिए इतना ही बहुत है कि हम आपको देख पाए। इत्तेफाक कर लिया बस देखते रहने पे तुझे, वरना तू जिसका मुकद्दर हो वो क्या कुछ न करे। अगर दूसरी बार भी पड़ जाए कुछ करना, अगर दूसरी बार भी पड़ जाए कुछ करना, आदमी पहली मोहब्बत के सिवा कुछ न करे। अगर इंसान को दोबारा कुछ काम करना पड़ जाए तो मैं दावा करता हूँ कि वो पहली वाली मोहब्बत फिर करेगा जी। मतलब जो दिल से, आत्मा से, जिसको रूहानियत वाली मोहब्बत बोलते हैं, वो इंसान दोबारा करना चाहेगा। जी हाँ भाई, और धर्मेंद्र मोहन जी हैं, और इसके पश्चात भाई मनीष शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित है। क्या बात है भाई, और आप क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मनीष सर जी प्लीज रिक्वेस्ट है, ये देखिए हम पे करने वाले थे। अरे नहीं सर, हम किसी के कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं कि भैया ने कहा था आपको बचपन का कोई सॉन्ग भेजना हो तो वही बता रहे हैं, हम किसी पर गलत कमेंट। अरे हम जानते हैं बिटिया, आप हमारी बेटी जैसी हैं, आप कैसे कर सकती हैं, बिल्कुल हो नहीं सकता। और सविता शास्त्री जी हैं, दीपांशु जी को सादर नमन किया है, देखिए आपको आशीर्वाद दीजिए आप। और सविता शास्त्री जी चरण स्पर्श करते हैं आपको, शुभ संध्या। वास्तव क्या बात है, लफ्ज़ों के तीर ही हैं जो कभी वापस नहीं आते, और इसका जख्म ता जिंदगी नहीं भरता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहती हैं मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं भाई। क्या बात है, धर्मेंद्र मोहन जी हैं, जितने लोग ब्लैक नहीं हुए उनको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, और जो ब्लैक हो गए उनको ब्लैक दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है भाई ये। और प्रबल मिश्रा जी, अरे वाह भाई, बल नहीं बल्कि प्रबल, मतलब बल बुद्ध विद्या देहु, मैं सादर नमस्कार आपको। प्रणाम आपको प्रबल जी, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और लखनऊ से आप वापस आ चुके होंगे, तो चलिए अब जिंदगी है साहब। मुझसे कोई पूछता है कि जिंदगी क्या है, तो हम कहते हैं संघर्ष।

फिर स्टूडेंट्स बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि सर जी अगर संघर्ष है तब तो जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। हमने कहा नहीं, जीने का मज़ा आएगा, बस लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। संघर्ष लिखो तो बच्चों ने लिखा सा, सा के ऊपर बिंदी, घास, फिर शा के ऊपर रा। हमने कहा नहीं, देखो इसको एक तरीके से और लिखा जाए, संग प्लस हर्ष। संग मतलब साथ, हर्ष मतलब प्रसन्नता। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। अगर ये सत्य है कि दुख अपना साथी है तो दुख को अपना लेने में क्या जाता है। जिंदगी जो दे उसे हंसकर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप रोकर भी लेंगे तो वो देकर जाएगी आपको। तो संग प्लस हर्ष बराबर संघर्ष। और दूसरा नाम जिंदगी का है इम्तिहान। मेरे हिसाब से जिंदगी इन दो चीजों में सिमट कर रहती है, या तो जिंदगी में संघर्ष होता है या तो जिंदगी इम्तिहान लेती है। जी हाँ, जब इम्तिहान लेती है तो चलिए आइए जगजीत सिंह की मखमली सी आवाज में देखते हैं कि इम्तिहान कैसे लेती है जिंदगी। सुनते रहिए रेडियो गणेशलेट 9.6 एफएम, है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल जगजीत सिंह साहब की मखमली आवाज में आप

जी, एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बात चल रही है राजेश रेड्डी की, और अभी मैंने बात की थी इम्तिहान की और संघर्ष की। किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे, गया तो आज का दिन भी उदास करके मुझे। सोचिए, कभी कभी होता है साहब तकदीर साथ नहीं देती, लेकिन हमको अपना कर्म करना चाहिए। एक घर में एक बार आग लगी, लोग पानी ले लेकर बुझाने लगे। आपने गांव में देखा होगा, पहले फूस के घर बहुत होते थे तो आग लग जाया करती थी। तो एक चिड़िया थी छोटी सी गौरैया, वो भी जो है वो तालाब वहां पर था, तालाब में जाती थी, अपनी चोंच में पानी भर लाती थी और मकान के ऊपर छोड़ती थी। तो दूर एक बैठा बाज उसको देख रहा था, तो उसने चिड़िया से कहा कि तुम्हारी इस चोंच भर पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी।

बनने से बेहतर है हम जो कुछ अपना 2-4-5% दे सकें, दो बूंद भी गिरा सकें, जिस लायक हम हैं हम वो काम करें। तो वो फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ऊपर फर्क पड़ता है। अगर मैंने इस घर को जलते हुए देखा और जो मैं कर सकती थी बूंद भर भी पानी अगर वो नहीं ला पाई मैं, तो मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी होगी कि हम कर सकते थे जो वो भी नहीं किया। हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं, हम आप हों, कि यार हमारे करने से क्या होता है, करने से क्या होता है। नहीं साहब, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड। पानी की छोटी छोटी बूंदों से तो समुद्र बनता है, रेत के छोटे छोटे कण से रेगिस्तान बन जाता है। तो प्यार के छोटे छोटे शब्दों से जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। कभी कभी छोटी चीज बड़ा काम करती है। कहा जाता है कि बिहारी के दोहे के बारे में कहा जाता था कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें। जी हाँ, और भाई क्या बात है भाई, आज तो हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। भाई दीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई क्या बात है भाई, दीप सिंह जी आईटीआई अयोध्या से, और प्रवल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई क्या बात है भाई, बहुत सारा स्टार्स आपने दे दिया जी। किस किस का नाम लूँ मैं, कभी जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, आए है क्या गजल चुनी आपने। और नितिन सिंह जी उपस्थित हमारे साथ। भाई मैं काफ़ी बातें करता हूँ इन प्रोग्राम में, परंतु इस प्रोग्राम में निःशब्द रहते हैं, पता नहीं क्यों, शायद ही आपके अर्थपूर्ण वक्तव्य का करिश्मा है। नहीं नहीं, देखिए इट्स कुमार जी, हम तो आप ऐसे लोगों से मिलकर सीखते हैं और अच्छा लगता है आपसे बात करके। आप काफ़ी साहित्यिक व्यक्ति हमको लगते हैं और अच्छा है, मतलब आपकी बातें हमें पसंद आती हैं। हेलो सर एंड ऑल फ्रेंड्स, नमस्ते जी। हाँ दीप सिंह जी, अगर आप इतने दिनों में आएंगे तो बताइए। मतलब चाहत शर्मा जी हमारे साथ पहली बार हैं, भाई आपको नमन करते हैं, प्रणाम है आपको। और मैं समझ लिखा है सभी को नमस्कार एवं एक लोगों को छोड़कर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, किसी को आपने छोड़ दिया होगा, शायद हो सकता है आप उसका चरण स्पर्श करना चाहते हो, नमस्कार न करना चाहते हो। और नहीं नहीं, होता है कभी कभी हम हाथ नहीं जोड़ते क्योंकि हम पैर पकड़ना चाहते हैं। और जोक्स अपार्ट, मनीष जी बड़ा मानेगा, हमने ऐसे ही कहा है। और नितिन सिंह जी हैं जी हमारे साथ, और जिंदगी खेल खिलाती है, कभी नर्वस मत होना। देखिए जिंदगी जो है ना, वो आप कहाँ पर हैं। अभी एक पंक्ति मुझको याद आ गई कि जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे। इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान का वक्त खराब हो

हाँ मैंने देखा, अभी आपको उसका रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा तो शायद आप मेरी बात से सहमत हो पाएंगे। और जी हाँ भाई, इसके पश्चात सर गर्बिया के कारण अब बाहर रह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा गर्मियों के कारण बाहर रहे, कोई बात नहीं भाई, चलिए। और आलू भुजिया रोटी नींबू भाई ये सब देखिए बेच रहे भैया, तो देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हमारे एक मित्र हैं, तो मतलब उन्होंने कुछ हमारे साथ ऐसा किया जो उनको नहीं करना चाहिए। मैंने दो लाइन उनको लिख कर भेजी थी कि दुनिया में एतबार के काबिल नहीं कोई, दुनिया में एतबार के काबिल नहीं कोई, एहसास हो रहा है तेरी दोस्ती के बाद, उसके बाद फिर कोई बातचीत नहीं हुई। और एक मजाक की बात करूं, हंसी की बात करूं, विनोद की बात करूं, तो मैं चश्मा लाया था, धूप वाला चश्मा जो होता है बड़े चाव से, मुंबई के चोर बाजार से लेकर के आए, रेबैन का मतलब

चश्मा। तो मेरे एक मित्र थे, उनको बारात जानी थी, उन्होंने कहा कि भाई यार चश्मा अपना दे दीजिए, बारात जाना है, तुमने कहा ले जाओ भाई, इसमें क्या है, लौट कर आएंगे वो दे देंगे। उन्होंने चश्मा नहीं दिया। अब मैं बहुत परेशान, कैसे मांगूं भाई, मित्रता है, छोटी चीज़ मांगना भी गुनाह है। तो मैंने चार पंक्तियाँ, क्योंकि उसमें फ़ोन वगैरह नहीं था, तो मैंने उनको चार पंक्तियाँ लिख कर भेजी। मैंने कहा कि धूप जब तेज होती है सड़क पर मैं निकलता हूँ, तुम्हारी याद आती है कलेजा थाम लेता हूँ। उन पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात वो तत्काल चश्मा लेकर मेरे घर पहुँचे। उन्होंने कहा गलती हो गई, मैंने कहा कोई बात नहीं और मतलब तुम्हारा नाम लेता हूँ तो मतलब कले तुम्हारी याद आती है कलेजा थाम लेता हूँ तो क्या कहता हूँगा, ये उनको समझ में आ गया होगा। तो मतलब हम खराब बात को भी अच्छी ढंग से कह सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था इंसान के वक्त की। महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में मिडास टच था, जो कुछ उन्होंने छुआ उसको सोना बना दिया। और वही जब सेमीफाइनल में थोड़ा सा रन आउट हो गए तो लोगों ने उनकी फूल जैसी बच्ची पर भी गंदी गालियां बक दी। सोचिए ये इंसान की फितरत है। मनुज बड़ा नहीं होता है, समय होत बलवान। इंसान नहीं बोलता, इंसान का वक्त बोलता है। हमने एक फिल्म देखी थी सौदागर, उसमें राजकुमार का जो है वो हेलीकॉप्टर खराब होता है तो दिलीप कुमार के क्षेत्र में आते हैं, तो दिलीप कुमार देते हैं, कहते हैं ले बंदूक, पूरी कर ले अपनी हसरत, चला दे गोलियां। तो राजकुमार का एक डायलॉग है वहां पर, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन उस समय वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और बंदूक से निकली गोली भी हमारी होगी। उन्होंने वक्त का इंतजार किया, अभी कि अभी ये वक्त नहीं है तुमको मारने का, वक्त आएगा तुम मारेंगे। जुबान चलने लगी, अगर आप कामयाब होते हैं ना साहब, नसीब आपका अच्छा हो तो जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। अगर इंसान का नसीब बिगड़े तो क्या होता है, जो लोग आपके सामने खड़े नहीं हो पाते थे वो आपके सामने जो है धृष्टता करते हैं। जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर जो ना आ सके लोग, हमारे कद के बराबर जो ना आ सके लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। इंसान जब आपके कद के बराबर नहीं पहुंच पाता तो नीचे से गड्ढा खोदता है ताकि आप छोटे हो जाए उसके सामने। किसी लकीर को बिना मिटाए छोटी कर देने का एक तरीका यह है, उसके नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी जाए। लेकिन हम उसी लकीर को मिटाने में लग जाते हैं। साहब ये है हमारे वक्त की बात। और जी हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, क्या डायलॉग है सर, डायलॉग नहीं बस वो याद आ गया, वक्त पर तो वक्त पर आइए। राजेश रेड्डी ने कहा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। जब तक इंसान जिएगा तब तक संघर्ष करेगा, याद रखिएगा हर इंसान, सबको लड़ना ही पड़ा अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध। जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जितनी बचनी थी बच चुकी है जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, यानी एक इम्तिहान आया उससे गुजरे, सोचे अब खुशी मिलेगी, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। जी हाँ, तो इम्तिहान पर इम्तिहान आते रहेंगे, और अगर आपकी दुआएं हमारे साथ और हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी तो हम इस लड़ाई को जीतते रहेंगे। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को। अब आपसे लेते हैं अनुमति और आसमान वाले ने चाहा तो कल मिलेंगे आपसे।
जी कल मिलेंगे आपसे गोना मैसेज मसाला में, अगर आसमान वाले नहीं चाहा तो। फिलहाल शबा खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और चलते चलते नेहा जी के पिताजी की फरमाइश को करते हैं पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सब के साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी बनारसी इश्क। कहते हैं बनारस में मौत भी आ जाए तो इंसान तर जाता है, पर अगर यहाँ इश्क हो जाए तो इंसान जीते जी मोक्ष पा लेता है। अंकुर का इश्क भी कुछ ऐसा ही था जिसने उसे बनाया भी और अंदर तक मिटाया भी। वो ठेठ बनारसी लड़का था, पॉकेट में हमेशा 100-500 रुपए, जुबान पर गुरु और महादेव का नाम और शाम को 80 घाट पर दोस्तों के साथ बैठकर दुनिया जहान की राजनीति पर बहस करना, यही उसकी कुल जमा जिंदगी थी। उसे लगता था कि इस शहर की गलियों और घाटों से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं है, पर उसका ये भ्रम तब टूटा जब वो उसकी जिंदगी में आई। वो बनारस की नहीं थी, दिल्ली से आई थी अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन के सिलसिले में। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें जो हमेशा कुछ ढूंढती सी लगती थीं, और सूती कुर्ती के साथ पहने हुए चांदी के बड़े बड़े झुमके। वो पहली बार उसे दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर मिली थी। शाम की आरती शुरू होने वाली थी, चारों तरफ भीड़ का रेला था। वो एक कोने में खड़ी होकर अपने कैमरे से गंगा की लहरों पर तैरते दियों को कैद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी भीड़ के एक धक्के से उसका पैर फिसला और उसका कैमरा सीधे पानी में जाने ही वाला था कि अंकुर ने फुर्ती से उसका हाथ और कैमरा दोनों थाम लिया। उसने घबरा कर अंकुर की तरफ देखा, उसकी सांसें तेज थीं। अंकुर ने मुस्कुरा कर अपनी बनारसी टोन में कहा, अरे संभल के जी, बनारस की सीढ़ियां और यहाँ का इश्क दोनों में पैर बहुत जल्दी फिसलता है, तनिक धीरज धरिए, हड़बड़ी में तो यहाँ कचौड़ी भी नहीं छनती। वो पहले तो झेपी फिर खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी वो हंसी कसम बाबा विश्वनाथ की लगा जैसे संकट मोचन मंदिर में सुबह की आरती के वक्त सारी घंटियां एक साथ बज उठी हों।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना उससे अंकुर की पहली मुलाकात दशाश्वमेघ घाट पर हुई। वो दिल्ली से यहाँ अपने पेंटिंग एग्जीबिशन के काम से आई थी। उसका कैमरा पानी में गिरने वाला था कि अंकुर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। अब आगे उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, थैंक यू। इस पर अंकुर ने सीना तान कर कह दिया, तभी तो गुरु, यहाँ बनारस में नजर और नियत दोनों बाज जैसी तेज रखनी पड़ती है। अगली सुबह वो उसे फिर मिल गई, इस बार गोदौलिया की एक तंग गली में। हाथ में गूगल मैप लिए परेशान खड़ी थी। अंकुर ने बाइक रोकी और कहा, अरे गुरु, काहे सुबह सुबह इस भूल भुलैया में खुद का तेल निकाल रही हैं? इस शहर में रास्ता गूगल मैप नहीं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद दिखाता है। बैठिए, आपको असली बनारस का दीदार कराते हैं। वो हिचकिचाई पर बैठ गई। अंकुर उसे सीधे रामचंद्र चौरसिया की दुकान पर ले गया। वहां खोलते तेल की कढ़ाई से छन कर निकल रही हींग वाली कचौड़ियां और ऊपर से टलने वाली वो तीखी आलू चने की सब्जी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने पहली बाइट ली तो उसकी जुबान तीखेपन से जलने लगी, उफ करने लगी। अंकुर ने तपाक से पत्तल उसकी तरफ सरकाया और कहा, अरे गुरु, ये बनारस की हींग वाली कचौड़ी है, जब तक आंख से पानी और कान से धुआं ना निकले तब तक स्वाद का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तनिक ठहरिए, इसका इलाज भी है हमारे पास। वो दौड़कर बगल के ब्लू लस्सी वाले के यहाँ से कुल्हड़ भर के गाढ़ी मलाई मार के लस्सी ले आया। ऊपर से पड़ी रबड़ी और केसर के लच्छे देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई। जैसे ही उसने लस्सी की एक घूंट ली, उसने आंखें बंद कर ली। अंकुर ने हंसते हुए कहा, कैसा लगा? ये लस्सी जो है ना, ये बनारसी इश्क जैसी ही है। पहले कचौड़ी जैसा तीखा झटका देगी और फिर लस्सी की तरह ऐसा मीठा ठंडी पहुंचाएगी कि आप अपनी दिल्ली भूल जाएंगी। ये शहर तसल्ली का है, यहाँ हड़बड़ी करने वाले का भौकाल टाइट हो जाता है। उसने अपने होठों पर लगी मलाई पोंछते हुए कहा, तुम बनारसी लोग सच में बहुत अतरंगी होते हो, हर बात में एक अलग ही स्वैग है तुम्हारा।
1: के पान बनारस वाला खाई के

इठलाती है, बल खाती है, तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो रूपवती है।

0: छोरा हो छोरा गंगा किनारे वाला हो छोरा गंगा किनारे वाला।
1: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना वो अंकुर को पहली बार घाट की सीढ़ियों पर मिली, थोड़ी बातचीत हुई, दोबारा फिर बनारस की गलियों में मिली। अंकुर ने उसे बनारस दिखाने का प्रपोजल दिया और वो मान गई। अब आगे उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जैसे सावन में गंगा का पानी बढ़ता है। उसे बनारस को अपनी कैनवस पर उतारना था और अंकुर को उसे अपना बनारस दिखाना था। वो सुबह 4 बजे उठकर सुबह बनारस देखने 80 घाट जाते। जब आसमान में लालिमा बिखरती तो वो चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती और अंकुर उसे देखता रहता। फिर वो पप्पू की चाय की दुकान पर जाते, वहां की कड़क इलायची वाली चाय और ब्रेड मक्खन खाते हुए वो अंकुर से यहाँ के इतिहास के बारे में पूछती। एक दोपहर वो BHU के न्यू वीटी के पीछे वाले लॉन में बैठे थे। पेड़ों से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अचानक अंकुर से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रह लेते हो? इस भागती हुई दुनिया में तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम पीछे छूट जाओगे? अंकुर ने सामने उड़ते कबूतरों को देखा, अपने गमछे को कंधे पर सही किया और कहा, देखो ज्यादा लोड नहीं लेने का, ये बनारस है, यहाँ वक्त भागता नहीं है, यहाँ वक्त घाट की सीढ़ियों पर बैठकर सुस्ताता है। जो किस्मत में है वो बाबा विश्वनाथ खुद ढूंढ कर दे देंगे और जो नहीं है उसके पीछे भाग के अपनी किडनी सुखाने का क्या फायदा, लाइफ में चिल रहने का, समझी? उसने अंकुर की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने हौले से अंकुर का हाथ पकड़ा और बोली, काश मैं भी तुम्हारी तरह सोच पाती। उस पल उस ठंडी हवा के बीच अंकुर को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रह गया था, वो अंकुर का बनारसी इश्क बन चुकी थी। बनारस का इश्क सिर्फ हंसने गाने का नाम नहीं है, इसमें एक वैराग्य भी है। एक शाम वो दोनों नाव में बैठकर मणिकर्णिका घाट के सामने से गुजर रहे थे। दूर चिताओं की लपटें आसमान को छू रही थीं। पानी में उन लपटों का अक्स तैर रहा था। उसने डरकर अंकुर के कंधे पर अपना सिर रख दिया और धीरे से बोली, यहां आकर जिंदगी और मौत का अंतर कितना कम लगने लगता है ना? अंकुर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, यही तो इस शहर का जादू है गुरु, यहाँ मौत भी एक उत्सव है। दुनिया जहाँ जाकर खत्म होती है, बनारस वहाँ से शुरू होता है। इसीलिए जब तक जिंदगी है उसे खुल कर जी लो। इस पल में मैं हूँ, तुम हो और ये गंगा जी हैं, बाकी सब तो माया है। आज है

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना गंगा घाट के किनारे अंकुर और वो मिले। वो दिल्ली से आई थी, अंकुर ने उसे पूरा बनारस घुमाया और उन दोनों के बीच दोस्ती से कुछ बढ़कर हो गया। अब आगे एक शाम उन्होंने एक बूढ़े मल्लाह की नाव किराए पर ली। नाव दशाश्वमेघ घाट से खुली और 80 की तरफ बढ़ने लगी। सूरज डूब रहा था और गंगा का पानी तांबे के रंग जैसा चमक रहा था। उसने बिना अंकुर की तरफ देखे कहा, बनारस एक जादुई आईना है, यहां इंसान अपनी असलियत देख लेता है। तुमने मुझे उस सच से मिलवाया जिससे शायद मैं भाग रही थी। तुमने मुझसे बिना कुछ मांगे जो इश्क किया है उसने मेरे भीतर के सारे जख्म भर दिए हैं। अंकुर ने घबरा कर कहा, तुम ये बातें ऐसे क्यों कर रही हो जैसे तुम जाने वाली हो? वो सिर्फ मुस्कुराई। उसने अपने दुपट्टे से एक छोटा सा बेलपत्र निकाला, उसे चूमा और गंगा में प्रवाहित कर दिया। विसर्जन सिर्फ मूर्तियों का नहीं होता अंकुर, कभी कभी अपने दुखों का भी विसर्जन करना पड़ता है। उस रात जब वो घाट पर लौटे तो उसने अंकुर को बहुत देर तक देखा, जैसे वो उसके चेहरे का एक एक नक्श अपनी यादों में दर्ज कर रही हो। उसने अंकुर के कंधे पर सिर रखा और वो दोनों सुबह की पहली किरण तक वहीं बैठे रहे। सच तो ये था कि उसका बनारस का सफर खत्म हो रहा था, उसे वापस अपनी दुनिया में दिल्ली लौटना था। उनकी वो आखिरी शाम रामनगर किले के सामने नाव पर बीती। सूरज डूब रहा था और पूरा आसमान सिंदूरी हो गया था। उसने रोते हुए अंकुर से कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, पर मेरी दुनिया अलग है, मेरे परिवार के सपने अलग हैं, मैं शायद कभी वापस ना आऊं। अंकुर का दिल अंदर से टूट रहा था, जैसे घाट का कोई पुराना पत्थर भरभरा कर गिर गया हो। पर उसने अपने आंसू छुपाए, एक लंबी सी सांस खींची और मुस्कुरा कर कहा, अरे पगली, रोती काहे हो? बनारस से कोई कभी दूर जाता है क्या? तुम जहां भी रहोगी तुम्हारे भीतर ये बनारस हमेशा जिंदा रहेगा। वो हींग वाली कचौड़ी की तीखी याद, वो लस्सी की मिठास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और हमारा क्या है, हम तो यहीं घाट पर मिलेंगे, चाय का कुल्हड़ थामे और तुम्हारी यादों के साथ। क्योंकि बनारसी जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता है ना, उसका साथ सात जन्म तक नहीं छोड़ता, चाहे वो कितनी भी दूर काहे ना चली जाए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना, गंगा घाट के किनारे अंकुर और वो मिले और उनके बीच एक ऐसा एहसास पनपा जो दोस्ती से आगे था। फिर एक दिन उसने उससे कहा कि उसकी दुनिया अलग है और उसे जाना होगा। अब आगे उसने जाते जाते राघव के हाथों में एक चिट्ठी पकड़ाई। उसके चले जाने के बाद राघव ने कांपते हाथों से वो कागज खोला। उस पर उसकी खूबसूरत लिखावट में सिर्फ ये चंद लाइनें लिखी थीं। अंकुर, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। मैं जब बनारस आई थी तो शायद अंदर से एकदम खाली थी, पर तुमने अपने निश्चल इश्क से मुझे महादेव का प्रसाद बना दिया। मैं अंदर से भर चुकी हूं। मैं वापस नई ऊर्जा के साथ अपने अधूरे छूटे संसार में वापस जा रही हूं। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मुझे ढूंढोगे कहां। मैं तो अब गंगा की हर लहर में और बनारस के इन घाटों के हर पत्थर में हूं। हमने एक दूसरे से यहां पर जो भी बातें की वो इस जन्म के लिए काफी हैं। अंकुर रोया नहीं। बनारस के घाट पर बैठकर कोई रोता नहीं है, क्योंकि यहाँ का हर पत्थर जानता है कि जो आया है उसे जाना ही है। अंकुर ने उस कागज के टुकड़े को अपनी जेब में रख लिया, उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरा और चुपचाप वहां से चल दिया। आज उस बात को कई साल बीत गए हैं। वो आज भी उसी रात के सन्नाटे में घाटों पर जाता है, पर अब अकेला नहीं होता। उसके साथ वो होती है, मौन। उसकी वो बातें होती हैं अंकुर के अंदर। लोग उससे पूछते हैं, अंकुर तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी कोई अधूरी प्रेम कहानी है क्या? अंकुर मुस्कुरा कर रह जाता है। उन्हें कैसे समझाए कि कहानियां इंसानों की होती हैं, जो शुरू और खत्म होती हैं। हमारा तो इश्क था जो बनारस की हवा और मिट्टी में मिलकर इबादत बन गया। वो जहां भी होगी एक मुकम्मल इंसान बनकर जी रही होगी, और मैं यहां खुश हूं क्योंकि महादेव साक्षी हैं। मेरा इश्क जिस्म की सीमाओं से परे रूह का था, और बनारस में जो रूहानी इश्क हो जाता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। वो महादेव की तरह अनंत हो जाता है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी बनारसी इश्क। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, एक और भीगी रात, बारिश की वो धीमी फुहारें, खिड़की से टपकती बूंदें और दिल में उठती वो मीठी सी कसम। मैं हूँ आपकी सुकून, ठंडक, गर्मी, बरसात और हर मौसम और हर मिजाज की आपकी रेडियो साथी अनोखी। और आज भूले बिसरे गीत के इस खास मानसून स्पेशल में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीत के सफर पर, जहां हर बूंद के साथ एक याद, एक झोंके के साथ एक तराना जुड़ा है, जो रात के सुरीले और भीगे भीगे मूड को समर्पित है। और दोस्तों, आपकी अनोखी ने तो आज के एपिसोड का नामकरण तक कर रखा है। हाँ जी, हमने नाम रखा है आज के एपिसोड का भीगी रातों के तराने, एक यादगार सफर। तो चलिए पहली बूंद के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो खुद बारिश की तरह हर दिल को छू जाता है। आज के शो का पहला सॉन्ग भीगी भीगी, हाँ जी भीगी भीगी, क्या भीगी भीगी रातों में। और ये सॉन्ग है आवाज से जिसको सजाया है आशा भोसले जी और किशोर कुमार ने। तो चलिए सुनते हैं ये नगमा। और उससे पहले आपको बता दूं कि इस नगमे को सुनते हुए इन ख्यालों में जरूर डूबिएगा। ख्याल कुछ यूं है, रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी। रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी, उसके साथ बिताई हर शाम की याद इन बूंदों में बह रही थी। वो भीगी हुई रातें सिर्फ मौसम नहीं थी, वो अधूरे ख्वाबों का गीत था। और दिल कह उठा, क्या भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, हल्की बरसातों में, कैसा लगता है। जैसा भी लगता है आप खुद ही एंजॉय करिए ना इस गाने के माध्यम से।

तो अभी हमने एंजॉय किया ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि बनाएंगे नहीं, चलिए एक प्रश्न की ओर रुख करते हैं और उसके बाद में थोड़ी गहराइयों में उतरते हैं। क्या आपने कभी भीगी किसी का इंतजार किया है, या किसी के साथ बैठकर खामोशी से बारिश को महसूस किया है? बस यही एहसास बनता है ये अगला नगमा, जिसका आनंद अभी आपने लिया। और अब सुनिए एक और तराना जो बारिश में भीगी एक मासूम सी लड़की की कहानी कहता है। सॉन्ग है, सॉन्ग बताएंगे ना, उससे पहले थोड़ी सी और गहराई में उतरते हैं। एक लड़की जो भीगी भी है और शायद भीगी हुई और भागी हुई भी है, कहाँ से आई कहाँ जाएगी कोई पता नहीं, पर एक बात का पूरा पता है कि इस बारिश ने उसे और भी हसीन बना दिया है। एक ऐसी लड़की जो भीगी सी है, भागी सी है, हवा में लहराती एक कहानी सी है। उसकी आंखों में कुछ अनकहे पल हैं जो किसी मुलाकात का जिक्र करना चाहते हैं। जी हाँ, और वो सॉन्ग कोई और नहीं, वो सॉन्ग है एक लड़की भीगी भागी सी, और आवाज से इसको सजाया है किशोर कुमार जी ने। आइए चलिए सुनते हैं और लुत्फ़ में खो जाते हैं इस सॉन्ग के साथ।

सजन दूर था पर सावन पास था, बदन में जैसे हर बूंद के साथ उनके होने का एहसास था, सांसों में उनकी यादें और इस मौसम का जादू। अब अगला गीत कुछ शरारत लिए, कुछ अदाएं लिए आपसे मिलना चाहता है और गुनगुनाता है।

ये वो सॉन्ग है जो बदन में सिहरन दौड़ा दे और असली सावन के जादू को याद दिला दे। मीठी सी तड़प और मिलन की दरकार के एहसास के साथ 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज का सुहाना सफर। हाँ जी, तो चलिए एंजॉय करते हैं मिलकर।

श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं उस गीत की ओर, जो गीत ना सिर्फ अपनी ओर खींचता है बल्कि बारिश को रुमानी बना देता है। और जब हवाएं चलती हैं और बारिश के साथ पत्तों की सरसराहट होती है, तब दिल गाता है। हाँ जी, दिल गाता है। क्या गाता है? सावन का महीना पवन करे शोर। इस गाने में ना जाने कितनी बार हमारे हीरो ने, यानी सुनील दत्त साहब ने, हमारी अदाकारा के अल्फाजों को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन हम बिना सुधारे ही गा सकते हैं? गा नहीं सकते, तो साथ में एंजॉय तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस गीत की ओर। एक ऐसा गीत जो पनघट की हंसी, झूले की टुनक, सावन का शोर जैसे दिल की धुन को साथ ले चले। पवन बोले पेड़ गाए, ये गीत गांव के हर आंगन में छाए। शोर मूवी से किशोर दा और लता जी की आवाज में ये एवरग्रीन सॉन्ग।

0: करे शोर।
1: करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

अब मैं आपसे जिस गीत की बात करने वाली हूँ, उस गीत में छुपा है गांव का वो सौंदर्य, वो कच्ची सड़कें, वो पनघट, वो बारिश के संग झूमती प्रकृति जो मन के भीतर मयूरी बन नाच उठती है। और जब बात झूमने की हो तो ये आया सावन झूम के, गीत कैसे पीछे रह सकता है। झूले पत्तों पे झूमे, बच्चे गलियों में घूमे, दिल ने फिर से सपना बुना, आया सावन झूम के, प्यार हर दिल में चुपके से घूमे, के आया सावन झूम के।

0: तो अभी हमने इस गीत के माध्यम से उस पल को महसूस किया जो सावन का मौसम जैसे ही आता है, अपने साथ बचपन की यादें, पहली बारिश, भीगे पैर और वो नाचते हुए घर लौटना, सब कुछ लौटा आता है। अब एक ऐसे मस्ती भरे गीत की तरफ चलते हैं जिसमें दिल धड़कता है और कहता है, रामा रामा गजब हुई गवारे, हाल हमरा अजब हुई गवारे। हाँ जी, आज तो दिल सच में सावन बना बैठा है, ये ना जाने क्या हुई गवा है, ना जाने सावन में कौन सा जादू है, हर कोई दीवाना, हर चेहरा बावला बन बैठा है। तो चलिए मोहम्मद रफी साहब की और साथ ही साथ में लता जी की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।
1: हाय राम।

0: बूंदों की ताल पे झूमे हैं अरमा, हर एक बूंद में छिपा है एक गुमनाम अंजाम। रिमझिम राग मन का साज, बारिश ने छेड़ा वो मीठा अंदाज। क्या गजब बात है, बारिश और मस्ती एक साथ आ जाए तो बस दिल भीग जाता है। और अब एक गीत जिसमें बारिश मन की हर तार को छूती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों की हर लय से निकले सुर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं हमारे खुश होने का कारण, जिसमें बरखा बहार के साथ आती है और बूंदे अपनी फ्रेंड रिमझिम जी के साथ, जिसको अपनी आवाज के जरिए मिलाने का काम किया है लता मंगेशकर जी ने। तो चलिए हम भी मिल लेते हैं इस प्यारे से गीत से।
1: ओ सजना

घटाएं घिरी थी जैसे यादें मुड़ी हों, सांवली सी वो शाम जिसमें उसके कहे बिना सब कह दिया था मैंने, और दिल ने बस इतना ही कहा। क्या कहा? ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी। तो बिना देरी किए चलिए एंजॉय कर लेते हैं ये वाला सॉन्ग, जिसमें आप याद करेंगे अपने उन दिनों को जब किसी के साथ में आपने एक प्यारी सी शाम बिताई होगी।

इतने सारे सॉन्ग्स तो हमने एंजॉय कर लिए जी हम मॉनसून स्पेशल वाले शो में। और मॉनसून स्पेशल शो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि एक जो सॉन्ग है वो मेरे जहन में यूं आया था कि हमने किसी से फरमाया कि जनाब हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो थोड़ा सा वक्त तो बनता है ना आपके साथ में, बिल्कुल कॉफ़ी बनती है, चाय बनता है और थोड़ा घूमना शूमना भी बनता है। लेकिन जनाब ने इनकार कर दिया, और इनकार करने का कारण वही जो आमतौर पर हर एक हर एक महापुरुषों का होता है, नॉर्मल पुरुष तो ना नहीं करते हैं। हाजी तो उन्हीं में से थे वो जिनसे हमने दरकार की। लेकिन जब हमको ये आइडिया हमारे जहन में आया तो हमने कहा कि इस सॉन्ग को भी आप तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। और इस सॉन्ग के जो बोल हैं वो कुछ यूं हैं, हाँ हाँ हाँ वही वाला सॉन्ग कि तेरी दो टकिया दी नौकरी पे मेरा लाखों का सावन जाए। वैसे सावन केवल लाखों का नहीं होता है जनाब, इतना कीमती होता है ना कि बस उसका कोई भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल बढ़ते हैं इस सॉन्ग की ओर। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान मूवी का ये उम्दा वाला सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग, चलिए मिलके एंजॉय करते हैं।

तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो गैनेस्ट 89.6 एफएम पे अपना फेवरेट वाला शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, जहाँ पे गीत तो होते हैं लेकिन उस दौर के, उस जमाने के, जो आपको अपने तक बुला ही लेते हैं और हम कहीं जाके गुम से हो जाया करते हैं। और आज का सफर यहीं पे हमको कहता है कि थोड़े से थम जाते हैं ताकि फिर से हम आपसे आके किसी नए सफर पे आपको ले चलें। आज की ये भीगी रात और ये भूले बिसरे तराने, उम्मीद है आपके दिल को भी भीगो गए होंगे। मैं आरजे अनोखी अब लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन जाते जाते आज कहूंगी, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, और हर पुराने गाने में हमारी अधूरी बात। तो ये अधूरी बात हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन बतौर तोहफा ये वाला सॉन्ग स्पेशली आपके लिए, जो कि बहुत बहुत बहुत बहुत आला है। और इसी के साथ, भीगी बातों के साथ, शुभ रात्रि और प्यार भरी बारिश की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त और एक नए चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।
5: डिजिटल मास कम्युनिकेशन आया है पहली बार, सपने जो थे दूर गोंडा के पूरे होंगे।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर

0: सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।